चोरी की गोल गोल अखियां शराबी कर चुकी है कैसे कैसों की खराबी इनका ये जोर जुल्म किसी ने ना देखा हम जो थोड़ी

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

खेडूपुनेरी आवाज 107.9 एफएम पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के 9 दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है, सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ फिर रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर अंतरिक्ष दिव्यता का हुआ।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को नए नजरिए से जब हमने देखा तो अगर पिछली कड़ी को आप याद हो देखें

0: तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया था कि आज जो एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं हर रिश्ते में, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है जो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसमें या तो हमारा कोई पास्ट हर्ट होता है या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन है जो हमारा बैरियर क्रिएट कर रही है, या फिर फ्यूचर का कोई थ्रेट, आने वाले वक्त का कोई थ्रेट होता है जो हमें बैरियर क्रिएट कर देता है और हम उस बैरियर को नहीं तोड़ पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तोड़ना जरूरी है, क्योंकि वो बैरियर टूटेगा, वो दीवार टूटेगी, तभी हम उस रिश्ते की खूबसूरती को, उसे पूरी तरह से हम एंजॉय कर पाएंगे। कैसे वो करना है, कैसे इन रिश्तों को सुंदर और सुदृढ़ बनाना है, जिसके लिए हम हैं यहाँ पर, जो हमारे जीवन का मकसद भी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। वन, बिकॉज जब हमने अपने पर्पस ऑफ लाइफ की बात की थी, तो कहीं ना कहीं वो इतनी क्लैरिटी से आया था कि अगर हमारे सामने वो पर्पस ऑफ लाइफ है, और जो कि निकला था कि रिश्तों को जीना चाहते हैं, इंटरेक्शन जो हम हैं उन पूरी वैल्यूज को हम अपने अनुभव करना चाहते हैं रिश्तों में, तो जहां हम रिश्तों को जीना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है, तो वो रिश्ते फिर बैरियर्स में क्यों रहे, वो बंधनों में क्यों बंधे रहे, वो दीवारों के पीछे क्यों रहे, तो कैसे तोड़े उन दीवारों को।
1: एग्जैक्टली, देखो कितना कनेक्टिविटी बनती गई कि पर्पस ऑफ लाइफ था रिश्तों में खुशी को एक्सप्रेस करना, लेकिन जब संबंधों में आए तो एक्सप्रेस करने की बजाय मांगने लग गए, मांगने लग गए, नहीं मिला, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन जीने का क्या लक्ष्य है। दैट्स वाई दैट क्वेश्चन वॉज कमिंग अप अगेन एंड अगेन। वेरी ट्रू। सो वी आर रेडी टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स, वी आर गोइंग टू वर्क, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर
0: द अदर पर्सन टू वर्क।
1: फंडामेंटल इज ये कि हर एक सेकेंड के लिए रुक कर अपने आप से पूछे कि सामने चाहे कोई भी है, अब उस कोई में किसी के भी डाल दो उस फ्रेम ऑफ पिक्चर में, मदर इन लॉ है, बॉस है, एनीबडी, समटाइम्स कुड जस्ट बी अ नेबर, यू नो, कोई भी हो सकता है। एम आई रेडी टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप, एंड देन वील सी हाउ वी स्टार्ट डूइंग इट। संबंधों में जो सबसे पहली बात, क्योंकि कुछ एक बातों को हम देखते कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत बड़ी नहीं, इनको हम अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो एनर्जी फ्लो है ये बहुत स्मूथ चलेगा। सबसे बड़ी पहली इम्पोर्टेंट बात हमें अपने आप से पूछना होगा कि ये संबंध है कहाँ पर, वेयर आर दीज रिलेशनशिप्स
0: इन सेंस हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में।
1: सो व्हेन आई थिंक ऑफ अ रिलेशनशिप विद यू, आई लुक एट यू, राइट? व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद कनुप्रिया, सो आई स्टार्ट लुकिंग एट कनुप्रिया, दैट मीन्स माय रिलेशनशिप विद यू इज हियर, outside here. But spirituality हमें ये सिखाते कि relationship जो हम, क्योंकि हम relationships को बाहर देखते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन relationships बाहर होने से पहले पहले वो relationship अंदर है। I first create a relationship.
0: Yes.
1: I first create a relationship here in my consciousness. क्यों मैं अपना relationship पहले अपने consciousness में create करती हूँ? क्योंकि मैंने आपको वहां create किया हुआ है, और क्योंकि मैंने आपको वहां create किया हुआ है, सबसे पहले तो मेरा रिश्ता आपके साथ वही अपनी consciousness में जुड़ना शुरू हो जाता है। अभी आप हो भी नहीं सामने, लेकिन मेरा अंदर आपके साथ एक रिश्ता चल रहा है। अब मैंने आपको जो create किया हुआ है, that is based on my perception about you, whatever perception I have about you. अब किसी भी एक को ले लें, take any one person and let's look at how this happens. क्योंकि अगर ये हमें clarity से समझ में आ गया कि ये अंदर कैसे काम करता है, तो बहुत सारे issues हो जाएंगे, है ना? तो किसी एक को भी ले लें और उसको अंदर यहां देखें कि हमने उसको अपने कॉन्शियसनेस पे किस आधार से क्रिएट किया हुआ है, एंड ट्राई एंड टेक समवन यू आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल विथ, क्योंकि आर एम इज कि हम अपने रिलेशनशिप को हील करें। तो उसको हमने यहां अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएट किया है बेस्ड ऑन माय परसेप्शन। मेरा परसेप्शन किस चीज पर बेस्ड है? माय बिलीव्स अबाउट यू, एंड माय बिलीव्स अबाउट यू are based on my past
0: experience, yes,
1: my past experiences and the feelings that got created during those experiences. The past
0: suppose हम एक मदर इन लॉ को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, मतलब लाइक अब उनके साथ मेरा व्यवहार में मैं हूँ, तो आपने कहा कि उन,

0: मेरा परसेप्शन उनके लिए, मैं मैरिड हूं, ये नहीं कि मेरे अभी मैरिज होनी है, आई एम मैरिड एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, सो आई नाउ लुक
1: देखो कितना इजी है, वी नो इट ऑल द टाइम, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर हियर, दैट्स ऑल, माय रिलेशनशिप इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हियर, आई नो एंड आई एम राइट, आई नो. तो यहां पर अपनी कॉन्शियसनेस में उसको हम क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड माय फीलिंग्स.
0: ओह माय गॉड, हमारा पूरा बेस जो है वो यहाँ हर बार जो है कहीं ना कहीं
1: हिल जाता है.
0: हाँ, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम्स इतने स्ट्रांगली इनग्रेन्ड होते हैं और वही हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ नजर आ जाते हैं. ओके,
1: है ना. तो मैंने आपको यहाँ क्रिएट कर दिया, अब जिस कॉन्शियसनेस में मैं आपको यहाँ क्रिएट करूंगी उसी तरह की एनर्जी मैं आपके ऊपर थ्रो करूंगी, एंड वट एवर एनर्जी आई थ्रो ऑन टू यू द सेम एनर्जी I will get back. So I am already experiencing the relationship even without interacting with you.
0: अच्छा, और मैं basically तो बड़ी बेचारी होती हूँ.
1: हाँ,
0: क्योंकि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है. मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, पर मैंने सिर्फ आपकी परसेप्शन,
1: यस, मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है वो परसेप्शन.
0: वो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में की.
1: एब्सोल्युटली, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, कि हाँ माय पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी थे उसके आधार पर मैंने वो कॉन्शियसनेस में आपकी एक इमेज क्रिएट की है. डिपेंडिंग ऑन उसकी क्वालिटी, उस तरह का रिश्ता मेरा आपके साथ मेरी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी जुड़ गया है. एंड जिस तरह की अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी उस पर थ्रो की, नेगेटिव एनर्जी इज गोइंग टू कम इन रिटर्न. जहां मुझे ये प्रोसेस समझ में आ जाता है, आई अंडरस्टैंड अ वेरी फंडामेंटल थिंग, और वो ये कि मेरे रिलेशनशिप का, किसी के साथ भी मेरे रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है, दैट इज द विजन दैट आई हैव क्रिएटेड अबाउट देम,
0: इमेज आई हैव क्रिएटेड, यस, यू नो,
1: इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू बिहेव और स्पीक टू मी नाउ.
0: ओके, सपोज दे आर बिहेविंग, शी हैज बीन बिहेविंग बैडली टू मी, मतलब मेरा पूरा मेरा जो उनके वो उनको मैं बर्दाश्त नहीं हूं या मैं अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं एक इमेज क्रिएट करूं कि वो बहुत अच्छी है, या
1: वो एक इमेज क्रिएट करूं इज नॉट अ फॉल्स इमेज. पहली बात तो एक तो ये है कि जो सामने वाला है उसके अंदर विशेषताएं भी हैं, कमजोरियां भी हैं. हम अपनी पिक्चर किस कलर से बनाते हैं?
0: सारी कमजोरियों से, और वो भी वो जो मेरे साथ डीलिंग में आ रही हैं कमजोरियां.
1: फाइन, लेकिन मेरे साथ डीलिंग में दोनों चीजें आने वाली है ना, विशेषताएं भी आएंगी, कमजोरी भी आएंगी. मैं एक कमजोरी का कलर लेती हूँ और उससे पिक्चर पेंट करना शुरू करती हूँ. लेट्स टेक, आई जस्ट टेक योर वन वीकनेस, मैं आपकी एक वीकनेस ले लूं कोई भी और उसके साथ आपके पिक्चर पेंट करना शुरू कर दूं. अब मेरा रिलेशनशिप कौन सी
0: है? वो ऐसे ऐसे एक के बाद एक जुड़ती जाती है. इट्स नॉट डिफिकल्ट.
1: नाउ सी हाउ इट विल हैपन. सो आई हैव टू बिगिन ओनली विद योर वन वीकनेस. अगर मैंने कोई आपकी एक कमी पकड़ ली, यहां पिक्चर ड्रॉ करना शुरू किया, दैट विल बी माई रिलेशनशिप. मैं नेगेटिविटी की एनर्जी फेंकूंगी, आपसे नेगेटिविटी की एनर्जी फिर आएगी, मैं नेक्स्ट वीकनेस को पकड़ूंगी, थर्ड वीकनेस. लेकिन ये सारी चीजें कहाँ क्रिएट हो रही हैं? व्हाट इफ आई वुड हैव स्टार्टेड द पिक्चर विद वन स्पेशलिटी, आपकी एक विशेषता, आपकी एक क्वालिटी, क्योंकि दोनों है ना.
0: लेकिन आप मेरे साथ तो बुरा बुरा कर रहे हो, उसके बावजूद भी मैं आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करूं.
1: कोई ऐसा आपको मिला जिसके अंदर एक भी विशेषता नहीं है?
0: नहीं, होगी, लेकिन आप मेरे साथ तो करते जा रहे हो. क्यों हम दूसरे के लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं? क्योंकि वो मुझसे मेरे साथ बुरा कर रहा होता.
1: हमने पहले ही देखा कि दूसरा कोई बुरा तो कर नहीं कर रहा, वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, लेकिन मुझे वो क्या लग रहा है
0: कि वो
1: वो गलत है. हो सकता है कि वो जो कर रहे हैं, अगेन वी आर गोइंग टू मिक्स the likes and dislikes with the judgment. Let's say आपने जो कहा mother-in-law ने कहा कि ये कपड़े नहीं पहनो, you know, हमारे घर में साड़ी पहननी चाहिए, simple. आपको आदत है, आज दिन तक आप बाहर निकलते हैं तो आप अपनी jeans और skirts and जो भी पहनते हैं. It's just a like and a dislike. For her also it was just a dislike, but for you वही जीन्स वो एक लाइक थी. लेकिन वो लाइक और डिसलाइक को हमने क्या लेबल कर दिया? मेरी मदर इन लॉ ही ऐसी है, मेरी मदर इन लॉ बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत ये है. फिर मैं उसको छोटी छोटी बातों पर कौन से लेबल से देखूंगी?
0: नैरो माइंडेडनेस, हर चीज,
1: बिकॉज ऑफ
0: खाना बनाने पे, बाहर जाने पे, हर चीज पे मैं इस पे करती जाऊंगी.
1: माई पिक्चर विल गेट डार्कर एंड डार्कर विद दैट कॉन्शियसनेस. अब जब हमें परमात्मा से ये ज्ञान मिलता है,

0: तो हमें विशेषताएं और कमजोरी इन दोनों पर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है. वी सी द सोल इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव एंड दैट इज प्योर आत्मा, पावरफुल आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा. ओके, देर आर लॉट ऑफ अदर वीकनेसेस और वट एवर राइट नाउ, लेकिन एक्चुअली वो कौन है? तुम हम ज्ञान के आधार से जो संबंध जोड़ना कोशिश करते हैं वो किस आधार से है? प्योरिटी इन द विजन, कि हम उसको किस दृष्टिकोण से यहां इमेज क्रिएट करें. अब उस ह्यूमन बीइंग की जो हम पिक्चर क्रिएट करें वो किस फॉर्म में क्रिएट करें, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि वो कौन है. तो लेबल्स हटाएं, रिश्ते भी हटाएं और उसको कौन लें कि वो कौन है? प्योर सोल.
1: उसे माफ करना कितना मुश्किल है, वो प्योर सोल की तरफ जा पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपने आप को बचाया ही हुआ है उसके उन लेबल्स के कारण, यू नो,
0: लाइक बचाया हुआ है
1: इन द सेंस कि मैंने अपने आप को गुस्से के या हेट्रेड के उसमें रखा हुआ है कि शी इज बैड, शी इज बैड, शी इज बैड.
0: या बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हीलिंग आवर सेल्व्स, राइट? आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ एंड टू हील माई सेल्फ आई विल हैव टू क्लीन अप हियर एंड आई वॉन्ट कि मेरे जो सारे रिश्ते हैं वो कैसे हो जाए बहुत स्मूथ. तो आपके प्रति एक, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए मुझे आपकी जो पिक्चर मैंने अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएट की हुई है उसको चेक करना पड़ेगा कि मैंने आपके प्रति क्या क्या ऐसे पास्ट की बातें, कौन सी ऐसी ऐसी बिलीव्स पकड़ कर रखी हैं जिसके कारण आप आज के समय में कैसा भी बिहेव करें मैं आपके साथ फिर भी आपके प्रति कैसा सोचती हूँ? नहीं, ये तो है ही ऐसे. तो वो रिश्ता कहाँ चल रहा है? अभी भी यहां चल रहा है, लेकिन एवरीवन इज चेंजिंग एवरी डे. अंधे हम हर रोज एक रियलाइजेशन से, एक परिवर्तन से गुजरते हैं, लेकिन एवरी टाइम आई मीट यू, अगर मेरे रिश्ते का फाउंडेशन वो कॉन्शियसनेस होगा, विल आई हैव द राइट एनर्जी?
1: सो एवरी टाइम आई शुड मीट द पर्सन विद द ब्लैंक कॉन्शियसनेस.
0: एब्सोल्युटली, जिसको परमात्मा कहते हैं एब्सोल्युटली क्लीन चित्त. जो चित्त है उसको बिल्कुल क्लीन कर दो, जिसमें कोई भी पास्ट की बातें नहीं है. आई नो इट सीम्स टू बी वेरी चैलेंजिंग बट देन दैट्स द एफर्ट. कि कोशिश बार बार करें कि अपनी कॉन्शियसनेस में हमने जो पिक्चर क्रिएट किया, बिकॉज आफ्टर ऑल वी अंडरस्टैंड कि आई एम द आर्टिस्ट एंड आई एम क्रिएटिंग द पेंटिंग, इट्स लेस अबाउट यू. आप देखो कितनी बार ऐसा होता, आप वो एक अनुप्रिया है लेकिन अलग अलग लोग आपके बारे में अलग अलग सोचते हैं ना, और अलग अलग लोगों के साथ. इसीलिए हमने कहा कि कुछ लोगों के साथ हमारा अच्छा और कुछ लोगों के साथ हमारा रिश्ता ठीक क्यों नहीं है. हम तो वही है ना. सपोज लेट्स से आई एम अ बैड पर्सन, तो फिर मेरा तो किसी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं होना चाहिए. देन व्हाई इज इट हैपनिंग दैट विद सम पीपल आई एम हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड विद सम पीपल इट्स जस्ट नॉट वर्किंग? That means it's less to do with who I am and it's less to do with who they are. It's more about
1: the image I have, yes.
0: That we create
1: about. So again, clean image bhi rakhe, wo bhi itna wahan tak hum kab pahunchenge pata nahi baba.
0: Isliye Paramatma Shiv Baba hame effort ye karwate ki har baar jab bhi kisi se milo ek thought create karo. आत्मा,
1: प्योर आत्मा,
0: ताकि इट विल बिकम. देखो क्या होगा, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक ऑफ योर पास्ट यहां पर, अब मैं बैठकर ट्राई करूं कि एक एक को क्लीन करना, वेरी चैलेंजिंग. आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, मैं उसी पास्ट में चले जाऊंगी शायद. क्यों ना हम एक ट्राई करके देखें कि जब भी हर एक से मिले तो एक थॉट के साथ, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आर पेंटिंग, तो क्यों ना उस कलर के साथ अपना नेक्स्ट स्ट्रोक पेंट करें कि ये भी एक पवित्र आत्मा है. तो धीरे धीरे जो हमारी पेंटिंग है हमारे कॉन्शियसनेस में वो चेंज होती जाएगी. इट्स अबाउट चेंजिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी. आई मेट समवन के जिनकी सिस्टर ने उनके साथ उनके ही बिजनेस में बहुत ऊपर नीचे कर दिया था एंड जस्ट टू यू नो टेक ओवर द होल बिजनेस उन्होंने, शी हैड गॉन टू ऑल काइंड ऑफ एक्सटेंट. जो एक ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशनशिप में या किसी भी दो लोगों के रिलेशनशिप में वॉज नॉट वेरी हेल्दी, वो एक पास्ट की बात थी. अब वो बहुत समय से पकड़ी हुई बात थी एंड देन सडनली वन डे द सिस्टर कम्स एंड सेज आई एम सॉरी, लेकिन आई वॉन्ट के जो हमारे बीच पहले था कैन इट बी द सेम अगेन. अब इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था बिफोर दैट बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस में ये ऊपर नीचे होने के, क्योंकि आजकल आप देखो भाई बहन के बीच में प्रॉपर्टी के ऊपर या

0: ये ऐसी ऐसी यू नो राइट्स के ऊपर छोटी छोटी बातों पे ये बहुत जो सुंदर रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे बिखर रहे हैं। एंड फिर हम एक दूसरे के प्रति क्या इमेज बनाते जाते हैं अंदर, वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे। और फिर जब भी हम मिलेंगे तो कौन सी एनर्जी फ्लो होगी? इट कैन नॉट बी द राइट काइंड ऑफ एनर्जी। सो लेट मी चेक व्हाट दैट वन पिक्चर, जो भी एक व्यक्ति जिनके साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कि मैंने उनको अपनी कॉन्शियसनेस में कैसा क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट देयर, रिलेशनशिप इज
1: विद मी,
0: इज हियर। और जिन भी लोगों के साथ हमारा थोड़ा सा अनबन हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो साइलेंस में बैठकर, मेडिटेशन में बैठकर अपनी पेंटिंग को चेंज करने की कोशिश करें, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करें।
1: लेकिन बात ये होती है कि जब ऐसे प्रोग्राम में बैठ के हम बात कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, जितने दर्शक हमारे साथ हैं, या जब बात हो रही होती है, एक थर्ड पर्सन की तरह हम बिनो से सोच पा रहे होते हैं, हमें ठीक लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही शाम को मेरा हस्बैंड फिर आएगा, मैं उसकी वो इमेज क्रिएट करनी है तो भूले जाऊंगे। वो जो एक कंटिन्यूस मेरा प्रोसेस उसके साथ चल रहा है, या बच्चा घर आएगा, या मदर इन लॉ से फिर इंटरेक्ट करूंगे, ये चीजें मैं भूल जाऊंगी, याद ही नहीं रहेंगी। वो फिर बाद में तब याद आती हैं जब तक मैं
0: प्रॉब्लम कर चुकी होती हूँ,
1: मैं वो कर चुकी होती हूँ, एंड देन इट सडनली स्ट्राइक्स मी कि ये मैंने क्या किया।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने कहा अवेयरनेस। एक अवेयरनेस से इस जीवन की यात्रा में चलना है। अभी जो आपने कहा, सो व्हाट इज हैपनिंग, पूरा वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया, और प्रोसेस खत्म होने के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने रॉन्ग बटन प्रेस कर दिए थे।
1: वो भी आप इसलिए रियलाइज हो रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम देखा था, कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम अच्छा लगा था, या मैं अपनी भी बात करूं, मुझे बात की थी, मुझे बात समझ में आई थी, लॉजिकल लगी थी, और फिर जब मैंने, और मुझे लगा था मेरे जीवन से जुड़ी हुई बात है, और इसीलिए जब वो सिचुएशन से मैं गुजर गई, हो गया वो, तब मुझे याद आया कि ओहो, वहां पे जो बात हुई थी वो ऐसी थी।
0: राइट, बट दैट ऑल्सो इज वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो, एटलीस्ट हम एक जर्नी पर शुरू हो चुके। अगेन वी आर सेइंग डोंट एक्सपेक्ट मैजिक फ्रॉम योर सेल्फ। आप ये नहीं सोचे कि हाँ आज सुन लिया, कल से पूरा चेंज 360 डिग्रीज, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, देखो आज दिन तक हमने बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक्स या मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मोस्टली वहां जहां परिवर्तन की बात होती है, वो बाहर की बातें होती हैं, कि रिश्तों को अच्छा बनाना है, स्माइल व्हेन यू मीट, ग्रीट लाइक दिस, टॉक लाइक दिस, तो इन बातों पर ज्यादा फोकस होता है। लेकिन हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आकर रूट पर टच करते हैं, कहते हैं ये बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पररी होता है। अब हो सकता है मैं बाहर से आपको स्माइल तो दे दूं, बहुत अच्छी तरह से बात तो करूं,
1: अंदर से अगर कड़वाहट है वो नहीं जा सकता।
0: तो वो जो बातें होती है ना, सिंपल सिंपल, वो करना बहुत इजी होता है, और कहते हैं हाँ ये बहुत इजी है, लेकिन जब ज्ञान की बातें यहां सुनते हैं तो लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट नहीं है, वो रूट है, वो रूट है। उस पर थोड़ा सा एक बार उस जर्नी पर चल पड़ेंगे अपने ऊपर काम करने में, यू विल एंजॉय द जर्नी।
1: नो दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट, नो नो, लॉट ऑफ पीपल आउट अराउंड अस आर एंजॉयिंग।
0: या सो मोस्टली द एंजॉयमेंट इज ऑल्सो बिकॉज आई रियलाइज एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल, यू नो। अब मुझे एक रियल, अभी ये नहीं है कि मेरे सारे रिश्ते बहुत परफेक्ट है, नहीं नहीं, बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी, लेकिन ये समझ में आ गया है कि ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करना ये मेरे हाथ में है। अब एक एक को लेते जाएं और जैसे जैसे कर, एंड मोस्टली इट इज हियर ना, तो बहुत ज्यादा उनकी जरूरत ही नहीं है कि उनके साथ बैठकर बात करनी है, उनके साथ सॉर्ट आउट करना है, नो, इट इज हियर, आई हैव टू सॉर्ट इट आउट हियर। एंड दैट्स व्हाई परमात्मा शिव बाबा आकर वो तो इजिएस्ट मेथड बता देते हैं कि बॉडी कॉन्शियस से हटकर सोल कॉन्शियस देखो, क्योंकि दैट इज द फंडामेंटल। अगर मैंने आपको देख लिया कि उस दृष्टिकोण से प्योर सोल, उसके बाद कोई और लेबल
1: नहीं है,
0: कोई और लेबल नहीं बचता। जैसे ही मैंने आपकी इमेज यहां ये क्रिएट की, one beautiful little point of light, now what will be the energy flow, then that means I'm not to remember anything of the past, koi aur baatein uske baad full stop ho jati hai, to rishta kaise banega? And that's why
1: rishta automatically hamara jo hai wo flow, sare resentment sab kuch khatam
0: ho jayega na, wo sara khatam ho jayega, to energy flow bahut high level ki ho jati hai। To isliye aaj hum koi ek rishta le, कोई भी एक जिसको हमने यहाँ जो पकड़ के रखा है, तो आज हम अपना कोई भी एक रिश्ता ले लें एंड उस वो एक व्यक्ति ले लें जिनके साथ मुझे कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा अंदर, और फिर बैठकर डिटैच होकर, अटैच्ड नहीं, अपने आइडिया ऑफ राइट से अटैच होकर देखेंगे, तो फिर वो इमेज सारी गलत ही दिखाई
1: देगी। एक रिश्ता ये ले लें कि मेरा बॉस है जिसके साथ मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, लेकिन आई डोंट हैव अ चॉइस, वी टॉक्ड अबाउट चॉइसेस, आई डोंट हैव एनी चॉइस, रिसेशन है, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन उनका वो जो काम करने का, खास एक प्रोजेक्ट पे चलना है और उस प्रोजेक्ट से मैं एग्री नहीं करता, मुझे मालूम है कि वो काम नहीं हो पाएगा अगर हम उसी के उससे कर चलते हैं तो, लेकिन मैं मतलब I have to work on that.
0: Yeah, I have to work on that. Now, जहाँ हम बोलते हैं I have no choice, तो ये तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पहली बात तो हमने उस दिन डिस्कस किया कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है where I don't have a choice. फिर भी अगर आप फील करते कि I have no choice, but you still have one choice, how you have to feel. वो choice तो कोई नहीं लेके जा सकता आपसे, कि वो जैसे आपने कहा कि वो job मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन उस job को करते हुए मुझे फील कैसा करना है,
1: डिप्रेस फील करना है, यू नो ह्यूमिलेटेड फील करना है, इंसल्टेड फील करना है, या मतलब हेल्पलेस फील करना है, या पावरफुल फील करना है,
0: वो चॉइस तो है ना, उस चॉइस को तो नहीं हैंड ओवर करना हमें किसी को, तो उस चॉइस को एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। नाउ लेट मी लुक एट व्हाट डू आई थिंक अबाउट माय बॉस, एंड यू नो वी कुड एक्चुअली डू दिस लिटिल एक्सरसाइज, दिस इट लुक्स वेरी यू नो सिंपल, लेकिन ये बहुत ईजी है कि हम उस व्यक्ति के दोनों साइड्स नोट डाउन करना शुरू करें।
1: वही छवि आती है जब अपने बॉस के बारे में सोचते हैं।
0: तो लेकिन आप उसको एक आत्मा देखकर अब उसकी विशेषताएं, सी अगेन लेट्स नॉट बिल्ड रिलेशनशिप्स ऑन लेबल्स, तो डिटैच्ड होकर उस आत्मा की विशेषताएं और भले कमजोरियां भी हैं जो आपको देखनी पड़ रही हैं, आप दोनों को निकालिए और फिर आपको दोनों निकलेंगे। ऐसा कोई भी नहीं आपको मिलेगा जिसको पास सिर्फ कमजोरियां हों और विशेषताएं हैं नहीं, और फिर जो विशेषताओं की लिस्ट आपकी निकलती है, आप अपनी कॉन्शियसनेस में वो विशेषताओं को याद रखने का प्रयास कीजिए। यू नो फिर अगर एक नेगेटिव थॉट आती है, लेट्स से अ नेगेटिव थॉट के नहीं वो तो हमेशा मुझे इंसल्ट ही करते हैं, उसके साथ मैं एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी है,
1: जो भी करते हैं,
0: जो भी है, नॉट फ्लैटरी, नॉट इल्यूजन, बट वट एवर इज द रियलिटी, क्योंकि हो सकता है कि मैं जब वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, आई हैव नॉट टेकन इट एट द राइट पर्सपेक्टिव, सो लेट मी लुक एट द पर्सन एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, उनकी विशेषताएं और कमजोरियां दोनों निकालूं, और जब भी कमजोरियों के थॉट्स मेरे मन में आते हैं, मैं तुरंत वो मेरे पास विशेषताओं वाली लिस्ट रेडी रहनी चाहिए, ताकि मैं विशेषताओं वाली लिस्ट में एक काउंटर थॉट, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कटिंग अ थॉट विद अ थॉट, तो अगर मेरे पास एक थॉट आती है कि कनुप्रिया तो ऐसे ही है, तुरंत मेरे पास एक थॉट आनी चाहिए नहीं,
1: लेकिन वो ऐसी भी है,
0: लेकिन कनुप्रिया ऐसी भी है, so I am changing my picture, it will not happen in one minute, it will not happen in one minute, because मैंने जो पहले आपकी picture बनाई हुई है वो बहुत सारे
1: strong है, वो
0: बहुत सारे past experiences,
1: मुझे justified लगती है, मुझे ठीक लगती है, I feel I am right, I don't feel like changing it,
0: लेकिन fact ये है कि जहां मेरे आपके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहां उनमें कुछ लो फेजेस थे, तो उनमें कुछ हाई फेजेस भी तो थे, लेकिन मेरा दृष्टिकोण नेगेटिविटी को देखने की तरफ ज्यादा था, तो मैंने पिक्चर कौन से कलर से पेंट की हुई है, सारे नेगेटिव वाले, अब मैं क्या करने वाली हूं उस पिक्चर को, धीरे धीरे धीरे धीरे, इट विल नॉट हैपन एक स्ट्रोक के साथ पेंटिंग नहीं चेंज होने वाली है ये, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो वाले इंसिडेंट्स निकालने वाले हूँ वेयर यू हैव बीन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एम्पावरिंग पावरफुल वट एवर क्वालिटी आई वॉन्ट टू टेक, और अब जब ये नेगेटिव मेरी कॉन्शियसनेस में आता मैं इसको पॉजिटिव से रिप्लेस करती हूँ, और इसका सबसे ईजी तरीका है अगर स्ट्रेट करना है, आत्मा है, ये सब उसके अक्वायर्ड संस्कार है, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में प्योर सोल, बिकॉज दैट्स व्हाट गॉड हैज कम एंड टोल्ड अस, कि हर आत्मा जो आज इस सृष्टि रंगमंच पर है सबसे पहले अपने ओरिजिनल रूप में कैसी है,
1: प्योर,
0: ये सब जो उस पर लग गए हैं ये दाग है, व्हाइट साड़ी है, नॉलेज है, ओरिजिनल कलर व्हाइट, आज दो दिन ट्रेन में पहनकर चले जाए, नीचे उतरे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा दाग होगा, अब आप सामने से देखते हैं, अगर इल्यूजन में है तो आप उस दाग को ही उस साड़ी का हिस्सा समझ

0: देख लेंगे और फिर आपका परसेप्शन इसकी तरफ क्या होगा। लेकिन अगर ज्ञान है तो आपको समझ में आएगा नहीं एक्चुअल कलर व्हाइट है, ये तो सिर्फ ऊपर से लग, अब आपका परसेप्शन कैसा होगा, साड़ी तो वही है। लेकिन आपने अपने ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखा तब आपका परसेप्शन क्या होगा, प्योर व्हाइट साड़ी है, थोड़ा सा लगा हुआ दाग है, तो यू विल लाइक द साड़ी। लेकिन अगर इल्यूजन की दृष्टि से देखा, ओ ये तो व्हाइट पे ब्राउन, व्हाइट पे,
1: अगर हम देखें तो इसमें पूरा जो हमने काम किया हमें उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना है।
0: That's why we said relationship is here.
1: नहीं एंड सबसे बड़ी बात है हम जो इंटरेक्ट करने से को अवॉइड करते हैं तो हम एक्चुअली कर सकते हैं अवॉइड और हम तब तक अपने ऊपर काम करके रिलेशनशिप को इतना हार्मोनियस बना ले सकते हैं कि वहीं से वाइब्रेशन आने लग जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमें उनके सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा,
0: कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ वो राइट एनर्जी क्रिएट करके वो राइट एनर्जी जेनरेट करके उनके प्रति ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। और इससे हर समय जब उनके प्रति सोचें तो याद रखें व्हाइट है, प्योर व्हाइट है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से अक्वायर्ड संस्कार है, बट आई एम गोइंग टू लुक एट व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ द सोल, दैट्स प्योरिटी
1: एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट, यू नो
0: दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर। एंड दैट्स व्हाई बाबा स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप कि पहले अपने प्रति क्या दृष्टिकोण रखने हैं, आई एम अ प्योर सोल, द फर्स्ट रिलेशनशिप विद माई सेल्फ then relationship with you, कि आप कौन है, pure soul.
1: Very true.
0: Now the energy that will transmit towards you will be more positive.
1: In fact, we really need to work on our relationship also, relationship with ourselves, you know. अभी तक तो हमने बाकियों के साथ रिश्ते को देखा लेकिन अपने साथ के रिश्ते को भी देखना बहुत जरूरी है सचिवानी। लेकिन आज जो आपने बताया कि किस तरह से जो इतनी कड़वाहट या ठहराव या ठंडा रिलेशनशिप हो चुका है, ठंडापन आ जाता है, हम उस रिश्ते में गर्माहट नहीं महसूस करते, हम उस रिश्ते में एक वो एनर्जी का फ्लो नहीं महसूस करते, हम इतने इतने दूर दूर कटे हुए हैं, उन्हें हम खुद ही रिवाइव कर सकते हैं और दूसरे के इन्वॉल्वमेंट में नहीं। वी डोंट हैव टू वर्क ऑन आर रिलेशनशिप विद अदर्स, यू नो इन्वॉल्विंग अदर्स, वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन आर रिलेशनशिप without even in fact involving anyone, ourselves only. Very beautiful. Thank you so much. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है इन बातों को लेकर जो आज हमने की है, आपका हम स्वागत करते हैं। कोई सजेशन है आपके पास तो आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क करें।
2: हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org।
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में खुद के साथ कैसे रिश्ता हमने कायम करना है इस पर भी बात करेंगे। आज जो हमने बात की है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगली घंटी बजे उससे पहले हमें तैयार रहना है उस रिश्ते को एक नए नजर से देखने के लिए। आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं,

0: लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साते। पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन को एक नए नजरिए से देखा, बहुत सारी बातें फिर सामने आई हैं कि किस तरह के मेरे थॉट्स होते हैं, और जब थॉट्स को मैं सही रास्ते पर लेकर आती हूं तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ना सिर्फ मन के इमोशंस के बल्कि शरीर के भी, जो ओपन हो जाते हैं। आगे कुछ और बातें हैं जो इस कड़ी में जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बात हमने कर ली आज माइंड की भी, बात हमने करी बॉडी की, और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पर इस श्रृंखला में पहली बार हमने बात की थी कि किस तरह से जो माइंड का पूरा प्रभाव है, थॉट्स का प्रभाव मेरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर कैसे पड़ रहा था। ब्लॉकेजेस को ओपन करने की भी बात की। बहुत बार ये कहा जाता है कि माइंड बॉडी का जो बैलेंस है उसमें स्लीप या जो हमारी नींद है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, और आज इसी प्लेटफॉर्म पर या कई बार प्रोग्राम्स में बात ये होती है कि हम या हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले सबसे ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है। तो क्या नींद का जो है वो बहुत असर है हमारे जीवन में?
1: बिल्कुल, बहुत ही डीप असर है, क्योंकि एक तो हम ये समझे कि नींद की जरूरत क्यों है। सारा दिन जो भी हम कार्य करते हैं, भले आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। एक केमिकल डेवलप होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है सारे दिन में, फिर अब उसे कम करने की आवश्यकता है। अगर वो कम नहीं हुआ तो आपको थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, टॉलरेंस कम हो जाएगा। तो स्लीप एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है कि जिससे लैक्टिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाता है।
0: तो ये प्रोड्यूस क्यों होता है
1: लैक्टिक एसिड? तो इसलिए प्रोड्यूस, सारा दिन जब हम कार्य करते हैं तब कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्ट्रेस भी होती है, और कोई चीज है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो रही है। जब इन सभी परिस्थितियों में ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसे जो जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिलता है, और जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें ऑक्सीजन की कमी आती है। अगर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो लैक्टिक एसिड निर्माण नहीं होता है, एनर्जी निर्माण होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा तो वो सिम्टम्स निर्माण होंगे, और उसे कम करने की जरूरत है। दूसरी बात कि भी सारे दिन में ऐसी कई चीजें होती है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जिसको रिजॉल्व करने की भी जरूरत है, और हम जागृत रूप से उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जब आप सोते हैं तब स्वप्न आते हैं, बल्कि कई लोग स्वीकार न भी करें परंतु स्वप्न आते हैं जरूर, वह स्वप्न में भी आपकी जो दिन की बातें वो रिजॉल्व होती है और आप फिर फ्रेशनेस का सवेरे अनुभव करते हो।
0: अच्छा, तो कई बार तो वो स्वप्न जो है वो ऐसा नहीं फील हमें करवाते, कई बार तो सपने याद नहीं रहते और कई बार सपने जो हैं वो बड़ा हमें डरा देते हैं, थका देते हैं ज्यादा, तो फिर हम तो फ्रेश नहीं
1: वो तो कुछ नहीं, कुछ सिर्फ एंजाइटी जो ड्रीम्स है ना, जिसमें डरावनापन है, वो सही है कि वो आपको थका भी सकते हैं, परंतु और जो अधिकतर स्वप्न है उसमें आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं। और स्वप्न में आप चीज जैसी है वैसी नहीं देखते हैं कि मैं आपके साथ नाराज हूं, तो वो बात स्वप्न में नहीं आएगी और कोई सिंबल्स के रूप में आएगी, और हो सकता है कि वो नाराजगी वह रिजॉल्व हो जाए।
0: अच्छा, वही सपने में रिजॉल्व,
1: स्वप्न में भी रिजॉल्व हो जाए, कहीं सिंबल्स भी आएंगे, सिर्फ नाराजगी नहीं, मेरी कहीं इच्छाएं भी है, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा हूं, तो भी मेरे अंदर वो सप्रेशन है, अंदर में फीलिंग है, लेकिन स्वप्न में कुछ आएगा,
0: तो
1: ऐसे सिंबल्स आएंगे या मैं उड़ रहा हूं ऐसी कोई बात आएगी, और उससे जो इंटरनल सबकॉन्शियसली वो जो डिजायर है वो डिजायर रिजॉल्व हो जाएगा।
0: अच्छा, उसके कारण जो ब्लॉकेज हो रहा होगा। तो सचिवानी, अगर स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है, यू नो, ये तो मुझे मालूम भी नहीं था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो उसको कम करना जरूरी है, दूसरा इतनी सारी चीजें रिजॉल्व हो रही है, हम रेजिस्ट क्यों?

0: वो नहीं रहे, चार मास से सो नहीं रहे, क्या होता है? एक बार तो जो शिवानी बेन ने बताया ऐसी परिस्थिति होती, कोई कारण हुआ, आपको एक दो घंटा नींद नहीं आ रही थी और ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट डे वो विचार चलना शुरू हो जाती है, कल नींद नहीं आई थी, शायद आज भी नहीं आएगी, तो
1: एक वो स्ट्रेस क्रिएट होना वो अब नींद नहीं आएगी पूरा टाइम ऐसे
0: आज नहीं आएगी, सब नेक्स्ट डे नहीं आई तो फाइनल हो गया। थर्ड डे भी भले बहुत कोशिश, लेकिन पहले से कि अभी नींद नहीं आने वाली है, तो ऐसे करके वो एक प्रकार के संस्कार बन जाते हैं नहीं सोने के। तो ये कुछ एक कारण है
1: डॉक्टर पटेल। तो अगर मैं नहीं सो रही हूँ, नहीं सो पा रहे हैं, मतलब जो भी वजह चल रही है, जैसा कि कहा सर शिवानी ने कि माइंड इतना फास्ट चल रहा है, लॉन्ग टर्म में ये मेरी बॉडी को या मेरे मन को ही कितना इफेक्ट करेगा?
0: एक तो जो हमने ऑलरेडी समझा है कि लैक्टिक एसिड लेवल कम नहीं होगा, और लैक्टिक एसिड लेवल है वो न्यूरोटिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। आपको इंजेक्शन दिया जाएगा लैक्टिक एसिड का तो न्यूरोटिक सिम्टम्स होंगे, अनकंफर्टेबल होगा, नर्वस हो जाएंगे, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड बढ़ने से जब नींद से डिप्राइव हुए तो इस प्रकार के न्यूरोटिक सिम्टम्स हो जाएंगे। और साथ साथ में नींद क्यों जरूरी है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फिर से रिस्टोर करना है, जो नहीं कैटाबॉलिक सारे प्रोसेसेस चले सारा दिन, अब उसको रिस्टोर करना, एनाबॉलिक प्रोसेसेस चलने चाहिए। वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होंगे क्योंकि नींद नहीं आई, तो कैटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा और सभी बॉडी ऑर्गन्स को उससे भी डैमेज होगा।
1: अच्छा, जो उनकी एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूस रहेगी,
0: आपकी नहीं एकाग्रता पर इफेक्ट होगी। जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है, वो रिकॉल करने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, टॉलरेंस कम होगा।
2: अगर हम कोई एक दो दिन नहीं सोए ठीक से, या कई बार आप आईटी प्रोफेशन में हैं तो आप पूरी रात काम कर रहे हैं, दो रातें, दो तीन दिन अगर हम नहीं सोते हैं, हमारे व्यवहार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, हम रिएक्ट जल्दी करते हैं जो कि हम पहले नहीं करते थे। टिल फोर डेज बैक मैं इतनी छोटी बात पर नहीं रिएक्ट करती, तो हमें कहते हैं आप थके हुए हैं, आप रेस्ट कर लें ताकि फिर योर पर्सनैलिटी और नेचर विल कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर मैं बहुत दिनों से ठीक से नहीं सो रहा, एंड ठीक से सो रहा नहीं डजेंट मीन कि मैं जागृत अवस्था में हूं, इट ऑल्सो कैन मीन कि शरीर सो रहा है लेकिन मैं नहीं सो रहा अंदर, द माइंड इज स्टिल वर्किंग। तब हम हर रोज अगर थके हुए मन के साथ उठेंगे, फिर उससे काम करवाएंगे, फिर ठीक से नहीं सोएंगे, फिर काम करवाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये माइंड कैसा हो जाएगा, हाउ विल इट बिकम? अगर दो दिन लैक ऑफ स्लीप से हमारा व्यवहार इरिटेटेड हो सकता है, तो अ लॉन्ग टाइम ऑफ नॉट हैविंग स्लेप्ट प्रॉपरली हमारे व्यवहार पर क्या इफेक्ट लाएगा? आज मेजोरिटी हम इसलिए भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं बिकॉज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, इवन दो वी स्लीपिंग फॉर 6 to 8 hours, बट इंटरनली वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, तो वो हमारा व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर चिड़चिड़ा, फिर गुस्सा, फिर और सारे। अगर जैसे ही माइंड को रेस्ट देना शुरू करते हैं दिन में भी, और उसकी वजह से रात में भी थॉट में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा।
1: तो लेकिन दिन में
0: डीप स्लीप, मतलब ये जो बात है ना कि हम नहीं सोए, जो शिवानी बेन बता रहे,
2: जो रेस्ट पीरियड था वो जो चार्जिंग पीरियड वाला है,
0: डेल्टा स्लीप कहते हैं इसको। स्लीप के कई साइकिल्स होते हैं, एक REM स्लीप कि जिसमें वो बीटा पैटर्न फास्ट चलती है, फिर से कुछ समय के बाद हम डेल्टा स्लीप में जाते हैं। रियल स्लीप इज द डेल्टा स्लीप।
1: तो उसका कोई टाइम फिक्स्ड है?
0: टाइम तो एक्चुअली तो ये साइकिल में होता है, परंतु अगर हम अच्छे से तैयारी करके सोए, सही रूप से सोए, तो डेल्टा स्लीप अच्छी हो सकती है।
1: ये एक और जो आजकल का लाइफस्टाइल का पैटर्न है कि रात को नहीं भी सोए, टाइम जो है सोने का जो टाइम है, मैक्सिमम लोग रात को नहीं जल्दी सो पाते हैं एंड देन लेट उठते हैं। खासकर अगर बच्चों को देखते हैं तो स्कूल जाना है, वीकडेज पे तो चाहे जितने भी बजे सोएं सुबह उठ के जाना ही है, लेकिन उसके बाद वीकेंड आया तो कोई 11 बजे, कई 2 बजे, तो ये जो पूरा उठने का जो टाइम है ये क्या ठीक है?
0: ये वास्तव में सही नहीं है। बाय चांस कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेटली सही टाइम पर सोओ और सही टाइम पर उठो। फिर भी इत्तफाक कभी मास में एक दो बार ऐसा हो गया तो भी सवेरे तो उसी टाइम पर उठ जाओ, क्योंकि बॉडी को आदत हो गई है, आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम को। अगर रोज जैसे हम लोग 4 बजे उठते हैं तो हमें 4 बजे की वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है, वो ऑटोमेटिकली उठ सकते हैं। चलो कोई 6 बजे भी उठता है तो उसी समय पर उठ जाओ।

0: कि जो नहीं बड़े भी कहते थे, पहले के समय में भी कहा गया था कि भी 10 के बाद, हमारे दादी प्रकाशमणि जी थे हमेशा कहते थे, कितने भी लोग है कहते 10 माना बस, फिर 10 बज गए अभी रेस्ट करनी है। तो 10 से 2 का समय है वो बेस्ट समय है, कि जब एक तो गहरी नींद भी आती है, वह सात्विक समय भी है कि जब जो रिस्टोरेशन मेटाबॉलिज्म का होना चाहिए वो सही मात्रा में हो जाता है। तो उस समय अगर आप नींद कर लेते हैं तो 5 घंटे की नींद में भी आप फ्रेश होकर के उठेंगे।
1: इस वे कोई एक तरीका है कि हम जब भी सोए डीप स्लीप को
0: बिल्कुल
1: अनुभव करें?
0: हाँ, उसकी कुछ बातें। एक तो कि अभी दिस इज अ बैलेंस, कोई कहेगा मैंने कहा अभी 10 बजे सोना है, और जब इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है कि जब नींद आए तब ही सो, आपको नींद नहीं आ रही आप थके हुए नहीं है तो नहीं सो। लक्ष्य तो ये रखना चाहिए कि हम मॉडरेटली मतलब अच्छी तरह से थक जाए, बिल्कुल थकावट नहीं है तो भी नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा थक गए तब भी आपको नींद नहीं आएगी। तो एक कहेंगे कि संतुलित मात्रा में मॉडरेटली हमें थकना है, ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाए सवेरे से ताकि उस समय तक आप मॉडरेटली टायर्ड है, और जो खाना है वह एटलीस्ट 2 घंटा पहले खा ले। आज अधिकतर जो नींद नहीं आने का यह भी कारण है कि आपने पेट भर के सारा दिन नहीं खाया, डिनर पेट भर के किया और बस 10:30 बजे डिनर किया, अभी 11:15 को आप सो रहे हैं तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो हैवीनेस है अंदर में। 2 घंटे पहले खा ले, भले सोने से पहले आप आधा कप गर्म दूध पी लो तो वो अच्छा है, क्योंकि एसिडिटी को भी कम करेगा, दूध से भी थोड़ी सी नींद आने लगती है, जिसमें ट्रिप्टोफैन है, जैसे चावल है इसमें ट्रिप्टोफैन है। तो डिनर में अगर थोड़ी सी मात्रा में वो ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो भी अच्छी गहरी नींद आने में वो मदद मिलती है। और बेड में लेटे लेटे नहीं पढ़ो, ये नहीं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं जब नींद आएगी सो जाऊंगा, वो भी गलत है। आप अच्छे से टेबल पर पढ़ो, जब आपको लगे भी नींद आ रही है ठीक से, उस समय वातावरण को भी एक अच्छा बना लो। एक तो कईयों के लिए जिनको नींद नहीं आती उनके लिए एक एडवाइस अच्छी है कि भी एक स्थान जो आपका निश्चित है वहीं सोने की कोशिश करो, कई लोग और कहीं नहीं सो पाते हैं, और आसपास का वातावरण ठीक हो, कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बहुत लो टेम्परेचर है तो दिक्कत होगी। सोने से पहले थोड़ा समय मेडिटेशन करो, हाथ पैर अगर गर्म पानी से धो लो, क्योंकि गर्म पानी जब हाथ पैर पर डालते हो तब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और वह हाथ पैर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्रेन को सर्कुलेशन थोड़ा कम मिलेगा, तब भी ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आने लगेगी। और फिर मेडिटेशन करो थोड़ा समय, मन को सचमुच पीसफुल बना करके फिर एक राइट पोजीशन ले लो, जैसे ना सीधे सोना भी अच्छा नहीं है, उल्टा सोना भी अच्छा नहीं है, एक्चुअली एक साइड राइट साइड या लेफ्ट साइड एक कंफर्टेबल आप पोजीशन ले लो जहां कहीं अननेसेसरी प्रेशर नहीं है, और फिर वैसे लेट जाओ। और बेस्ट तो चीज यह सोचो कि बस मैं रिलैक्स्ड हूं, आध्यात्मिक चिंतन भी कर सकते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अभी ये रेस्ट का समय है, जैसे मैं शरीर को आराम दे रहा हूं आत्मा को भी आराम की जरूरत है, ऐसे अच्छे शांति के विचार करके बस यही सोचो कि मुझे रेस्ट की जरूरत है। कई लोग जो सो नहीं पाते उनको ये लगता है कि भी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, नहीं, आपको नींद की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंसोमिया के पेशेंट है सबको मैं ये बात बताता हूं कि भी बार बार देखो, अच्छे से इस बात को समझ लो कि आपको नींद की जरूरत नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। बस आप आराम से लेटे रहो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, वो स्लीप सेंटर अगर एक्टिवेट हो गए नींद आ जाएगी।
1: तो शिवानी जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने कि शरीर को आराम की जरूरत है, आत्मा को आराम की जरूरत है, तो इस दौरान आत्मा का आराम क्या हुआ? आत्मा का
2: I just like to add little bit more to that we do is, रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ लो। यू नो जनरली हमारी जो इन्फॉर्मेशन फीड होती है रात को सोने से पहले भी आजकल थोड़ी सी नेगेटिव है, जो हमने कई बार शेयर किया, सुबह उठते ही इन्फॉर्मेशन, रात को सोने से पहले, तो हम लोग जनरली रात को सोने से पहले मुरली पढ़ लेते हैं, चाहे एक पेज एक पैराग्राफ व्हाटएवर, ताकि जो लास्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अंदर जा रहा है इट्स वेरी पॉजिटिव वेरी प्योर, ताकि वो थॉट्स भी उस क्वालिटी के चलेंगे। फिर अपना चार्ट लिख लो छोटा सा, आज सारा दिन में ये सिचुएशन आई, डोंट थिंक अबाउट द सिचुएशन, मेरा क्या रिस्पॉन्स था, क्या हो सकता है, ताकि जो मैंने ब्लॉक

0: कि जिस भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी थे माइंड में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और एक और चीज जो बहुत अच्छी और बहुत हेल्प करती है, परमात्मा को एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर टू बाबा एंड राइटिंग अबाउट, डोंट हैव टू राइट वेरी लॉन्ग स्टोरीज, जस्ट 5 मिनट्स राइटिंग अबाउट वट एवर टूडे थॉट्स फीलिंग्स जो आई, सिचुएशन आई, कहां मुझे और क्या कर, जो भी वो क्लॉटिंग है सारी अंदर, जस्ट राइट इट आउट। उससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं एंड एज इफ पूरे जो दिन का था वो पैक ऑफ कर दिया। कई बार हम बिना पैकअप किए सो जाते हैं, तो इसलिए वो इश्यूज भी माइंड में चलते रहते हैं। थोड़ा सा ये पैकअप करें और मेडिटेशन करें, बहुत अच्छी नींद आती है फिर रात को।
1: डॉक्टर साहब उल्टा चलते हैं, अभी तक नींद नहीं आ रही थी तो हमने देखा कि क्या कर रहा है, अब अच्छी नींद है तो क्या परिवर्तन महसूस करूंगी, आई कैन फील गुड राइट नाउ, तो लेकिन क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा?
2: बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे, इवन जो डिफिकल्ट है आपके सामने टास्क है उसको भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि आत्मा को भी रेस्ट मिली, ब्रेन को भी अच्छे से रेस्ट मिल गई। तो जो आत्मा को ब्रेन का उपयोग करना है वो सही कर पाएगा, और क्रिएटिविटी जो आपकी है क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, टॉलरेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। आज कहीं जो आज ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सर दर्द है, माइग्रेन, इन सब में भी आपको अच्छी रेस्ट मिल जाए, पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पर भी होगी।
1: और ये जो अमृत वेला पे उठते हैं, जो कहा जाता है कि अमृत वेला पे उठ के मेडिटेशन जो है उसका भी कोई रेलेवेंस है?
2: नहीं, उसका देखो साइंटिफिक रीजन है वास्तव में। मैं आपको पहले साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, स्पिरिचुअल भी बताता हूँ। फिजियोलॉजिकल रीजन तो यह है कि कोर्टिसोल नाम का हार्मोन, पहले भी हमने चर्चा की है कि जिसकी हार्ट पर बहुत बुरी असर होती है, ब्रेन पर बुरी असर होती है, वह सवेरे 3-4 बजे मैक्सिमम पीक पर होता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है, और दिन में 3-4 बजे वो ऑलमोस्ट 30% हो जाता है। जो लेवल रात को सवेरे, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock है, डे टाइम में 4 o'clock, इट इज ऑलमोस्ट 30%। तो वो जो अर्ली मॉर्निंग में हाई लेवल है उसको कम करना जरूरी है। आपने कभी सुना है कि लोगों को हार्ट अटैक आया? कब आया? अर्ली मॉर्निंग, नहीं अर्ली मॉर्निंग में आप देखना, 3 बजे 4 बजे मैक्सिमम हार्ट अटैक्स आते हैं। रीजन इज ए कोर्टिसोल लेवल मैक्सिमम होता है उस समय। तो अगर तब उठ करके अच्छे से ध्यान का अभ्यास करो तो कोर्टिसोल लेवल को आप कम कर देंगे, और वो कम हुआ तो जो उसके हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी आप बच जाएंगे।
1: मतलब अगर तो सुबह सुबह ही अगर हमने उसको कम,
2: तो ये साइंटिफिक रीजन,
0: उस टाइम ज्यादा है ना, उसी टाइम ज्यादा है, तो अगर हम सो रहे हैं इट्स लाइक हमारे अंदर वो डैमेज हो रहा है कि वो हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है और उसका जो इफेक्ट है ऑर्गन्स पे वो हो रहा है। लेकिन हम उस टाइम उठकर अगर अवेयरनेस के साथ वो थॉट्स क्रिएट करें जिससे वो हार्मोन कम हो जाए तो डैमेज नहीं होगा ना।
2: मेडिटेशन से वो इफेक्ट होगी, और उसमें देखो अब स्पिरिचुअल रीजन कि भी सवेरे जल्दी क्यों उठना है, क्योंकि वह समय है। आज लोग 2 बजे तक भी जाग रहे हैं, लेकिन आप देखना 2:30-3 के बाद तो सब सो जाते हैं, तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहा है आसपास का वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और तब फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ईजी है ना, तब वो कनेक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं ना 3G, तो मैं कहता हूँ 30G हो जाएगा उस समय, क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा से बहुत ही जल्दी लगेगा। और किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि भी अमृत वेले उठ के क्यों योग करना है, तब कहते भगवान के पास फ्री डाउनलोडिंग होता है, जो भी आपको लेना है तो आप फ्री ले सकते हैं।
0: अगर नेट पर भी कोई हैवी फाइल डाउनलोड करनी होती है तब कब करते हैं, जब बाकी सब लोगों का कंप्यूटर ऑफ है, क्योंकि सारी वो बैंडविड्थ आपको मिली हुई है। इसी तरह जब मेजोरिटी सो रहे हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी डोमेंट है, आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि हम सब नए नए कर रहे हैं ना, तो जब कोई ट्रैफिक नहीं हो रोड पे तब ड्राइविंग करना, द जर्नी इज वेरी स्मूथ। जैसे जैसे 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, एवरीवन इज वेकिंग अप, द एनर्जी इन द एटमोस्फियर बढ़ती जा रही है। अब उतने ट्रैफिक के बीच में आपको अपना चैनल क्रिएट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है,
2: पर जल्दी सोना पड़ेगा, ये बात ठीक है, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, परंतु वो कर लो तो फिर मॉर्निंग में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं स्टूडेंट को भी एडवाइस देता हूँ।
1: आपने

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर आनंदी रहा आनंदवान.
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.

0: नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप हमेशा करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सुनते हैं और हमें भी अच्छा लगता है जब हम लोग इसे एक पर्टिकुलर विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ खास बात लेकर आपके साथ जुड़ने वाले आज एक सुंदर विषय है ऐप डेवलपमेंट। जी हां, आपने सुना ही होगा ऐप डेवलपमेंट। और आजकल जो है स्मार्टफोन आप यूज करते हैं तो स्मार्टफोन में जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे एप्लीकेशन के माध्यम से ही हम यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया की कोई भी बातें हो, या इवन आप अगर गूगल या फिर जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, इवन आप हर कंपनी अपना एक एप्लीकेशन बनाती है। आप सबसे ज्यादा जो है जितने भी बैंक है उनके एप्लीकेशन होते हैं उसमें इंस्टॉल करके आप अपने घर बैठे बैंकिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हो पाया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐप बोलते हैं। तो ऐप डेवलपमेंट क्या है और कैसे होता है, इसमें किस तरह से करियर आप बना सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, इस विषय को लेकर आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से हमेशा की तरह हमारे साथ आज ऐप डेवलपमेंट करियर इस विषय को लेकर आ रही हैं अमृतपाल कौर जी। अमृतपाल कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: ओम शांति। न्यू एज करियर की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी सर्टिफाइड करियर काउंसलर अमृतपाल, न्यू दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये श्रृंखला बहुत पसंद

0: आ रही होगी। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ऐप डेवलपमेंट, क्या होती है ऐप डेवलपमेंट और इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें हम पैसा बना सकते हैं, कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इस करियर में आगे ग्रो कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होती है ऐप डेवलपमेंट। ऐप यानी कि एप्लीकेशन, किसी भी तरह की एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं। जैसे कि हम सब आज की डेट में व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, इसी तरह से फेसबुक भी एक एप्लीकेशन है, ये सब किसी ने डेवलप किए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब किसी ने डेवलप किए हैं, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इनको डेवलप किया है, तो इनको बोलते हैं एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस का शॉर्ट फॉर्म है ऐप डेवलपमेंट। ये एप्लीकेशंस अक्सर डेवलप की जाती हैं या तो फन के लिए, जैसे गेम्स हो गई, या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, जैसे लिंक्डइन है या फिर इंस्टाग्राम है या ट्विटर है। और जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं तो किसी डॉक्टर्स जैसे एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं ताकि हम उनकी एप्लीकेशन पे जाके उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकें या उनसे कंसल्टेशन ले सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए एप्लीकेशंस डेवलप की जा सकती हैं। आगे हम बात करते हैं कि जितने भी इस डिजिटल लाइफ में लोग काम करते हैं, यानी कि आज की डेट में जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, तो कहने का मतलब है कि जैसे यूट्यूब है, ये भी एक एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन पे काम करने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने यूट्यूब पहले बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट कितना ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है आज की डेट में। अगर आपको सही से डेवलपमेंट करनी आती है तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, कैसे दुनिया का एक सिनेरियो ही बदल सकते हो, चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो चाहे अब्रॉड में काम कर रहे हो।
1: अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया ऐप डेवलपमेंट के बारे में। क्या है ऐप डेवलपमेंट, ये हमें समझ में आ गया। जी हाँ, हम भी हमारे विद्यार्थी मित्र भी ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में ऐप डेवलपमेंट है क्या। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं। आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार। गीत के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बातें हो रही हैं ऐप डेवलपमेंट के बारे में। बहुत ही सुंदर और थोड़ा सा हट के अलग विषय है जिसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। अमृतपाल कौर जी, हम चाहेंगे कि मार्केट में एप्लीकेशंस जो ये आ रहे हैं, इसका मार्केट कैसा है, कैसे हम इसे सेल कर सकते हैं, या हम बता सकते हैं कि अगर मैं ऐप डेवलपर हो जाता हूं तो मैं मार्केट में इसको कैसे लॉन्च कर सकता हूं या कैसे बता सकता हूं, तो कुछ मार्केटिंग के बारे में जरूर बताइएगा।
1: तो अब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट कैसी है ऐप डेवलपर्स की। हमने अभी बात करी है कि ऐप डेवलपमेंट क्या होती है, क्या उसका रोल है। अब हम बात करेंगे कि मार्केट में किस किस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं और कहां कहां पे इनकी डेवलपमेंट होती है और इसका क्या स्कोप है। तो ऐप डेवलपमेंट, जैसे कि हमने समझा कि हर एप्लीकेशन जो होती है वो कोई ना कोई डेवलप करता है, लेकिन इस ऐप को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास विजन होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। जैसे अगर एक यूट्यूबर है तो उस यूट्यूबर को पहले यूट्यूब के लिए कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब वो किस पे रिकॉर्ड कर रहा है, उसके लिए लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, ये एक अलग बात है, लेकिन वो किसी प्लेटफॉर्म पे उसको रिकॉर्ड करेगा, तो इसका मतलब उसके लिए भी उसको एक एप्लीकेशन चाहिए होगी, तो वो भी एक एप्लीकेशन है। और ज्यादातर ये जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो आजकल की हमारी डिजिटल दुनिया है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही क्रिएटिव ढंग से बनाई जाती हैं ताकि काम करने का तरीका आसान से आसान हो सके। और ज्यादातर ये मोबाइल डेवलपमेंट में आती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दो तरह के फोन होते हैं, दो तरह के एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है iOS जैसे एप्पल का है और दूसरा है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ज्यादा फेमस है, बहुत सारे फोन्स हैं जिनकी बेस एंड्रॉयड ही है, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो इस तरह के, और कितने नए नए फोन आए हैं, इन सब पे एंड्रॉयड चलता है। तो जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं वो ऐसी एप्लीकेशंस बनाते हैं जो iOS प्लेटफॉर्म पे भी काम करें और एंड्रॉयड पर भी काम करें, ताकि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे देश भर में अगर वो एप्लीकेशन लोगों को पसंद आती है, वो अच्छे से काम करती है, तो पूरे विश्व में उन एप्लीकेशंस की डिमांड बन जाए। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट्स और अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को ध्यान रखते हुए ज्यादातर इन एप्लीकेशंस को बनाया जाता है। भारत में जो मेजर टेक हब्स हैं, यानी कि जहां पे बहुत सारे डेवलपर्स बैठे हुए हैं, ज्यादातर वो बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, नोएडा, यहां पर बहुत सारी आपको कंपनीज मिलेंगी जो इस तरह के काम करती हैं। और अगर हम भारत से बाहर की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, यूरोपियन कंपनीज, साउथ ईस्ट एशिया, यहां पे बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप काम कर सकते हैं और एप्लीकेशंस डेवलप करके अपनी एप्लीकेशंस को बेच सकते हैं। और बहुत सारे डेवलपर्स हमारे भारत में ऐसे भी हैं जो बाहर की कंपनियों के लिए काम करते हैं, रिमोट काम करते हैं इंडिया में रहते हुए ही, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, रिटेल बिजनेस हो, हर तरह के बिजनेस में आज की डेट में एप्स डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐप डेवलपमेंट कितना ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, चाहे आप एज ए फ्रीलांसर काम करो, चाहे आप किसी के लिए जॉब करो, चाहे आप अपना बिजनेस खड़ा कर लो, ये डिपेंड करता है कि आप में कितनी मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन इसमें ऑप्शंस इतनी

0: ये हैं इतनी सारी हैं कि अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
1: अमृत पाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए मार्केट होता है और मार्केट में कैसे वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो आइए, मार्केटिंग के बारे में भी आपने काफी अच्छी बातें बताया है और आगे भी जानेंगे और कैसे हम शिक्षा के द्वारा इसको कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं। आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितना हमें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह का कोर्स करना चाहिए जिससे हम ऐप डेवलपर बन सकते हैं। लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना और अमृतपाल कौर जी हमारे साथ है। ऐप डेवलपमेंट के बारे में बातें हो रही हैं, तो चलिए अमृतपाल कौर जी, मैं चाहूंगा कि अभी आप बताइए कि हमें अगर ऐप डेवलपर बनना है तो किस तरह की शिक्षा की जरूरत पड़ती है, किस तरह के कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है और जिसके जरिए हम एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते।
1: तो अब हम आगे बात करेंगे कि एक अच्छा एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए हमें कैसी एजुकेशन चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो ज्यादातर लोग कंप्यूटर्स करके इस फील्ड में आते हैं, बट एक्चुअल में बहुत सारे तरीके हैं इस लाइन में आने के लिए। सबसे ट्रेडिशनल जो तरीका है वो है कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आप इस लाइन में आ सकते हैं, जिससे कि आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स यानी कि कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर के जो मेथड्स होते हैं वो आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के अलावा भी हम एक सक्सेसफुल डेवलपर बन सकते हैं। कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो अपने आप सीख लेते हैं। उन्हें इतना मजा आता है कोडिंग करने में कि वो कोडिंग के छोटे छोटे जो बूट कैंप्स होते हैं उन्हीं बूट कैंप से ही वो इतना कुछ सीख लेते हैं कि वो अपनी एप्लीकेशंस बनाने लग जाते हैं। अब इस एप्लीकेशंस का जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स जो आपको सीखनी होती हैं वो होती हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स, जैसे जावा। अब हम क्योंकि ये सारी की सारी

0: मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं क्योंकि वो लैपटॉप पे भी चलनी चाहिए और फोन पे भी चलनी चाहिए, सिर्फ आईओएस पे नहीं चलनी चाहिए, एंड्रॉयड पे भी चलनी चाहिए। तो इसलिए जावा के अलावा कोटलिन जो है वो एंड्रॉयड पे काम आती है और स्विफ्ट जो है वो आईओएस डेवलपमेंट पे काम आती है। तो जावा के साथ या कोटलिन या फिर आईओएस, ये दोनों आपको आनी चाहिए। और जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क पे काम करती हैं, यानी कि वो फ्रेमवर्क जो है वो आपके लैपटॉप पे भी काम करे, आपके नॉर्मल कंप्यूटर पे भी काम करे, आपके आईओएस फोन पे भी काम करे, आपके एंड्रॉयड पे भी काम करे। तो इसलिए जो बेसिक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क होता है वो होता है रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ डेटाबेस मैनेजमेंट आनी चाहिए, इसके साथ साथ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स अच्छे से आने चाहिए और वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिटहब, ये आना भी बहुत बहुत जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो आने वाले बच्चे जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनके पास किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा कमाने की। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो एंट्री लेवल पे किसी भी डेवलपर का जो बेसिक पैकेज होता है 3 से 6 लाख के आसपास का होता है और धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं 8, 10 लाख, 15 लाख मामूली सी बात है, और जब वो अच्छे डेवलपर्स बन जाते हैं तो 20 से 40 लाख तक का पैकेज भी वो कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो ये फील्ड आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है। आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं सैलरी पे, आप अपने लिए भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं फ्रीलांसर, आप इंडिया में बैठ के बाहर के देशों के लिए भी काम कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और अपनी कंपनी भी खोलकर लोगों को काम करके दे सकते हैं। तो इस फील्ड की ऑप्शंस जो है वो इतनी अच्छी हैं कि अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा हो सकता है।
1: अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आपने ये भी बता दिया कि इस तरह के कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं और शिक्षा के साथ में प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आप एक बार इन चीजों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे और किसी को असिस्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, और उसके बाद आप मार्केट में भी अच्छा कमाई कर सकते हैं, और कितना कमा सकते हैं इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। आइए यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन।

0: नमस्कार, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आपको बहुत ही हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं और उनके करियर को लेकर एक नए करियर ऑप्शन के बारे में सुन रहे हैं आप। और ये आपके जैसे कि इंटरेस्ट या रुचि की बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि आज के युवाओं को कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करना बहुत अच्छा लगता है और घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं, इसलिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अमृतपाल कौर जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि करियर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ पार्ट, यानी किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें जरूर शेयर कीजिए।
1: अब हम बात करेंगे कि इस ऐप डेवलपमेंट में हम क्या क्या हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, हम क्या क्या स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जब हम ऐप डेवलपमेंट का काम सीखते हैं तो हम अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हैं सिर्फ iOS प्लेटफॉर्म के लिए, या फिर सिर्फ अपने आप को हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए भी स्पेशलाइज कर सकते हैं। अब अगर आप iOS प्लेटफॉर्म पे या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं तो बहुत सी टॉप टायर की कंपनीज होती हैं, जैसे स्विगी, जोमैटो, इंटरनेशनल कंपनीज, एप्पल, गूगल। तो ये सब कंपनियां एक मास्टर को, जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं अपनी लाइन में, जैसे जावा में, कोटलिन में, तो ये लोग ऐसी स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करना पसंद करते हैं। उसके अलावा एक और लाइन है इसमें जिसको फुल स्टैक डेवलपमेंट बोलते हैं, जिनके पास दोनों ही टेक्नोलॉजीज की बहुत अच्छी पहचान होती है और उनको साथ में जो पेमेंट गेटवेज होते हैं उनके ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, उनके पास इंटरफेस और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पूरे इकोसिस्टम की बहुत अच्छे से समझ होती है। तो बड़ी कंपनियां जैसे रिजर्वे है, फोन पे है, यूपीआई है, तो ऐसी कंपनियां फुल स्टैक डेवलपर को पसंद करती हैं कि वो उनको हायर कर लें, और इनका पैकेज 25 से 30 लाख रुपया होता ही होता है। इसके बाद आती है टेक्निकल लीडरशिप की बात कि कुछ लोग इतने अच्छे से अपने आप को इस लेवल पर लेकर आते हैं कि वो

0: आर्किटेक्चर बन इसका मोबाइल एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर समझ जाते हैं तो वो एज एन आर्किटेक्ट काम करने लगते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आर्किटेक्ट। तो ये भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनियों को इस तरह के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की जब जरूरत पड़ती है तो वो उनको 40 से 50 लाख तक का पैकेज देते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंपनी स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने एक छोटी छोटी एप्लीकेशन से बहुत कुछ कर लिया है, जैसे कि ओला। अब ओला एक एप्लीकेशन है और इसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करके बना के उन्होंने अपने आप को बहुत बहुत आगे पहुंचा दिया है। तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, आप कहीं नौकरी करते करते साथ के साथ अलग से अपना काम भी कर सकते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ज्यादा ऐसे भी हैं जहां से आप अच्छे से बाहर की यानी कि बाहर हिंदुस्तान से बाहर की कंपनियों के साथ भी काम कर सकते हैं, जहां पे आपको $50 पर आर से लेकर $150 पर आर तक का काम करने का मौका मिल सकता है और पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद आता है आर्किटेक्चर के बाद आता है कि कुछ लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते करते वो लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चले जाते हैं, जहां भी वो एक एक एप्लीकेशन एक एक प्रोडक्ट को डेवलप करवाते हैं और फिर उसके बाद मार्केट में उसको लेकर जाते हैं और उसको अच्छे से एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। कुल जमा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनियां, चाहे वो हेल्थ केयर में है, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर में है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में है, स्पोर्ट्स सेक्टर में है, कहीं भी हैं, सब एप्लीकेशन डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं।
1: अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, करियर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ फैक्टर क्या है, किस तरह से हम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और कमा सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी बातें आपने बारीकी से बताया है और बहुत एग्जांपल्स भी आपने दिए। थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, विद्यार्थी मित्रों, आप कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग आ गए हैं, जहां पर हम ऐप डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें आपसे शेयर की, एजुकेशन के बारे में बताया, कोर्सेज के बारे में, और फिर किस तरह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए किस तरह का मार्केट होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या, ये भी हमने देखा। तो अब आइए कुछ विशेष बातें, क्योंकि किसी भी करियर को करने से पहले हमें लगता है कि हमें इस करियर को लेकर कुछ बातें ध्यान में रखना है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो वहां पर आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेन है और हमेशा अपग्रेड रहना है, तो बिल्कुल इसमें भी हमें अपग्रेड जरूर रहना है। तो कौन सी बातें हमें ऐप डेवलपर होने के साथ हमारे दिमाग में दिल में रखना है?
1: मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। इस लाइन में जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं करना, थोड़ी बहुत आपको डेटाबेस के ऊपर भी काम करना है। सिर्फ बात अच्छी लगने से नहीं चलता, मेहनत भी मांगी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप इस फील्ड में मेहनत के बिना कामयाब हो सकते हैं। मेहनत करना बहुत जरूरी है, हर काम में उसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझना और फिर उनमें स्पेशलाइज करना, यही हर फील्ड की कामयाबी का बेस्ट तरीका है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इसमें मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत है। कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस के साथ भी अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो तब आपको आगे जाके इस चीज का इतना फायदा होता है कि आप एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है, अगर आपको क्रिएटिव काम करना अच्छा लगता है, आप अपने मन से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, आपको अपने आसपास बहुत सी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, आपका मन करता है कि इसको सॉल्व किया जाए, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक बहुत ही बढ़िया करियर पाथवे हो सकता है। और आने वाले टाइम में मोबाइल एप्लीकेशंस का ही बोलबाला होगा, क्योंकि हर काम आज की डेट में कंप्यूटर्स पे लैपटॉप्स पे होता है, और अब तो मोबाइल ही इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनपे ही आधे से ज्यादा काम हो जाता है, और हमसे ज्यादा आज की डेट में बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कितनी सारी एप्लीकेशंस मार्केट में आ चुकी हैं और कितनी सारी चीजें हम बना रहे हैं। और

0: यहाँ तक कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस बननी शुरू हो चुकी हैं, जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है कि कितनी तेजी से बैकएंड पे काम हो रहा है। इस सीरीज में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। जुड़े रहिए हमसे, आने वाले सीरीज में, आने वाले एपिसोड्स में हम अलग-अलग तरह के आपको करियर्स के ऑप्शन देंगे, जो कि आप बड़े आराम से अपना करियर बनाने के लिए सोच सकते हैं। शुक्रिया।
1: अमृतपाल कौर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह की बातें आप दिलो दिमाग में रखना है जो लोग इस वेब डेवलपमेंट के करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तो डाटा आपको सबसे अच्छी तरह से समझना आना चाहिए, डाटा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में हो जिसके जिसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो, उनसे सारी डाटा कलेक्ट करना और उसे सुचारू रूप से आप जो है समय पर उसे अपडेट करना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस पर ध्यान रखना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज आसान नहीं होता। हाँ, कुछ एक साल लग जाएंगे आपको, शुरू में आपने कोर्सेस कर लिया तो आपका मिनिमम सैलरी तो शुरू हो जाएगा, छोटे बड़े काम तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन एक अच्छे खासा मार्केट में आप जो है एक नाम कर लेते हो तो उसके बाद तो फिर आपके पास लाइन लग जाती है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और कोशिश करके डाटा जो है उसके ऊपर अच्छी तरह से पकड़ हो और किस किस तरह के जो स्टाइल्स है और कैसे इन चीजों को अच्छा बनाया जा सकता है, और जो क्लाइंट आपके पास आएगा वो सेटिस्फाइड हो कि उन्होंने अगर आपको ये जॉब दे दिया, पैसे भी दे रहे हैं, तो उनको लगना चाहिए कि मेरे पैसे का वैल्यू है। अगर ये आप कर लेते हैं तो फिर आपको मार्केट में कोई रोक नहीं सकता और आपका ग्रोथ को भी कोई कम नहीं कर सकता। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और अमृतपाल कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद एक नए करियर के बारे में बताने के लिए। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्र भी आपकी इन बातों से, आपके पूरे जो आपने जिस तरह से इन चीजों को कस्टमाइज करके बताया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी मित्र आसानी से इस चीज को समझ गए होंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्र अपने करियर को ब्राइट करें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और खुश रहिए, खुशियां बांटिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया विषय लेकर आया हूं और आज के विषय निमित्त निर्माण और निर्मल पर आपसे अपना चिंतन शेयर करूंगा।

0: आज हम ऐसे तीन शब्दों पर विचार करने जा रहे हैं जो जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, निमित्त, निर्माण और निर्बल। तीनों शब्द दिखने में सरल हैं, पर इनके भीतर छिपा है गहरा आध्यात्मिक अर्थ। पहला सूत्र है निमित्त। निमित्त का अर्थ है माध्यम बनना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू केवल निमित्त बन जा, बाकी कार्य मैं करूंगा। जब हम खुद को कर्ता मानना छोड़ देते हैं और यह मान लेते हैं कि हम केवल ईश्वर के हाथों का साधन है, तब जीवन से अहंकार समाप्त हो जाता है, हमारे कार्य सेवा बन जाते हैं और जीवन एक दिव्य यात्रा। दूसरा सूत्र है निर्माण। निर्माण का मतलब केवल घर या मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि विचारों का, संस्कारों का और संबंधों का निर्माण करना है। हर सुबह जब हम एक शुभ विचार रचते हैं, वह विचार पूरे दिन को रोशन कर देता है। एक अच्छा शब्द, एक दयालु कर्म, यही सच्चा निर्माण है। जब हम रचनात्मक होते हैं तो हम नकारात्मकता से ऊपर उठ जाते हैं। तीसरा सूत्र है निर्मल। निर्मल का अर्थ है पवित्रता, साफ मन। जैसे निर्मल जल में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही निर्मल मन में ईश्वर का दर्शन संभव है। जब हम मन से क्रोध, ईर्ष्या और लालच को मिटा देते हैं तो भीतर प्रेम, शांति और आनंद का सागर भर जाता है। निर्मल व्यक्ति जहां जाता है वहां वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता है। अगर हम इन तीनों सूत्रों को जीवन में उतार लें, निमित्त बने, अहंकार छोड़कर ईश्वर के साधन बने, निर्माण करें यानी शुभ विचारों और कर्मों से जीवन सचाएं, निर्मल बने अर्थात अपने मन को स्वच्छ और पवित्र रखें, तो हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, हर कार्य सेवा बन जाएगा, हर विचार सृजन बनेगा और हर भावना प्रेम में बदल जाएगी। आइए आज हम सब यही संकल्प लें कि हम निमित्त भी बनेंगे, निर्माण भी करेंगे और निर्मल भी रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनीरे आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर

0: सकते हैं, इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मज्जन भाई सज्जन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो का ओ दोंडी बा, आई का ओ जनरल सिंह, ओ जनरल सिंह, अरे सुधी भी सुनो पापे।

0: नहीं सांसों में मेरे रस गई। एक कुड़ी फंस गई।
1: ओफो, ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
0: अरे अरे।

0: आपले झकास रेडिओ स्टेशन
1: पुणेरी आवाज
0: ऐकत रहा 107.8 एफएम
1: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
2: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
3: थैंक यू.
2: बीइंग डिवाइन में हम संस्कारों की बात कर रहे थे. पिछले जन्मों के गर्भ में बच्चा लेकर आता है, पेरेंट्स के, स्कूल के, टीचर के. कल मैं ये सोच रहा था कि इतनी संस्कारों की बात होती है, लेकिन इसका करें क्या.
3: वी सॉ लास्ट टाइम कि वन ह्यूज सेट ऑफ संस्कार हम पास्ट से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. एंड ये बहुत सबसे पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है, क्योंकि ये अनेक जन्मों में बनता है. इट्स नॉट जस्ट एक लाइफ टाइम का संस्कार ना. आज जो यहाँ सीडी है, ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम पहले के संस्कार नहीं ला रहे हैं. उससे पहले जिस कॉस्ट्यूम में थे, उससे पहले जिस कॉस्ट्यूम में थे, उससे पहले जिस कॉस्ट्यूम में थे. इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. तो वो लॉन्ग लॉन्ग जर्नी पर जब हम एक दिन में देखते हैं कि इतना कुछ होता है और वो सब रिकॉर्ड होता है, एक जन्म में इतना कुछ होता है, तो अनेक जन्मों की कितनी रिकॉर्डिंग होगी. तो सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस जो किसी भी आत्मा पर होता है, वो होता है उसके पास्ट के कैरी फॉरवर्ड किए हुए संस्कार, क्योंकि वो बहुत सारे हैं
2: और बहुत दिनों जन्मों से उसका ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा है.
3: उसका ग्रूव भी बहुत गहरा होता जा रहा है, बिकॉज इट हैज बीन डन मेनी मेनी मेनी मेनी टाइम्स. फिर वो आत्मा इस नए शरीर में प्रवेश किया, उसको कुछ संस्कार मिले प्रेजेंट पेरेंट्स और फैमिली से.
2: ओके.
3: है ना. तो वी हैव टू सी लाइक अ बंडल. जैसे हम कंप्यूटर पे फोल्डर है ना, तब एक फोल्डर में सारे पास्ट बर्थ के संस्कार डाल दिए. ठीक है. सेकेंड फोल्डर में प्रेजेंट फैमिली एंड पेरेंट्स के संस्कार डाल दिए. जो पास्ट बर्थ का फोल्डर है उसमें बहुत ज्यादा फाइल्स है. जो प्रेजेंट फैमिली और पेरेंट्स से मिले संस्कार है थोड़े से हैं. इसीलिए आपको अपने बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में कुछ कुछ चीजें दिखेंगे कि ये इस तरह के है, ये इस तरह से है, इस तरह से है. अब ये दो सेट ऑफ संस्कार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी जीवन यही कहकर चलेंगे कि क्या करें, ये दो फोल्डर है.
2: मैं संस्कार लेके ही पैदा हुआ,
3: लेके ही आया
2: और कुछ मिले,
3: कुछ मिले. अब एक और फोल्डर खुलता है जीवन में, एंड वो है हम किस वातावरण में पलते हैं, किस स्कूल में जाते हैं, क्या हमारा माहौल है, कौन हमारे फ्रेंड्स हैं, जिसको हम कहते हैं वातावरण के संग का रंग, एनवायरमेंट से मिले संस्कार. इसीलिए एम्फेसिस होता है कि संग अच्छा होना चाहिए. सी, व्हेन वी आर इन द कंपनी ऑफ पीपल,

0: में चला गया है
1: लेकिन लूप को स्टॉप करके एक नया लूप क्रिएट किया जा सकता है. बहुत बड़ी एडवांटेज है दैट वी कैन स्टॉप द लूप.
0: या वो जो हम नया क्रिएट करेंगे दैट इज अ संस्कार क्रिएटेड थ्रू आर विल पावर. वो एक चौथा फोल्डर खुलेगा. ये जो चौथा फोल्डर है विल पावर, ये बाकी तीनों फोल्डर से ज्यादा पावरफुल है.
1: ओके.
0: विच मीन्स के हम पहले तीन फोल्डर में चाहे कोई भी संस्कार लाए हो, वो कितना भी कड़क हो, कितना भी पुराना हो, हम अपनी विल पावर से एक और संस्कार क्रिएट करके इस संस्कार को ओवर पावर कर सकते हैं.
1: किताबों में भी लिखा है सिस्टर कि जो पुराने संस्कार जो आपके दिए हुए हैं और पिछले जन्मों से आप लाते हैं वो बूढ़े हैं.
0: हाँ.
1: और जो आप नया बनाते हैं उसके अंदर जवानी ज्यादा स्ट्रेंथ है. एंड दोज आर वीकर एंड दीज आर स्ट्रॉन्गर.
0: यस. वाई? बिकॉज दोज वर डन बिफोर. दिस वी आर डूइंग नाउ. नाउ इज द पावर. क्योंकि अगर हमें इस क्षण की पावर नहीं पता होगी, अपना इसके अंदर पोटेंशियल नहीं पता होगा, तो हम जीवन भर कहेंगे ये तो मेरी आदत है, ये तो मुझे मिली, ये तो मेरी फैमिली में है संस्कार.
1: क्या कर सकता हूँ मैं? यू नो दैट
0: देन दैट्स अ विक्टिम वे ऑफ लिविंग, अ ब्लेम गेम वे ऑफ लिविंग. लेकिन जैसा लोहे लोहे को काटता है, संस्कार संस्कार को काटेगा. एक संस्कार को काटने के लिए एक संस्कार ही क्रिएट करना पड़ेगा.
1: मतलब नहीं समझा?
0: मतलब कोई पुराना संस्कार है जो राइट नहीं है. सपोज किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है. उसने इस जीवन में नहीं क्रिएट किया, नहीं क्रिएट किया. उसको मालूम भी नहीं, अवेयर भी नहीं है कि कब क्रिएट हुआ था ये, क्योंकि या तो वो पास्ट से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या उसको पेरेंटल इन्फ्लुएंस से वो संस्कार मिल चुका है. तो वो बच्चा जब से अवेयर हुआ, तीन चार साल का हुआ, पांच साल का हुआ, झूठ बोलना उसके लिए बहुत ईजी था. तो हम कहेंगे इसके अंदर झूठ बोलने का संस्कार है. अब वो बहुत साल उस झूठ बोलने के संस्कार के साथ चल रहा है और वो कहता है ये तो मेरी आदत है, छोटी छोटी बात पे झूठ, बात पे झूठ, ऐसे कोई बात नहीं कुछ नहीं लेकिन झूठ. आज अगर वो आत्मा रियलाइज करे कि दिस संस्कार नॉट गुड फॉर मी, दिस संस्कार नॉट हेल्दी फॉर मी, क्रिएटेड लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन माई लाइफ, आज से आई हैव टू क्रिएट अ न्यू संस्कार ऑफ ऑनेस्टी. हो सकता है?
1: हो सकता है.
0: हो सकता है मतलब क्या? क्या हमने चौथे फोल्डर में एक नई फाइल डाली,
1: इसको डिलीट करके नया नहीं डाला. अच्छा, एक नई नई फाइल डाली.
0: ये जो नई फाइल हम डालेंगे विल पावर के फोल्डर में और इसको यूज करेंगे, तो जो पहला झूठ बोलने का संस्कार कहीं पड़ा है, या तो पेरेंट्स से, पासवर्ड से, दोस्तों से, तीनों में से कोई भी फोल्डर में अगर पड़ा है, वो पड़ा रह जाएगा एंड इट विल नेवर कम आउट. तो ये विल पावर से क्रिएट किया हुआ संस्कार इसको ओवर पावर कर देगा. कुछ समय के बाद हमें याद भी नहीं होगा कि ये संस्कार हमारे अंदर था. ना हमें याद रहेगा ना किसी और को याद रहेगा. विच मीन्स इट्स एज गुड एज
1: नॉट देयर.
0: इट्स नॉट देयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू रिमेम्बर कि थोड़े समय के अभ्यास के बाद दैट संस्कार इज एज गुड एज नॉट देयर. आज अगर हम अपने आप को भी देखें तो हमारे अंदर कई संस्कार थे जो अब इमर्ज नहीं होते हैं. इट्स नॉट देयर. फोल्डर है लेकिन हमने नए संस्कार क्रिएट किए हैं.
1: तो हम ये अच्छी बातों के लिए भी तो कह सकते हैं, कुछ अच्छे संस्कार मुझ में हैं और मैं कभी यूज ही नहीं किया.
0: Yes.
1: तो एज गुड एज नॉट बीइंग देयर.
0: यस. इवन कुछ संस्कार हम पास्ट बर्थ से लाए होंगे जो बहुत सुंदर हैं.
1: हाँ.
0: सपोज आप पास्ट बर्थ से ऑनेस्टी का संस्कार लेकर आए एंड वो कुछ सालों तक आपके साथ है, बहुत स्ट्रांग, मतलब बच्चा अभी भी बहुत ऑनेस्ट है. ठीक है. क्योंकि वो ऑनेस्टी का संस्कार लेकर आया है. लेकिन कहीं संघ में आकर दोस्तों के साथ, कहते हैं ना,

0: सत्संग में जाकर बदल गया। तो दोस्तों के साथ कभी इधर झूठ बोला, कभी उधर झूठ बोला, तो झूठ बोलने का संस्कार बन गया। फोल्डर में ऑनेस्टी का संस्कार ऑलरेडी है, पास्ट लाइफ के फोल्डर में है ऑनेस्टी का संस्कार, एनवायरमेंट के फोल्डर में क्रिएट हो गया झूठ बोलने का संस्कार। दोनों है, दोनों है, लेकिन हम अभी ज्यादा कौन सा यूज कर रहे हैं? अगर झूठ बोलने वाला, मतलब हम वो वाला ग्रुप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो ऑनेस्टी का संस्कार एज गुड एज नहीं है अभी, लेकिन इट्स देयर, वी कैन ओपन दैट फाइल एनी टाइम। तो कुछ संस्कार हमारे अंदर थे अच्छे, हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ संस्कार नहीं थे लेकिन आज हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी विल पावर से। कोई भी ऐसी नेचर नहीं है जिसको काउंटर करने के लिए हम अलग संस्कार नहीं क्रिएट कर सकते। किसी के अंदर इन्फीरियर फील करने का संस्कार है, किसी के अंदर दूसरे को नीचा गिराने का संस्कार है, किसी के अंदर दूसरों को क्रिटिसाइज करने का संस्कार है, किसी को बातों को घुमा फिरा के बोलने का संस्कार है। तो संस्कार तो कितनी लंबी लिस्ट है, किसी को आधी बात बोलने का संस्कार है, बहुत सारे संस्कार है। ये गुस्सा, ईर्ष्या, ये तो मोटा मोटा है ना, ये तो दिख रहा है सारा दिन।
1: और हर एक के लिए एक रीजन है, मैं इसलिए झूठ बोलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बातों को सीक्रेट रखना है,
0: हाँ,
1: तो नहीं बताने।
0: कोई भी संस्कार के साथ आपके पास जस्टिफिकेशन भी होगा। किसी के अंदर वहम करने का संस्कार है, किसी के अंदर डाउट करने का संस्कार है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सूक्ष्म चेकिंग, बहुत सूक्ष्म चेकिंग। दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट, कि थोड़ी देर भी साइलेंस में अगर बैठे, चेक कहाँ सफाई नहीं है, कहाँ अंदर जितना क्लीन हो सकता है वो क्यों नहीं है, किस बात के लिए मैं ये कर रहा हूँ तरीका, ये वाला यूज कर रहा हूँ, क्यों आधी बात, क्यों घुमा फिरा के बात, दिस इज नॉट क्लीनलीनेस, क्यों एग्जैजरेशन, क्यों क्रिटिसिज्म, क्यों कंपैरिजन, दिस इज नॉट क्रिएटिंग अ गुड ग्रूव। क्योंकि कोई भी ऐसी थॉट, वर्ड और बिहेवियर जो इम्प्योर है, वो मुझ आत्मा की प्योरिटी को कम करता है। सो व्हाई आई कैन चेंज।
1: प्रभावित होके भी हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं, मतलब कर लेते हैं या संस्कार बन जाते हैं।
0: सिर्फ दूसरे की बातें सुनकर प्रभाव पड़ जाता है, अपनी सोच बदल जाती है, अपना व्यवहार बदल जाता है, अपनी इंटेग्रिटी भूल जाती है।
1: जैसे मेरे बच्चे बोलते थे मुझे, आपकी उस दिन वाली बात ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मुझे वो मैं फॉलो करता हूँ, और कई लाइफ खराब भी कर सकती है एक बात।
0: तो विच मीन्स किसी से राय लेने, किसी की बात सुननी, ये लेना है, लेकिन ये लेने के बाद डायरेक्टली नहीं जा सकता कर्म में। ये लेने के बाद देर हैज टू बी अ पॉज, देर हैज टू बी अ पॉज टू रिफ्लेक्ट कि ये बात उन्होंने तो कही, ये उनके लिए तो सही थी, ये उनके नजरिए से तो राइट थी, क्या ये मेरे लिए सही है?
1: छोटे बच्चे कहाँ सोचते इतना सब?
0: तो छोटे बच्चे तो इन्फ्लुएंस होने की स्टेज में है ना, हम क्या कर रहे हैं अभी? इसीलिए तो छोटे बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का, फैमिली का और संघ का रंग इतनी जल्दी लगेगा। लेकिन अब तो हम उस स्टेज पे नहीं है। छोटे बच्चे कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली, हमें क्या करना है? हमें लेना है, पहले पॉज करके चेक करना है, आज इस समय में हरेक कुछ न कुछ हमें जो राय देगा उसके अंदर पहले उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये वी हैव टू रिमेम्बर। उसका कोई ना कोई संस्कार है, उसके थ्रू वो राय दे रहा है, राइट भी हो सकती है राय।
1: लेकिन प्यार में इतनी स्ट्रेंथ रहती है ना, प्यार से जिसको आप प्यार करते हैं, दोस्त हो, फ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो और बाप हो, उनका तो एक तब आदमी मंत्र जैसे मान लेता है, राय ऐसे ले लेता है, विश्वास से ले लेता है। इसने कहा
0: राय विश्वास से लेनी है, सामने वाले ने दी भी राइट बात है,
1: अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू,
0: बिल्कुल राइट है ना। आप अगर अभी मुझे कोई राय दें, वो बिल्कुल राइट है, लेकिन वो आपके संस्कार के थ्रू राइट है। बट व्हेन आई स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, मुझे पहले उसको अपने संस्कार के साथ तो मैच करना पड़ेगा।
1: सही बात है। जैसा उस दिन हमारे घर में एक बार

0: बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी फंक्शन, तो किसी आदमी ने एक रिलेटिव ने आके कुछ बहुत कुछ बोल दिया मुझे. मैं सिर्फ देखता रहा उसको. और मैंने उसको बोला देखो ये जगह सही नहीं है, रिश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस तरह की बातें करते तो आपका मेरा रिश्ता भी खराब हो जाएगा. तो एंड आई एम कीपिंग क्वाइट बिकॉज आई रिस्पेक्ट द रिलेशन मोर. मैं भी जवाब दे सकता हूँ, मैं भी हंगामा कर सकता हूँ, अच्छी बात नहीं है. तो कितने मतलब बाकी के लोग आके बोले सुरेश भाई आप तो चुप रह जाते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बात में, यू शुड नॉट फियर, यू शुड हैव डन दिस, आपको तो ये कर देना चाहिए. कितने लोगों ने आके बोला आप सुना दो, आप बोल दो, अगले दिन कर दो, लिख दो. मैंने कहा नहीं, मैं इनकी राय नहीं लूंगा.
1: ये क्या हुआ, हम प्रभाव में नहीं आए. अगर प्रभाव में आ जाते उस दिन डेस्टिनी बदल जाती. डेस्टिनी बदल जाती ना. कई बार हम राइट संस्कार के थ्रू चल रहे हैं लेकिन सामने से राय अलग मिलती है. हम प्रभाव में आकर इमिजिएटली वो करने लगते हैं, हमारा भाग्य बदल जाएगा. उस दिन आपने डिसाइड किया कि नहीं बोलना, चुप रहना है, रिश्ता इम्पोर्टेंट है. उस दिन चुप रहने से मन की शांति बची, शरीर की हेल्थ बची, रिश्ते बचे,
0: विल पावर बढ़ा,
1: विल पावर बढ़ा
0: और मुझे अच्छा लगा
1: क्योंकि संस्कार अपने संस्कार पर भी ओवरकम किया.
0: मैं तो किसी की एक बात नहीं सुनने वाला. इतनी सुन के मतलब मुझे लगा कि वाह ये तो कुछ.
1: अभी इसमें दो स्टेजेस हुई. पहले जब वो बात आई तब स्टेबल रहे और अपने नॉर्मल जो संस्कार था रिएक्ट करने का वो नहीं आया सामने. एक न्यू संस्कार आया, स्टेबिलिटी, प्योरिटी. इट वॉज प्योरिटी एट दैट मोमेंट कि इस क्षण राइट क्या है. आत्मा ने सही परखा, सही निर्णय लिया और सही कर्म हुआ. ये तो उस क्षण हो गया. अब उसके बाद लोगों ने राय दी.
0: अब तो करो.
1: हाँ, पहली बात लोगों ने ये भी कहा कि चुप क्यों रहे थे.
0: उस टाइम पे भी बोला बोल दो आप क्यों चुप हो.
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम. This one incident is very important for all of us to take right now. हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं जहां ऑलमोस्ट सभी आत्माएं बॉडी कॉन्शियस स्थिति में हैं. हर आत्मा के अंदर अहंकार है, किसी में कम
0: किसी
1: में ज्यादा. अहंकार है, बॉडी कॉन्शियस है, 100% सोल कॉन्शियस नहीं है इस टाइम. अब अगर बॉडी कॉन्शियस है तो किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर नफरत है, किसी के अंदर, ये सब संस्कार हैं. अब नाउ लुक एट दीज सोल्स. एट दैट टाइम वी शुड नॉट लुक एट देम एज फैमिली एंड रिलेटिव्स. वी शुड लुक एट देम एज सोल्स कि ये इतनी सारी आत्माएं, इन सब के अपने अपने संस्कार. अब अगर उसके अंदर कोई एक आत्मा है जिसके अंदर अहंकार का संस्कार बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उस आत्मा के सामने अगर ये रिश्तेदार ने ऐसे जाकर बोला होता तो वो रिएक्ट कर जाते तुरंत. वो चुप ना रहते क्योंकि उनके हिसाब से वो राइट है. क्यों राइट है कि चुप नहीं रहना, क्योंकि उनका अहंकार का संस्कार है. तो जब उन्होंने आपको देखा कि आप चुप रहे, उन्होंने आपको कहना है कि जो आपने किया वो रॉन्ग था.
0: सही है.
1: और उन्होंने ये तक कहना है कि ये तो कमजोरी है.
0: हाँ, किसी ने मेरी बेटी के थ्रू मैसेज भी भेजा, उसके एक फ्रेंड ने, लगे टेल योर डैड के रिश्तेदारी में रिलेशन में इतना नहीं डरना चाहिए, डरते क्यों है?
1: जिसके अंदर अहंकार का संस्कार होगा उसको ह्यूमिलिटी का संस्कार गलत लगेगा. इस समय अपने आप को प्रोटेक्ट रहना कितना इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि सपोज आपको देखे उस सिचुएशन में, आपके अंदर भी वो अहंकार संस्कार तो एग्जिस्टिंग है,
0: है.
1: लेकिन उस दिन आपने अपने उस संस्कार को क्या किया था,
0: हमने दूसरा फोल्डर खोला,
1: दूसरा फोल्डर खोला,
0: जो नया वाला.
1: वेरी गुड.
0: पुराने फोल्डर को मैंने बोला तुम बैठे रहो,
1: बैठे रहो,
0: पर नया जो फोल्डर है दैट इज स्ट्रॉन्गर.
1: लेकिन इम्पोर्टेंट इज पुराना फोल्डर तो है. सो देर आर बिग चांसेस कि कोई आएगा और राय देगा जो हमारे पुराने संस्कार को खोलने को टेम्पटेशन हो गई है. जैसे हमने अगर सिगरेट, अल्कोहल, चाय, कॉफी कुछ छोड़ी और फिर हम सबके साथ बैठे, और सब ले रहे हैं और हमें भी कहा क्या होता है एक लेने से, तो हमारा लेने का

0: चांस हो जाता है. सिमिलर विल हैपन विद दिस कि अहंकार का संस्कार है, शायद उस दिन ये करने के बाद थोड़ा मन ने एक आधी बार बोला भी होगा, इतना चुप रह गया, मतलब बिल्कुल ही नहीं बोला. कैसे? एक बार मन जरूर कहा होगा अंधाड़ा
1: नहीं, जब इन्होंने बोला कि इतनी कमजोरी क्या है तो
0: उससे पहले भी रिफ्लेक्ट करना है, उससे पहले भी. ये बहुत सूक्ष्म
1: सूक्ष्म अंदर सटल एक बात आई थी कि डिड आई डू राइट, मेरा चुप रहना अच्छा होता था या बोल देना अच्छा था.
0: दिस इज ब्यूटिफुल.
1: घर मेरा, पार्टी मेरी, तुम बाहर वाले.
0: ये देखिए ये कैसे इनर वर्क चलता है. इट्स सच अ
1: ब्यूटिफुल.
0: ये थोड़ा थॉट क्यों आया? क्योंकि वो वाला संस्कार फोल्डर है तो वो थॉट आएगा ही, क्योंकि वो संस्कार भी तो ट्रिगर करेगा ना एक इमोशन, तो इसलिए वो आया. नाउ सी व्हाई इट्स सो रिस्की, क्योंकि वो संस्कार है, वो थॉट ट्रिगर हुआ है. सामने से जैसे कोई वो वाली बात ही कहेगा कि ऐसे ही चुप रह गए, और ऊपर से ये भी कह देगा ये तो कमजोरी है, यू फेल्ड टुडे, इज दिस द वे टू बिहेव, पीपल कैन जस्ट ट्रैम्पल ओवर यू एंड वॉक अवे, पीपल कैन एक्सप्लॉइट यू. नाउ अगर ये थॉट हमारे ऊपर हावी हो गया तो हम कहेंगे हम उनके प्रभाव में आ गए, और फिर कई बार एक नहीं होता ना, पांच छह लोग होते हैं सेम राय देते हुए. जब इतने लोग वो ही राय देंगे, मतलब वो ही वाला फोल्डर खोलेंगे, और हमारे पास भी वो फोल्डर है, तो वो फोल्डर खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन उस दिन आपने क्या किया, अपनी एनर्जी को इस सब एनर्जी के प्रभाव से बचाया. दिस इज सो इम्पोर्टेंट इन टूडेज टाइम. दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हरेक जो राय दे रहा है वो किस संस्कार से दे रहा है, किस नजरिए से दे रहा है, क्या ये राय मेरे लिए सही है. एंड मेरे लिए सही है कि एक ही चेकिंग है, क्या ये आत्मा की प्योरिटी को बढ़ाएगा, शरीर के लिए मेरे हेल्दी है, और मेरे रिश्तों को पहले से और अच्छा बनाएगा, तो ये राय सही है. अगर ये तीनों में कहीं भी कुछ और करेगा तो ये राय मेरे लिए सही नहीं है, चाहे पूरी दुनिया वो ही राय दे रही है. इवन इफ द होल वर्ल्ड इज डूइंग इट, व्हाट विल मेक मी फील लाइट, बॉडी हेल्दी, रिलेशनशिप्स ब्यूटिफुल, ये क्राइटेरिया हमेशा रखना है. उस दिन अगर रिएक्ट किया होता, कितना समय मन अशांत रहता उसके बाद. अगर आप रिएक्ट करते वो सामने से तो और रिएक्शन आता, फिर कोई और दो लोग साथ में और रिएक्ट करते, स्टोरी कुछ थी बन कुछ और जाती, मन कितने दिन परेशान रहता, शरीर पे इफेक्ट होता, रिश्ते तो ऊपर नीचे हो जाते, एक रिकॉर्डिंग भी बन जाती अंदर, जब भी वो सामने फिर मिलते वो रिकॉर्डिंग खुलती, अगली बार शायद हम फिर रिएक्ट कर देते, डेस्टिनी वुड हैव गॉन ऑन टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ. कम्प्लीटली वन कर्म कैन टेक आवर डेस्टिनी इधर हियर और हियर. दैट्स वाई इट्स सो पावरफुल टू वॉक वेरी केयरफुली. इसीलिए कहते हैं वो जो दिया है उसकी जो लॉ है ना, उसको हमेशा संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग हैं जो उस लॉ को फूक भी मारेंगे. एंड वो लॉ क्या है? हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति, हमारी प्योरिटी, हमारी डिग्निटी. वो खुद भी फ्लिकर करेगी क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, दूसरे लोग भी उसको पानी डालेंगे या फूक मारेंगे क्योंकि उनकी लॉ उतनी अच्छी नहीं चल रही है. लेकिन हमेशा ऐसे, इसीलिए कहते हैं दिया अगर बुझा तो अब शकुन है. अगर दिया बुझने भी लगता है ना, फटाफट भागते हैं उसको संभालने के लिए. इसीलिए कहते हैं कि अगर दिया बुझा तो अब शकुन है, और किस लिए अब शकुन होगा?
1: मैं तो समझा नहीं था अभी.
0: आप सोचो अगर सिर्फ वो एक फिजिकल दिए की बात होती है ना, फिजिकल दिया होता आपके घर में लगा चल रहा है, मंदिर में है, बहुत सुंदर दिया जल रहा है, लेकिन हवा आई, पंखा चल गया, कुछ हो गया, दिया बुझ गया, तो उसमें अब शकुन क्या हुआ? जाके फिर से जला लेंगे उसको, अब शकुन क्या है?
1: यहाँ ज्ञान का दिया बुझ गया.
0: यह सोल कॉन्शियस स्थिति अगर थोड़ी देर के लिए भी बुझी तो कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है, इसलिए कहते दिया बुझा कुछ अशुभ होने वाला है.
1: बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है इसका.
0: अशुभ हो जाएगा ना उस क्षण, अगर आप रिएक्ट कर देते तो बहुत कुछ अशुभ हो जाता, लेकिन उस क्षण आपने क्या कर दिया उस दिए को,

0: होल्ड,
1: चारों तरफ से
0: जोर जोर से तूफान आया चारों तरफ से। अगर हम तूफान पर फोकस करते दिया बुझ जाता,
1: बुरा भला करके फिर अपने आप को जस्टिफाई भी करता, और मैं करता भी क्या, भरी महफिल में ऐसा बोल दिया, सबके सामने ये कर
0: लेकिन
1: दिया।
0: उतनी देर में दिया तो बुझ गया,
1: बुझ गया बात साथ में, फिर आगे भी दिया का तेल वेल गिर के तो दोबारा जलाने के काबिल में नहीं रहता दिया वो।
0: इसीलिए जितना ध्यान उस दिए का रखते हैं, जोर से भाग कर आते हैं कि दिया बुझने से पहले उसको क्या कर ले, संभाल ले। जितना ध्यान उस दिए का रखते हैं उससे कई कई कई कई कई गुना ज्यादा ध्यान इस दिए का रखना है। कभी कुछ आई भी ऐसी थॉट्स एंड फीलिंग्स, जल्दी से ज्ञान का ग्रिप भी डालें, कुछ भी ज्ञान का उस समय सुन ले, पढ़ ले, दिया ठीक होने लगता है, लौ फिर जलने लगती है। क्योंकि वो जो नेगेटिव थॉट है उसको कुछ और ज्ञान मिलता है। तूफान है, अपना हाथ पकड़ ले, एंड लाइफ विच हैज कम आउट वेरी ब्यूटिफुल हियर। प्रभाव में नहीं आना किसी की बात के, सिर्फ राय दे रहे हैं, दोस्त है, परिवार है, रिश्तेदार है, इज नॉट नेसेसरी।
1: अगला आदमी गुस्सा कर रहे तो और मैं भी करूँ, वो भी तो प्रभाव में आना ही हुआ ना,
0: वो तो एनर्जी के प्रभाव में आ गए। ये हम कह रहे हैं किसी की बात के प्रभाव में आ गए।
1: उसके बाद तो वो जब लोग बोलते हैं आपको, आपने आप वीक हैं, आप ये हैं,
0: दूसरे आपका एडवांटेज लेंगे, ये तो फिर ऐसा करेंगे, आप ही हर टाइम झुकेंगे क्या, कितना आप झुकेंगे, लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे इस तरह से। दिस राय डज नॉट वर्क फॉर मी। तो ये प्रभाव में नहीं आने से वो जो तीसरा फोल्डर था कि एनवायरमेंट के संग से जो रंग बन जाता है उसमें हम बच जाएंगे, और हम अपने अपने संस्कार को जो हमारे लिए हेल्दी है उसको पकड़ के चलते जाएंगे, वो रीइन्फोर्स होता जाएगा फिर। तो चार फोल्डर हमने देख लिया, अब पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड संस्कार, फैमिली से मिले संस्कार, एनवायरमेंट संग से क्रिएट हुए संस्कार, और अपनी इच्छा शक्ति अपनी विल पावर से क्रिएट हुए संस्कार। चार फोल्डर यहाँ पर है।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: इन वन डे We receive so much information, cross so many situations, create varied experiences, and all this gets recorded on the soul. Imagine the recordings created in one lifetime, and then imagine the recordings created in many lifetimes. A soul is a collection of all these recordings. Like we have folders on the computer, similarly, look at the folders of sanskars on the soul. One folder has many sanskars created in past births. Second folder has sanskars which were created because of the influence of sanskars of parents and immediate family. Third folder of sanskars we create due to influence of environment, influence of country, caste and culture in which we were born, influence of school, workplace, friends and people we meet on the journey of this life. The advice that family and friends will give us will be through their acquired sanskars. It will be based on how they would respond in that situation. We need to check whether that advice is right for us and our karmic accounts. Otherwise, we need to protect ourselves from their influence.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू

0: have that love to give it to me. Nahi to I can keep waiting till the end of my life for people to fill my cup. It will never get filled. And Rajyog se humne ye realize kiya ki mera jo cup hai ye already bhara hua hai. मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप. अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो. हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी. उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है. जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे. एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। हम जो सलाम कर कभी भी मरता नहीं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है एकाग्रता व मन में निकट संबंध। जैसा कि हम सभी देखते हैं, एकाग्रता व मन में निकट का संबंध है। किसी कार्य में जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति मन में गहरा उतरता जाता है। कार्य के प्रति लगन, निष्ठा, एकाग्रता एवं मौन से कार्य कम समय पर पूरा हो जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध जैन साहित्यकार टोडरमल उन दिनों अपना प्रसिद्ध ग्रंथ मोक्ष मार्ग लिख रहे थे। एक दिन होता क्या है कि भोजन करते समय वह अपनी माँ से बोली, माँ लगता है आज आप भोजन में नमक डालना भूल गई। तो माँ जो है वो मुस्कुराई और बोली, बेटा लगता है आज दो दिन अपना ग्रंथ पूरा कर लिया है। टोडरमल चौंक गया और पूछा, हाँ चकित होकर कहा कि माँ, हाँ माँ मेरा ग्रंथ आज पूरा हो गया है, लेकिन आपको इस बात का पता कैसे चला? माँ ने कहा कि नमक तो मैं तेरे खाने में 6 माह से नहीं डाल रही थी, लेकिन उसका अभाव तुम्हें आज पहली बार अनुभव हुआ, क्योंकि तुम आज ग्रंथ लेखन में धारित मौन व लगन एकाग्रता से बाहर आ गए। इससे मैंने अनुमान लगा लिया। तो आपने देखा, माँ ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को कैसे पहचान गया कि आज इसने अपने कार्य को पूरा कर लिया है। तो इसी तरह हम देखते हैं एकाग्रता की एक मिसाल और है स्पेस एक्स अंतरिक्ष अभियान के संस्थापक जो एक है 30 लाख कार के जो कंपनी के मालिक है एलन मस्क। उनका भी यही है कि उसे बचपन में पुस्तकों के अध्ययन का शौक था। वह पुस्तक में इतना एकाग्र हो जाते थे कि उसे माँ के पुकारने का भी पता नहीं चलता था। उसकी माँ को यह लगने लगा

कि मेरी बेटी के कान खराब है, क्योंकि निकट से पुकारने पर भी उसे मेरी आवाज जो है वो सुनाई नहीं पड़ती है। उसने अपने पुत्र के कान का ऑपरेशन करा डाला, परंतु बात नहीं बनी। माँ को बाद में यह समझ में आ गया कि मेरा पुत्र एकाग्रता की तरह कष्ट रखता है, जिससे वह अपने कार्य में इतना मशगूल हो गया है कि उसे आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता। छात्र जीवन में एक बार इलन मस्क स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा था, सड़क से एक बाराती जो है वो बाराती बैंड बजाते हुए वहां से गुजर रहे थे। थोड़ी देर में एक व्यक्ति वहीं पर आया और वहां पर आकर इलन से पूछा कि बैंड पार्टी इधर से जा चुकी है क्या? इलन ने कहा कि मैं पढ़ रहा था। अतः कौन आया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी होती है एकाग्रता। एकाग्रता जो है मौन के गर्भ से ही पैदा होती है। तो आपने देखा, एकाग्रता अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो वो एकाग्रचित होकर ही हर कार्य को संपन्न करता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है एकाग्रता और मन में निकट संबंध। यह देखा गया है कि जिसकी जीवन में मौन व पवित्रता की जितनी प्रधानता होती है, उसे वर्तमान में ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से चल रहे जो कोई ऐश्वर्य कार्य का बोध उतनी ही सहजता से हो जाता है। मौन व पवित्रता अमीरों के बजाय गरीबों में ज्यादा है, अतः वे ईश्वर के समीप सहजता से आ जाते हैं। मौन जो है ज्ञान मौन चिंतन से गहराता है और तन मन धन की पवित्रता से ईश्वर से योग युक्त होना सहज हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं गणेश जी की एकाग्रता, यहाँ पर देखते हैं यादगार है ग्रंथों में वर्णन आता है कि वैदिक ज्ञान के विस्तार के बाद महर्षि वेदव्यास ने 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत को लिपिबद्ध करने का संकल्प किया। कहा जाता है कि वह धारा प्रवाह श्लोकों का उच्चारण करते थे और गणेश जी की एकाग्र होकर उसे लिपिबद्ध करते थे। गणेश जी उसे एकाग्र होकर लिपिबद्ध करते थे। कार्य पूरा होने पर महर्षि ने गणेश जी से कहा, महाभारत आपकी लेखनी से प्रस्तुत ग्रंथ है, मैंने तो केवल शब्दों की सृष्टि की है, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। गणेश जी ने कहा, प्रत्युत्तर उन्होंने दिया कि महर्षि, मैं इस कार्य में ये श्रेय का पात्र नहीं हूँ, आप तो ज्ञान की साक्षात मूर्ति और शब्द ब्रह्मा के साक्षात कोश ही महर्षि ने देखा था कि लेखन के दौरान गणेश जी पूरे समय पूरी तरह से मौन थे, अतः उन्होंने प्रश्न किया, गणनायक मैं आपके वाक सुनने व मौन को देखकर हतप्रभ था, कृपया मौन के महत्व से मुझे अवगत कराए। हाँ, इसकी आप कृपा करें कि आखिर मौन क्या है। इस पर गणेश जी ने कहा, इंद्रियों का दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए, दीर्घायु व ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इंद्रियां संयम का बड़ा महत्व है। वाक संयम

जो है साज लेने से अन्य इंद्रियों का संयम सुदृढ़ हो जाता है। अधिक बोलने से अक्सर हम जो है वो अवांछित शब्द मुख से निकलते हैं। इससे राग द्वेष ईर्ष्या जैसे दुर्गुण बनते हैं। अतः एक एक शब्द विचार करके ही बोलना चाहिए। इस तत्व ज्ञान से महर्षि वेदव्यास पुलकित होंगे। तो आपने देखा कि महर्षि वेदव्यास जो इतने बड़े लेखक थे, उन्होंने भी गणेश जी के मन से ही प्रभावित हुए कि उनकी एकाग्रता के बारे में जानकर वो जो है वो पुलकित हो उठे। तो ये है मौन व्रत। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अपडेट के बाद में फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है मौन जो है एकाग्रता व मौन में निकट संबंध। तो हम देखते हैं कि दर्शन जो है आत्मा करती है, किस चीज की करोड़ों सुनते हैं परंतु कोई कोई सुन पाता है, क्योंकि सुनना एक बात है और सुन लेना बिल्कुल दूसरी बात है। सुनना अर्थात शब्दों को प्राप्त करना, सुन लेना अर्थात अभिप्राय यही ज्ञान को प्राप्त करना, उस पर अमल करना। सुनना क्रिया है और सुन लेना क्रियान्वयन है। मंदिर में करोड़ों भक्त आते हैं आरती गाने और प्रवचन सुनने को क्या कहते हैं, क्रिया करते हैं, परंतु कोई कोई ही आरती के भाव में टिक कर भाव विभोर होते हैं और प्रवचन से स्वपरिवर्तित होते हैं। सुन लेना अर्थात समझ लेना, इसे कर्म में लाकर लाभान्वित होना। देखा जाए तो भक्तों के द्वारा मंदिर में इष्ट देव को मात्र देखा ही जाता है, बिरला ही कोई भक्त होता है जो देखता नहीं बल्कि साक्षात्कार या दर्शन करता है। देखती आंखें हैं और दर्शन आत्मा करती है। जो दर्शन करता है वह देहभान में नहीं रहता और इष्ट देव के गुण व स्वरूप को जानता है, उनके स्वरूप में खो जाता है। वह फिर तृप्तता का अनुभव करता है। एक राजयोगी योग के दौरान खुली आंखों से सामने के स्थूल पदार्थों को नहीं देखता बल्कि मन की सूक्ष्म आंखों से परम धाम में परम पिता शिव का दर्शन कर रहा होता है। तो आपने देखा कि अगर मनुष्य चाहे तो अपनी एकाग्रता से, अपनी दिव्य गुणों से, जो उनके अंदर होती है आत्मा के जो दिव्य गुण है, उसको एकाग्रचित अगर कर लिया जाए, उसमें अगर टिक जाया जाए, तो उससे एक मौन में रहना तो एक उसका जो निकट जो उसका संबंध है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसकी एकाग्रता के कारण वो ईश्वर से भी अपनी जो है उनकी तृप्तता का अनुभव कर सकता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मुझे सुन आपका फिर से स्वागत करती और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है एकाग्रता व मन में निकट संबंध। जैसे कि हम देखते हैं मनुष्य सारे दिन में पता नहीं कितने लोगों से कितना कुछ सुनता व देखता रहता है और यदि वह सारी बातों पर एकाग्र होकर अमल करे तो उसका दिमागी संतुलन हिल जाए। यह कुदरती व्यवस्था है कि मनुष्य काम की बातों को तो सुनकर उन पर अमल करता है परंतु बेकार की बातों को सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। उसी प्रकार वह सारे दिन में कुछ न कुछ बोलता है परंतु उसमें दूसरों के द्वारा अमल करने के लिए बातें कम ही होती है। तो बेकार की जो बातें होती हैं, उन बातों को तो बोलना बंद क्यों नहीं किया जाए। कोई भी मनुष्य भला यह क्यों चाहेगा कि वह बेकार की बातें भी बोले और दूसरे उसे सुना हाँ और अनसुना कर दे। परंतु उसके स्मृति में ही यदि बहुत ज्यादा बेकार भरा हो तो वह बेकार स्वतः ही चेतना में आकर जीभ से बाहर रहने लगता है। यदि इससे बचना है तो जागरूकता का अभ्यास करना होगा, अर्थात यह ध्यान रखना होगा कि अवचेतन मन में भरी व्यर्थ की बातें लंबे समय तक स्मृति में ताजा न की जाए ताकि वे पहले पुरानी में पढ़कर और फिर बहुत पुरानी में पढ़कर अवचेतन मन में चली जाए और अंततः अपना वजूद खो दे। फिर साथ साथ यह भी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ नया विकार न पैदा किया जाए, अर्थात अर्थहीन महत्वहीन बातों को ना तो बोला जाए और न ही सुना जाए। जीव के मन का अभ्यास भी इसमें सहायक होता है या फिर मित्तभाषी होकर रहा जाए जो श्रेष्ठ संग से संभव है। तो आपने देखा कि हमें अगर मन को धारण भी करना है हाँ मन का जो निकट जो संबंध है उसकी एकाग्रता से ही उसका निकट संबंध है और उसमें अगर हमारी एकाग्रता हमारी दृढ़ संकल्प के साथ हो तो उसपे हम स्वतः ही हम उसपे अमल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार। ओम।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कंसाला मोठा पैसा झाला खोटा. ये रे बॉस ये रे.

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा
1: क्या
0: यही है यही है यही तो है वो।

कहे महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास तेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भूचाल है।

मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है। जो हमें बांधे वो धागा है, नहीं जंजीर है।

0: पुणे की आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसात अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लूट।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
3: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: हिमाच्छादी हिमालय के प्रति स्वामी विवेकानंद का तीव्र आकर्षण था। वे हमेशा से चाहते थे कि हिमालय की किसी मनोरम एकांत स्थान में रहकर वे तपस्या और ध्यान करेंगे, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। जब भी वे हिमालय के किसी भी स्थान में जाते, कुछ न कुछ घटित होता और उन्हें वहां से वापस जाना पड़ता। इस बार दृढ़ निश्चय करके हिमालय की यात्रा की थी कि मनोकामना पूरी न होने तक वापस नहीं आएंगे।
1: अल्मोड़ा के निकट आकर स्वामी जी भूख और थकावट से ऐसे अवसन्न हो गए कि और नहीं चल पाने से धरती पर लेट गए। निरुपाय हो अखंडानंद पानी खोजने गए। सामने ही कब्रिस्तान था और उसके निकट ही एक फकीर झोपड़ी में रहते थे। स्वामी जी की अवस्था देखकर वे दया से अभिभूत हो गए। उन्होंने एक खीरा लाकर स्वामी जी को खाने को दिया। इसे खाकर उन्होंने काफी ताजगी का अनुभव किया। अमेरिका से लौटने के बाद अल्मोड़ा की एक जनसभा में उक्त फकीर को उपस्थित देखकर स्वामी जी ने कृतज्ञता भरे हृदय से उन्हें बुलाकर सबके समक्ष ये कहकर उनका परिचय दिया कि ये ही उनके प्राण रक्षक हैं। फकीर ने उन्हें नहीं पहचाना,

0: स्वामी जी ने उन्हें ठीक ठीक पहचाना था और प्रतिदिन स्वरूप उन्हें कुछ अर्थदान भी दिया था।
1: हिमालय भ्रमण स्वामी जी के लिए सदा ही शारीरिक कष्टदायक रहा था। रास्ते की थकान तो थी ही, भोजन और शयन का भी कोई ठिकाना नहीं था अथवा अभाव था। परंतु हिमालय की सुंदरता, गंभीरता और शांति के दर्शन से वे प्रफुल्लित हो उठते, रास्ते की थकान भूलकर नई ऊर्जा से भर जाते।
0: अल्मोड़ा पहुंचने पर अखंडानंद उन्हें अम्बादत्त के बगीचे में ले गए और उन्हें वहां रखकर अल्मोड़ा में अन्यत्र तपस्यारत स्वामी सारदानंद और कृपानंद नामक अन्य दो गुरु भाइयों को सूचना देने गए। सूचना मिलते ही ये दोनों अम्बादत्त के बगीचे को चले। उन लोगों ने थोड़ी ही दूर आगे जाने पर देखा कि स्वामी जी स्वयं उन लोगों की ओर आ रहे हैं। तब सभी एक साथ हो अपने आश्रय दाता लाला बद्री शाह के घर पहुँचे। शाह जी ने उन लोगों का सादर स्वागत किया।
1: शाह जी के घर वे खूब आनंद पूर्वक रहते थे तथा उनकी श्रद्धा भक्ति और अतिथि परायणता देखकर उन्होंने कहा था, ऐसा भक्त संसार में विरल है। शाह जी के घर पर कई दिन बिताकर गुरु भ्रातागण गढ़वाल जाने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय कलकत्ते से तार द्वारा समाचार आया कि स्वामी जी की एक बहन ने आत्महत्या कर ली है। यथा समय इस दारुण घटना के विशेष विवरण से युक्त एक पत्र भी आया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस मर्मांतक वृत्तांत को पढ़कर स्वामी जी का स्वभावतः स्नेह प्रवण मन दुख से निढाल हो गया।
0: इस अत्यंत विषादमय घटना के माध्यम से भारतीय नारी जीवन के वेदनापूर्ण पक्ष का एक और प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने पाया एवं इसके प्रतिकार के लिए उनके प्राण तड़प उठे। परंतु तत्काल वे कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार नहीं थे। हृदय का असहाय दुख उन्हें हिमालय के निर्जन तर क्षेत्र में और भी अधिक जोर से धकेल कर ले चला। उन्होंने 5 सितंबर को अल्मोड़ा से बद्री नारायण की ओर यात्रा की। साथ में चले सरादानंद, अखंडानंद और कृपानंद तथा सामान ढोने वाला एक कुली।
1: यात्रा के दौरान स्वामी जी और अखंडानंद जी फिर बीमार पड़ गए। कमजोर तो दोनों पहले ही हो गए थे, अब ये पैदल चलना, वो भी पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर, इस सब ने उन्हें और भी घायल कर दिया। फिर भी वे केदार बद्री के रास्ते चल पड़े। पर पास आने पर उन्हें मालूम हुआ कि इस क्षेत्र में अकाल पड़ा है और सरकार ने आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। मजबूरन उन लोगों को तीर्थ दर्शन की इच्छा त्याग कर दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा और इसी रास्ते वे कर्ण प्रयाण पहुंचे। उसके बाद उनका अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखकर स्वामी जी के बचपन से संजोया सपना पूरा हो गया।
0: वहाँ वे एक धर्मशाला में रुके। अखंडानंद और स्वामी जी की तबीयत यहाँ ज्यादा बिगड़ गई। सौभाग्यवश वहाँ गढ़वाल के सदर अमीन श्री बद्रीदेव जोशी से उन लोगों की भेंट हुई। जोशी जी आयुर्वेद चिकित्सक भी थे। उन्होंने उन्हें दवाइयाँ दी और कुछ स्वस्थ होने पर डांडी के द्वारा यानी पहाड़ी पालकी के द्वारा 9 मील दूर श्रीनगर भेज दिया।
1: श्रीनगर में ये लोग एक कुटिया में रहे। लगभग एक माह तक सभी वहाँ रहे और आराम मिलने पर स्वास्थ्य भी ठीक रहा। फिर शुरू हुआ चल पड़ने का सिलसिला। उन दिनों स्वामी जी को भागीरथी दर्शन के लिए व्याकुल देखकर सबने इसके बाद टिहरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में भिक्षा नहीं मिली क्योंकि रास्ता निर्जन और वनाच्छादित था। संध्या को थके शरीर से गांव में पहुंचकर उन लोगों ने एक चबूतरे पर आसन लगाया और स्वामी जी के धूम्रपान के लिए अखंडानंद आग लाने गए, किंतु किसी ग्रामवासी ने आग नहीं दी। साधुगण सोचने लगे कि जहां एक साधारण आग तक नहीं मिलती, वैसे अतिथि विमुख गांव में भिक्षा कैसे मिलेगी। तभी साधुओं में प्रचलित इस क्षेत्र के विषय में एक कहावत उन लोगों को याद हो आई, गढ़वाली सरीखा दाता नहीं, लट्ठा बगैर देता नहीं।
0: वहाँ ऐसे ही मजाक में गंभीर अखंडानंद चिल्लाने लगे, ए प्रधान, रोटी ले आओ, लकड़ी ले आओ। आश्चर्य कि उसी क्षण ग्रामवासी श्रद्धा पूर्वक चावल आदि लेकर हाजिर हुए। परंतु साधुओं ने कहा कि वे रसोई नहीं पका सकेंगे, तैयार रोटी आदि चाहिए। तुरंत ग्रामवासियों ने आनंद पूर्वक भोजन प्रस्तुत कर दिया तथा काफी रात तक बैठकर साधुओं से ग्रामांचल की रीति नीति एवं सुख दुख आदि की बातों की चर्चा की।

0: साधुगण भी उन लोगों के सरल व्यवहार एवं सेवा परायणता से मुग्ध हो गए।
1: टिहरी पहुँचने पर निर्जन गंगा तट पर साधुओं के लिए निर्मित दो कमरे मिले। श्रीनगर की भांति यहाँ भी वे लोग भिक्षा करके जीवन यापन करते तथा शास्त्र विवेचन और ध्यान धारणा में दिन व्यतीत करते। यहाँ स्वनाम धन्य पंडित हरप्रसाद शास्त्री और श्री रघुनाथ भट्टाचार्य से स्वामी जी का परिचय हुआ। भट्टाचार्य महोदय टिहरी राज्य के दीवान थे। उन्होंने गणेश प्रयाग में गंगा और विलांगना नदियों के संगम पर स्वामी जी की साधना के लिए एक कुटी बना दी थी, किंतु स्वामी जी वहाँ रहने का सुयोग प्राप्त नहीं कर सके।
0: अखंडानंद जी कुछ दिनों तक सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित रहे थे। अब स्थानीय डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ब्रोंकाइटिस होने की संभावना है। पहाड़ की ठंडी जलवायु से व्याधि और बढ़ जाएगी, खासकर शीत ऋतु आने ही वाली है, इसलिए वे लोग जितनी जल्दी नीचे उतर जाएं उतना ही शुभ है। इन सब शंकापूर्ण बातों को सुनकर और गुरु भ्राता के कल्याण की बात सोचकर स्वामी जी ने अपनी तपस्या के संकल्प का परित्याग कर प्रायः 15-20 दिनों तक टिहरी में रहने के बाद देहरादून जाने का निश्चय किया। यात्रा के पूर्व स्वामी जी ने दीवान जी से मिलकर सारी बातें समझा दी और बता दिया कि भविष्य में फिर अवकाश मिलने पर वे उनकी सुव्यवस्था का उपयोग करेंगे। दीवान जी ने सारी बातें सुनकर अखंडानंद की चिकित्सा के लिए देहरादून के सिविल सर्जन के नाम एक पत्र लिख कर दिया और स्वामी जी एवं स्वामी अखंडानंद को मसूरी तक ले जाने के लिए 2 घोड़ों की व्यवस्था कर दी। इसके अतिरिक्त उन लोगों के पथ्य की अन्यान्य व्यवस्था भी कर दी।
1: उसके बाद सभी देहरादून को चले। यहाँ भी स्वामी जी के जीवन की उसी पुरानी बात की पुनरावृत्ति हम देखते हैं। वे जब भी तपस्या में डूब जाना चाहते तभी विघ्न उपस्थित हो जाता। इसी से स्वामी अखंडानंद ने एक अवसर पर लिखा था, मैंने स्वामी जी को असंख्य बार ये कहते सुना है कि जब भी उन्होंने निर्जन नीरव साधना में लीन हो जाने का प्रयास किया है तभी घटनाक्रम के दबाव में पड़कर उन्हें साधना छोड़नी पड़ी है। वे जानते थे कि श्री रामकृष्ण ने उन पर गुरु भ्राताओं के संरक्षण का जो भार सौंपा है उस दायित्व पालन की तुलना में उनकी तपस्या भी तुच्छ है।
0: मसूरी से नीचे उतरकर जब वे राजपुर होकर जा रहे थे तब दूर में एक साधु को देखकर उन्हें लगा कि ये उन्हीं लोगों के गुरु भ्राता स्वामी तुरियानंद होंगे। विश्वास पूर्वक उन लोगों ने उन्हें जोरों से नाम लेकर पुकारा तथा उनके समीप आने पर देखा ये तो सचमुच ही स्वामी तुरियानंद है। ये उन दिनों राजपुर में तपस्यारत थे। अप्रत्याशित रूप से दीर्घकाल के उपरांत भेंट होने से सभी आनंदित हुए और कुशल मंगल आदि पूछने के बाद अनेक प्रकार की वार्ताओं में डूब गए। उस समय नवरात्र का मात्र 1 दिन बचा था।
1: स्वामी तुरियानंद सहित सबने यथा संभव शीघ्र देहरादून आकर सर्वप्रथम सिविल सर्जन श्री मैक्लारेन से मिलकर रघुनाथ बाबू द्वारा उनके नाम दिया गया परिचय पत्र उन्हें दिया। पत्र पढ़कर और स्वामी जी से धर्म के संबंध में बातचीत कर डॉक्टर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े यत्न के साथ स्वामी अखंडानंद की छाती की परीक्षा कर कहा, अब किसी भी स्थिति में पहाड़ पर नहीं चढ़िएगा, बहुत दिनों तक समतल प्रदेश में रहकर भली भांति चिकित्सा कराइए।
0: अब समस्या ये खड़ी हुई कि देहरादून में ठहरेंगे कहाँ, वहाँ कोई परिचित तो है नहीं। स्वामी जी स्वयं घर घर जाकर आश्रय की भीख मांगने लगे किंतु कहीं जगह नहीं मिली। फिर वे जगह खोजते रहे। बहुत प्रयास करने के बाद अंत में साधुओं ने एक नव निर्मित एवं अधूरे बने मकान में आश्रय पाया, किंतु जमीन पर सोना अनुपयुक्त था और खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने खाट पर सोने और भिक्षात्र मात्र से जीवन यापन करने का निश्चय किया, किंतु कमरा इतना सीलन भरा था कि रोगी के लिए वहाँ रहना हानिकर था। कम से कम अखंडानंद के लिए दूसरा आवास चाहिए। ऐसी विकट समस्या के सामने होने पर स्वामी जी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ऐसे समय दैव योग से उनके जनरल असेंबली कॉलेज के सहपाठी हृदय बाबू नामक एक सज्जन से उनकी भेंट हुई। वे एक स्थानीय विद्यालय के शिक्षक थे।
1: वे अखंडानंद का भार लेने को राजी हुए। तदनुसार अखंडानंद के वहाँ जाने पर भी बचपन से ही एक दूसरे प्रकार के परिवेश में पाले पोसे जाने के कारण उनके लिए इस घर का अभिनव आचार व्यवहार आदि असह्य हो

नंदन ने लिखा है, स्वामी जी और मैं चल रहे हैं। एक स्थान पर देखता हूँ कि एक साधु ध्यान करने बैठा है। अच्छी तरह कपड़े से सिर तक ढका है और जोरों से नाक बज रही है। उसे इस तरह खर्राटे मारकर सोते देख स्वामी जी हंस पड़े। उन्होंने कहा,

0: इसे देखो, इसे जरा धक्का तो दो, ध्यान लगाने का बहाना बनाकर सो रहा है, ये तो हद हुई।
1: अखंडानंद जी ने उसे हल्का सा धक्का देकर जगाया और उसके सिर पर से कपड़ा हटा दिया। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ।
2: कौन हो तुम लोग?
0: हम सन्यासी हैं।
2: सन्यासी होकर दूसरे सन्यासी का ध्यान भंग करते हो? क्यों करते हो? कहाँ के सन्यासी हो तुम लोग?
0: हम स्वर्ग के सन्यासी हैं। भगवान बहुत देर से तुम्हें सोते हुए देख रहे थे, तुम्हारे खर्राटे सुन रहे थे, इसलिए हमें भेजा है तुम्हें जगाने के लिए।
2: माफ करना बाबा, थका हुआ था ना, इसीलिए सो गया था।
0: तो सो ना, कौन मना कर रहा है? सन्यासियों का सोना मना है क्या? आराम से लेटकर सो जाओ, ध्यान करने का ढोंग क्यों करते हो?
2: जी जी बाबा, धन्यवाद।
0: सो सो भाई, ध्यान के समय ध्यान करो और विश्राम के समय विश्राम करो।
3: और दोनों हंसते हंसते आगे बढ़ गए। एक और प्रसंग की जानकारी हमें स्वामी जी के लेखों में मिलती है। वे लिखते हैं,
0: मैं एक बार हिमालय का भ्रमण कर रहा था और सामने फैला था लंबा रास्ता। हम लोगों की तरह गरीब साधुओं के लिए तो कोई और वाहन मिलता नहीं है, इसलिए सारा रास्ता हम लोगों को पांव पैदल ही चलना पड़ता था। हम लोगों के साथ एक वृद्ध साधु थे, पहाड़ी रास्ते की चढ़ाई उतराई कर 100 मीलों तक वे चले थे। वृद्ध ने एक चढ़ाई पर चढ़कर जब देखा कि सामने तब भी कई बार चढ़ना होगा, तब निराशा से भरकर वे कह उठे, महाराज इतना लंबा रास्ता कैसे जाऊंगा, मैं तो और चल ही नहीं पाता हूं, मेरी छाती फट जाएगी। मैंने उनसे कहा, अपने पांव की ओर देखिए। तो उनके वैसा ही करने पर मैंने कहा, पीछे आपके पांव के नीचे जो पथ पड़ा हुआ है आप उसे रौंद आए हैं, और सामने जो पथ देख रहे हैं वो भी तो एक पथ ही है, वो पथ भी शीघ्र ही आपके पांव से मर्दित होगा।
3: स्वामी जी की बात से उस वृद्ध की निराशा समाप्त हो गई और वे फिर पथ पर बढ़ चले। एक और साधु का दर्शन उन्हें हुआ था, जिसकी सौम्य मूर्ति और पवित्र आचार व्यवहार देखते ही वे समझ गए थे कि ये साधु अनुभूति के क्षेत्र में निश्चय ही बहुत ऊपर उठे हुए हैं। फिर उनसे वार्तालाप करने पर उन्हें जिस तथ्य का ज्ञान हुआ उससे उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उन्हें ज्ञात हुआ कि यही व्यक्ति एक बार पवहारी बाबा का सामान चुराकर जब भाग रहा था उसी समय पवहारी बाबा जाग गए थे और चोर सामान फेंककर भागने लगा। तब पवहारी बाबा ने उस सामान को लेकर उस चोर का पीछा किया और बहुत दूर जाने पर उसे पकड़कर उसके हाथों में सारा सामान सौंपकर वे लौट आए।
1: स्वामी जी ने पहले ही गाजीपुर में इस घटना के विषय में सुना था। अब सामने बैठे साधु के अपने मुंह से ये वृत्तांत सुनकर तथा किसी महापुरुष के संस्पर्श से मनुष्य का मन किस प्रकार बदल जाता है, किस प्रकार एक चोर महापुरुष में परिणत हो जाता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर उनका चित्त एक महापुरुष के महात्म्य के प्रति और मानव मन के अंतर्निहित देवत्व के प्रति श्रद्धा से भर गया। साधु ने कहा,
4: बाबा जी ने जब मुझे नारायण ज्ञान से उदारता पूर्वक अपना सर्वस्व सौंप दिया तब मैं अपनी भूल और हीनता समझ सका और तब से सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग कर पारमार्थिक ऐश्वर्य की खोज में घूमने लगा।
1: बहुत रात तक इस साधु के साथ स्वामी जी की बातचीत हुई और वे निश्चय पूर्वक समझ गए कि इस व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो गई है। इसके पश्चात भी कई दिनों तक उनके मन में ये आश्चर्यपूर्ण घटना बारंबार उभर आया करती थी। वस्तुतः आजीवन उन्होंने इसे याद रखा था। हिमालय भ्रमण के

0: असम में किसी एक समय स्वामी जी एक तिब्बती परिवार में रह रहे थे। उस देश की प्रथा के अनुसार उन लोगों की नारियां एक ही समय में अनेक स्वामियों की पत्नी हो सकती हैं। उसी प्रथा के अनुसार उस परिवार के 6 भाइयों की केवल एक ही पत्नी थी। स्वामी जी ने स्वभावतः इस विभत्स आचार की निंदा की थी और इसके विरुद्ध अनेक तर्क भी प्रस्तुत किए थे, परंतु जिस भाई से बातचीत हो रही थी उसने चिढ़कर प्रतिप्रश्न किया,
1: स्वामी जी, साधु होकर भी आप दूसरों को कैसे ऐसा स्वार्थ परायण होने को कहते हैं? ऐसी वस्तु का केवल मैं ही भोग करूंगा, दूसरा कोई नहीं, ऐसा विचार क्या निंदनीय नहीं है? हम क्यों ऐसे स्वार्थ परायण होते जाएंगे कि हर व्यक्ति एक ही स्त्री रखेगा? सभी भाई सभी वस्तु समान भाव से पाएंगे, यहाँ तक कि स्त्री तक। ऐसा युक्तिहीन सारहीन लगने पर भी स्वामी जी ऐसी सरलता देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने समझा कि प्रत्येक कार्य के अच्छे बुरे दो पक्ष हैं। सरल पहाड़ी की बात के फल स्वरूप उन्होंने इसके बाद प्रत्येक सामाजिक आचार व्यवहार को उनके पक्षों से परख कर देखने की आवश्यकता हृदयंगम कर ली थी। हिमालय छोड़ने के बाद साधु वृंद हरिद्वार और महापुरुष होते हुए मेरठ पहुँचे और डॉक्टर श्रैलोक्यनाथ घोष के घर स्वामी अखंडानंद को देखने गए। स्वामी जी उस समय अत्यंत दुबले हो गए थे। अखंडानंद उन्हें देखकर चौंक पड़े। तय हुआ कि स्वामी जी वहां रहकर इलाज करवाएंगे। मेरठ में और गुरु भाई भी आ पहुंचे। सेठ जी का बगीचा नामक घर जहां वे सब ठहरे थे मानो बराहनगर मठ में बदल गया।
0: धीरे धीरे विवेकानंद को लगने लगा कि गुरु भाईगण उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भरशील होते जा रहे हैं। उन्हें लगा कि उनके साथ ज्यादा दिन रहने पर वे सब उनके मुखापेक्षी हो जाएंगे और उन्होंने उन सबसे अलग होने का मन बना लिया। उन्हें ये माया का बंधन तोड़ना था। सन 1891 के जनवरी महीने में वे अकेले मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गंगाधर ने दोषारोप किया,
2: मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं मध्य एशिया की यात्रा स्थगित कर बराहनगर लौट आया था।
3: मैं जब भी तपस्या करने की सोचता हूँ तभी गुरुदेव कोई ना कोई बाधा खड़ी कर देते हैं। इस बार मैं अकेले निकलूंगा, कहाँ रहूंगा किसी को नहीं बताऊंगा।
2: तुम यदि पाताल में भी जाओगे ना तो वहां से भी अगर तुम्हें ढूंढकर बाहर ना निकाल सका तो मेरा नाम गंगाधर नहीं।
4: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
5: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ

0: क्या किया है, अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं, जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले, क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो। आजच्या शो मधल्या पुढच्या चारोळीकडे वळूया, ज्यामध्ये भावना पंधरे मैडम यांनी चंद्रपूर येथून लिहिलंय। भावना पंधरे मॅडम लिहित आहेत चंद्रपूर येथून की संदर्भ तुझा आयुष्यात नकळत गुंफत गेला। संदर्भ तुझा आयुष्यात नकळत गुंफत गेला, शब्द बदलले आठवणीत काळ पुढे सरकत गेला। शब्द बदलले आठवणीत काळ पुढे सरकत गेला। वा, तुझा संदर्भ हा आयुष्यात नकळतपणे गुंफत गेला आणि शब्द जे होते ते आठवणीमध्ये बदलले, कारण काळ पुढे सरकत गेला। तर जुन्या आठवणींचा सुंदर असा संदर्भ मॅडमनी शब्दबद्ध केलेला होता। पुढच्या चारोळीमध्ये सौरोहिणी अमोल पराडकर मॅडम यांनी स्वीडन येथून लिहिलंय। सौरोहिणी अमोल पराडकर मॅडम स्वीडन येथून लिहित आहेत की संदर्भ विना शब्द अर्थ मुके जाहले। संदर्भ विना शब्द अर्थ मुके जाहले, मनातील भावनांचा गोंधळ जोडतो। संदर्भ विना शब्द अर्थ मुके जाहले, मनातील भावनांचा गोंधळ जोडतो। संदर्भाच्या वाटेवर अर्थांची पाखरे। संदर्भाच्या वाटेवर अर्थांची पाखरे। संदर्भाविना शब्दांना अर्थ कुठे उरतो? संदर्भाविना शब्दांना अर्थ कुठे उरतो? अर्थ कुठे उरतो? आणि खूप गहिर असं शब्दांकन या चारोळीमध्ये होते। शब्द न शब्द अगदी बोलका होता की संदर्भाविना शब्द अर्थ मुके झाले, मनातील भावनांचा गोंधळ जुळतो। आणि संदर्भाच्या वाटेवर अर्थांची पाखरे जेव्हा असतात आणि संदर्भाविना शब्दांना अर्थ नसतो, तर संदर्भाविना शब्दांना अर्थच नसतो। या अनुषंगाची मॅडमची ही खूप अप्रतिम शब्दांकन असलेली रचना होती। पुढच्या चारोळीमध्ये सौ चित्रा सुधाकर काळे कोतमारे मॅडम यांनी महमदपूर जिल्हा यवतमाळ येथून लिहिले। सौ चित्रा सुधाकर काळे गोतमारे मॅडम यांनी महमदपूर जिल्हा यवतमाळ येथून लिहिले दुःख या शीर्षकाखाली की साठविलेले दुःख मनातील हसरा मुखवटा चेहऱ्यावर। साठविलेले दुःख मनातील हसरा मुखवटा चेहऱ्यावर, कसे सांगू कोणास ठाऊ? कसे सांगू कोणास ठाऊ? येईल सोबत मरणशय्येवर, येईल सोबत मरणशय्येवर। तर मनातलं दुःख आणि चेहरा हसरा कोणाला सांगता येत नाही, कोणाला बोलता येत नाही, आणि कदाचित हे मरणशय्येपर्यंत येईल। खूप सुंदर असं शब्दांकन या चारोळीमध्ये होतं। पुढच्या चारोळीमध्ये सौ हेमलता निगडे मॅडम यांनी कात्रज पुणे येथून लिहिलंय। सौ हेमलता निगडे मॅडम लिहित आहेत कात्रज पुणे येथून, तो संदर्भ मणी वेणुगीताचा स्मरून, कृष्ण वेळी राधा गेली देहभान विसरून। तो संदर्भ मणी वेणुगीताचा स्मरून, कृष्ण वेळी राधा गेली देहभान विसरून। विकण्या आणलेले

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अरे राजू भाई दो चाय लाना।
1: अरे छोटू दो चाय देना भैया को।
2: हाँ सर पिलो भैया।
0: ये क्या तूने मेरे शर्ट पे चाय गिरा दी?
2: गलती होगी भैया, माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा भैया।
0: ना छोटू तू हटाने से करते रहता है, कितने बार समझाएगा सही से चाय दिया कर।
2: नहीं सर वो इस बार हाथ फिसल गया सर।
0: हर टाइम हाथ फिसल जाता?
2: नहीं सर।
0: ठीक है अगली बार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना?
2: हाँ सर।
3: क्या यार मेरी जिंदगी भी कैसी है, काश मेरे भी पापा पैसे वाले होते, मैं भी औरों बच्चों की तरह स्कूल जाता, पढ़ाई करता, मैं भी खेलता, काश ऐसा होता।
4: क्या बात है सैंडवी, आकाश, पंकज, मुवना, आज तुम लोग बड़े उदास लग रहे हो।
5: दीदी आपको पता है आज हमने एक टी शॉप में देखा कि एक बच्चा काम कर रहा है।
4: एक बच्चे को काम करते देखा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना?
6: हाँ, वो दुकान वाले भैया उसे डांट भी रहे थे।
4: क्या देखा आज आपने, चलो भूखना बताओ।
5: दीदी हमें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था और उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो काम कर रहा है और वो काम कर रहा है लेकिन बाय मिस्टेक वो फिसल गया उनके हाथ से, फिर भी वो ओनर इतना डांटा, बहुत बुरा लग गया होगा।
4: आप ही के उम्र के बच्चे जो काम करते हैं कोई चाय की दुकान पर या कहीं भी, उसे पता है क्या कहते हैं?
6: चाइल्ड लेबर, बाल श्रम।
4: हाँ उसे बाल श्रम या चाइल्ड लेबर कहते हैं। बच्चों की जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है कई बार पारिवारिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो काम करने पर विवश हो जाते हैं। तो बच्चों चलो आज हम चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के बारे में ही बात करेंगे।
5: ठीक है
6: दीदी।
4: तो आकाश आप बताओ चाइल्ड लेबर से आप क्या समझते हो?
2: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे उन बच्चों के मम्मी डैडी को ये सब काम नहीं करवाना चाहिए, ये उम्र उनकी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, हाथ में आने वाले पेन की जगह वो चाय की कटोरियां पकड़ा देते हैं, पीठ में लदे हुए बैग की जगह वो बोरियां पकड़ा देते हैं, ये बहुत गलत बात है।
4: बात तो आपने बहुत सही कही। और सैंडी आप बताओ?
6: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड लेबर एक जुर्म है और जो लोग 14 वर्ष से कम उम्र में बच्चों को अपने दुकान पर रखते या करवाते हैं, अगर चाइल्ड लेबर हमारे भारत में विश्व में कहीं भी फैलता गया तो हमारे देश का हमारे विश्व का क्या होगा? बच्चों को शिक्षा मिलेगी नहीं तो हमारा देश हमारा विश्व हर चीज में पीछे हो जाएगा, तो ये चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए
4: क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं।
6: हाँ दीदी।
4: और अगर वो ही नहीं पढ़े लिखेंगे तो फिर हमारे भारत का भविष्य क्या होगा?
6: तो हमारी नीवी कमजोर होगी तो फिर कैसे होगा?
4: बिल्कुल सही सैंडी। और भुवना आप क्या कहना चाहते हो?
5: अब हमारी इंडिया सब देशों ने डेवलप्ड कंट्रीज है लेकिन हमारी इंडिया डेवलपिंग, स्टिल डेवलपिंग, इस बात का एक वन रीजन है चाइल्ड लेबर। ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं और इस चाइल्ड लेबर को हम स्टॉप करना चाहिए, ये एक क्राइम है, ये सिर्फ इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इसको स्टॉप करना चाहिए और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ वाइटल स्टेप्स लेना चाहिए।
4: बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट कुछ काम इस पर कर भी रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हो पंकज?
0: चाइल्ड लेबर को देख के मुझे ऐसा लगता है हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता। आजकल छोटे बच्चे नन्हे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है लेकिन वो किसी कारण होटलों में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में अपनी पीठ पे बोरियां लाद रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे कि दूसरे देश अपने डेवलप्ड होकर और भविष्य में हम देखेंगे कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और हमारा देश धरती पे ही रह जाएगा।
4: बात तो आपने पंकज बिल्कुल सही कही, हम आगे तभी बढ़ते हैं जब देश का भविष्य यानी बच्चे सुरक्षित हो, देश के साथ साथ उनका भविष्य भी हम बाल श्रम द्वारा बिगाड़ देते हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अक्सर बाहर जाते हो, कभी घूमने के लिए, कभी किसी काम से, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए या कोई काम करते हुए देखा है, और देखा है तो तुम्हें कैसा लगा है?
6: हाँ दीदी मैंने बहुत बार देखा, कभी कभी हम लोग कहीं बाहर जाते घूमने के लिए, किसी होटल पे गए तो वहाँ कोई बच्चा कोई चाय लेके आ रहा है तो कुछ नाश्ता लेके आ रहा है, ऐसे कुछ काम करते हैं और ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मुझसे भी छोटे होते हैं, जिनको खेलने कूदने की उम्र होती है, जिनको अपनी मम्मी पापा से प्यार मिलना चाहिए, वो होटलों पे काम करती है और ये मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे साथ देते हैं। और ये बात देखकर मुझे रोना भी आता है, थोड़ी खुशी भी होती है, पर खुशी तो उतनी नहीं होती, रोना बहुत आता है क्योंकि जो बच्चे जिनके छोटे छोटे हाथ हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं।
4: बात तो आपने सही कही, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहुत बड़े बड़े काम करने पर विवश हो जाते हैं, लेकिन उनके घर के जो पारिवारिक कंडीशंस हैं वो इस प्रकार की नहीं होती जैसी हमें मिली है। और जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में हम कितने लकी हैं कि हमारे परिवार से ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हमें सब कुछ मिला और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर सभी हमारी तरह लकी नहीं होते। हाँ आकाश बताओ।
2: दीदी मैं जब छोटा था तब मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पोखराज है। वो बचपन में मेरे साथ खेलता था, वो सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पहले तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया। फिर वो अब वो 14 साल का है और हमारे पड़ोस की दुकान में ही वो काम कर रहा है। उसको देख के बहुत बुरा लगता है। उसकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक लम्हा लारी पे सब्जी बेचती है और उसके पापा उन्हीं पैसों से ना घर चलने देते, सिर्फ अपने ही खुशियों के लिए पैसे खरीदते हैं।
6: हाँ दीदी, जैसे आकाश ने बताया ऐसे ही मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, उनकी मम्मी तो चलो ठीक है पर उनके पापा

कमले से फूलों को, शोलों से समाए उनको, छोटे से नन्हे से

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर हम वापस आ गए हैं लेकर बच्चों की दुनिया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। सैंडी, आप आज सुबह क्रिकेट खेलने गए तो आपने क्या देखा?
1: जी, मैंने देखा कि दो बच्चे थे जो बहुत छोटे थे और मैं बैट और बॉल लेके जा रहा था तो बोल रहा था भैया मुझे कुछ रुपए दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उन्हें देखकर मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा और मैंने मेरे जेब में जितने भी थे 20-30 रुपए उन्हें दे दिया।
0: हमें बुरा तो लगता है जब कोई ऐसे, स्पेशली जब कोई बच्चा आके हमसे ऐसा कुछ कहता है। तो ऐसे में एक और चीज हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि अगर किसी को भूख लगी है या कोई ऐसा हमारे सामने आता है और हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ खरीद कर या कुछ ला कर उसको दे दें। क्योंकि कभी कभी हमारे दिए हुए पैसे वो ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे या फिर कोई उनसे ले भी सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आए तो आप कुछ लाकर, जिससे उनकी जो भूख है वो शांत हो सके, ऐसा कुछ लाकर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है सैंडी?
1: ओके दीदी।
0: और वैसे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं। अब आप लोग ये बताओ, जब आप लोग देखते हो आपको बुरा तो लगता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप अपनी तरफ से उनके लिए कर सकते हो? भूमना,
2: पहले हम उनके माँ बाप को इंस्पायर करना चाहिए, ये कर सकता है तो बच्चे को ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो बच्चा है ना, जब हम इंस्पायर करेंगे, बुक्स देंगे, वो अच्छे से पढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप की फोर्स की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। तो जब हम उनके इंटरेस्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, माँ बाप काम करेंगे और पढ़ेंगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
0: बात तो आपकी बिल्कुल सही है। स्पेशली जो हमारे आसपास के लोग काम करने आते हैं हमारे घर पे, या जैसे भुवना आपने बताया कि कूड़ा बीनने या फिर ऐसा कुछ है जिनके माँ बाप हमारे घर पे काम करते हैं, आसपास आते हैं, तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, है ना? और आकाश, आप क्या सोचते हो?
3: दीदी, मेरा ये मानना है कि उनके मम्मी पापा को हमें बताना तो चाहिए, लेकिन मैंने भी कई बार कोशिश करी है, लेकिन उनके दिल से चाह नहीं होती कि हमारे बच्चों को भेजें। वो कहते ही हैं, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, बड़े होके कमाना ही तो है, वो भेज देते, अभी से कमाएगा तो बड़े होके और पैसे लाएगा। ये बात उनके दिमाग में रहती है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो उसी जगह पे स्थित हो जाते हैं।
0: मतलब हम समझाते हैं तब भी वो नहीं समझ पाते उस बात को। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो हमारी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें और एक चेंज भी हम ला पाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना? तो इसलिए हमें कोशिश आकाश जरूर करते रहनी चाहिए।
3: हाँ दीदी,
0: है ना? और सैंडी, आप क्या सोचते हो?
1: दीदी, ऐसा आकाश ने और उन्होंने बताया कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, ये बात तो सही है, पर मैं तो जहाँ तक होता है समझाता ही हूँ कि मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ। फिर एक बच्चे को मैंने बोला भी था तो बोलते कि मम्मी पापा ना बोलते, तो मैंने उन्हें बोला भी था, उनके मम्मी पापा को मैंने समझाया था तो उन्होंने मुझे डांट भी दिया था कि तुम अपना काम करो, हमारे फैमिली से तुम्हें क्या मतलब। मुझे बुरा नहीं लगा, पर मेरी अभी भी कोशिश जारी है, मैं होता तो समझा देता हूँ, और मेरे पास जो भी कुछ होता है कि हाँ कुछ बुक्स हुआ कुछ हुआ, अगर उनको अच्छा लगे तो मैं दे देता हूँ, मेरी कोशिश अभी भी जारी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो होता है अगर उन चीजों से भी हम उनकी मदद कर पाए तो उनको अच्छा भी लगता है, और थोड़ा बहुत तो उनकी मदद हम कर ही सकते हैं, है ना? तो ये सैंडी बहुत अच्छी बात है। पंकज, आप बताओ।
4: दीदी, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो काम करते हैं लेकिन उनमें इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, हमारे जैसा बनने की, वो भी सोचते हैं कि हम इनकी तरह बन सकते हैं, इनकी तरह हमारी लाइफ हो सकती है, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ लिख के हम अपने पेरेंट्स की जिंदगी बना सकते हैं या खुद की भी जिंदगी बना सकते हैं, तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए। जैसे कि अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो उनको अपने पुराने बुक्स दे सकते हैं, उन्हें जाकर उन बुक्स के बारे में, या अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उनके लिए कुछ टाइम निकाल कर उन्हें कुछ बता सकते हैं कि पढ़ाई क्या होती है और पढ़ाई का महत्व क्या होता है।
0: अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल पाए तो हम जाके उन्हें कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक पढ़ना लिखना तो सिखा ही सकते हैं, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो हिसाब किताब सीख पाए, और थोड़ा लिखना पढ़ना सीखने से कोई उनके साथ बेईमानी या गलत भी ना कर पाए।
4: हाँ दीदी।
0: भुवना, आप बताओ।
2: आजकल स्कूल्स में इतनी सुविधाएं हैं कि बहुत सारे पैसे उनमें ही यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा पैसे भी बहुत सारे अननेसेसरी थिंग्स पे यूज कर रहे हैं। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स हम कुछ खाना एक एक हमने क्या किया इस बार स्कूल पे, हमारे स्कूल में एक एक क्लास एक एक थी ऑर्फनेज के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए, जैसे फोर्थ क्लास लोग छोटे छोटे बच्चे के लिए डायपर्स लेकर आए, एटलीस्ट 3-3 डायपर्स, फुल क्लास 3-3 डायपर्स, तो ठीक है तो हम प्रूफ देंगे। पर दीदी हम कभी भी पैसे नहीं देना चाहिए, कुछ ये देना चाहिए ताकि वो इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे हम क्लोथ दे सकते हैं, डायपर्स, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर्स चाहिए, वो खरीद नहीं सकते। इसके बारे में हम स्कूल्स को भी ये कर सकते हैं, और हम घर में भी थोड़ी थोड़ी हमारी पुरानी बुक्स होते हैं, पुराने कपड़े, वो सब लोग आते हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए कि ये देखो इतना अच्छा बुक है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ लिख सकते हो, फ्यूचर में तुम ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, ऐसे करेंगे तो वो सच में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा और हमारे देश में कभी चाइल्ड लेबर नहीं होगा, ये कंटिन्यू होगा। तो
5: ये तो आपके स्कूल का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आपने भी बहुत अच्छी बात सोची कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उनके लिए करें तो उनकी बहुत मदद हो सकती है। आकाश
3: दीदी, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, हमारा एक डोनेशन बॉक्स होता है जो हम हर ईयर पे खोलते हैं, मतलब जैसे इस महीने की हमारी हमको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कम 10 रुपया भी बच जाता है तो हम उस डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं, और ऐसे करके हमारी 1 ईयर में डोनेशन बॉक्स जब फुल हो जाता है तब हम न्यू ईयर पे सब बच्चों को चिप्स बांटते हैं, कुरकुरेस बांटते हैं, उनके खाने की चीजें देते हैं, कम से कम हमारे पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो आराम से खा पी सकते हैं।
5: बिल्कुल सही, हमें पॉकेट मनी मिलती है उसको भी अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सेव करें, और जैसे कि सब लोग मिलकर करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम अलग से भी अगर कुछ करें तो भी हम इस प्रकार से उनकी छोटी बड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। ऐसा ही एक इनिशिएटिव रेडियो मधुबन के यूथ जंक्शन के आरजे विनोद और उषा जी ने मिलकर रेडियो मधुबन के बिहार से किया। उन्होंने जाकर जो रैट पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, उन बच्चों को इकट्ठा किया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की और करीबन 20 बच्चों को रेगुलर रोज जाकर पढ़ाया, उनका एडमिशन पास के स्कूल में कराया ताकि वो बच्चे पढ़ भी सके और अपना फ्यूचर बना सके। इससे और कुछ मिले ना मिले, उन बच्चों की कितनी सारी दुआएं भी हमें मिलती हैं, है ना?
6: हाँ दीदी।
5: तो आप लोगों के पास ये जितने भी आइडियाज हैं, इनको आप एक्शन में ला सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, हमेशा कभी

02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अहो ऐकलत
1: का? पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

0: दोस्तों, हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन जब भी हम स्कूल में जाते हैं, पाठशालाओं में जाते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लिटरेचर में हमेशा से कविताओं का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। और हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जुमले, मुहावरे, उक्तियां, कहावतें, दोहे और कुछ ऐसे प्रख्यात पंक्तियां कवियों के हमने बार बार इस्तेमाल किए हैं अपनी बात पे जोर देने के लिए, अपनी बात को और गहराई से सामने वाले को समझाने के लिए। और मैंने आपने हर बार किसी न किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य की किरण हो सकता है मनुष्य के हृदय तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कवि की भाषा, कवि के बोल, कवि के संवाद व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही कवि को लेकर के आया हूँ। यशस्वी भारत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप दोस्तों रेडियो मधुबन में। मैं आज शांतनु आपके बीच में आज फिर से आया हूँ एक खास मेहमान के साथ। दोस्तों, आज हमारे बीच में है राजेंद्र गोपाल व्यास जी, जिन्हें सन 1989 में राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। राजेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद सबसे पहले कि आपने समय निकाला और हमारे लिए आज हमारे स्टूडियो में।
1: धन्य हुआ आपके इस कार्यक्रम में आकर के, बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: दरअसल राजेंद्र जी, जो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो हमारे श्रोता साथी हैं,

0: चाहे वो हमारे वक्ता हैं जैसे कि आप हमारे अतिथि, हर कोई धन्य इसलिए है, ऐसा मैं मानता हूँ, शायद आप भी मानते होंगे कि हम सबकी रग जो है वो भारत देश से जुड़ी हुई है और इसलिए शायद हम सभी धन्य हैं।
1: क्या बात।
0: लेकिन आज हम एक्स्ट्रा धन्य फील कर रहे हैं श्रोता साथियों, मुझे लगता है आप भी यही मानते होंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनका जो गेम है, जिनका जो खेल है, जिनका जो पावर है वो शब्दों में है, और कहीं ना कहीं मैं आज आपसे बहुत कुछ सीखने वाला हूँ।
1: बहुत सुंदर।
0: तो राजेंद्र जी, शुरुआत करेंगे हम आपके जीवन के उन पहलुओं से जहाँ पर किसी सामान्य बच्चे की तरह या युवा की तरह आप भी सोचते होंगे कि कुछ करना है जीवन में और कमाना है, घर परिवार में लोग होंगे जो कहते होंगे कि भाई कमाई के साधन ढूंढो। ऐसे समय में मन तन कविता की ओर अगर जाने लगे या कहे साहित्य की ओर जाने लगे तो कहीं ना कहीं घर वालों में घबराहट होती है कि ये क्या कर रहे हैं, इससे कैसे उनका घर चलने वाला है। तो क्या आपको भी ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा?
1: बिल्कुल, आपने रियलिस्टिक अप्रोच से बात की है और मेरे कोमल मन के उस फ्लैशबैक में आप मुझे ले चले गए जिस गांव में मेरा जन्म हुआ। देखिए, राजस्थान में एक भीलवाड़ा जिला है, उसके पास 18 किलोमीटर के पास मेरा एक गांव है हमीरगढ़। आपको इस नाम से सुन के आश्चर्य होगा कि हिंदी काव्य मंचों की वाचिक परंपरा के देश के अनंत कवि हमारे गांव में उपस्थिति दे चुके, मसलन नीरज जी, हरिओम पवार हैं, शैल चतुर्वेदी, माया गोविंद, रामरिक मनहर, कोई हिंदुस्तान का ऐसा सेलिब्रिटी कवि नहीं रहा हो जो मेरे गांव में नहीं आया। और उसकी क्रेडिट जाती है एक मेरे अग्रज कवि हुआ करते थे जिनका देहावसान हो गया, उनका नाम बंशीलाल बेकारी। वो उस समय बेकार थे, कोई जॉब नहीं था, पढ़ाई में भी वो कोई ज्यादा, उन्होंने मैट्रिकुलेशन भी बड़ी मुश्किल से किया, लेकिन कविता उनमें ऐसी उतरी कि मैं उनको बरसों तक सुनने के बाद कविता में आया। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक बड़े कवि को 25 साल सुनने के बाद मैंने पोइट्री की कलम उठाई है। मेरा एक डायलॉग है कि पहले सोना खरा करे फिर गहने बनाए। तो एक तपस्या रही। तो मेरे गांव में मेरे पिताश्री बहुत अच्छे गायक और कथावाचक रहे, सत्यनारायण की कथा उनकी अपनी ग्रामीण अंचल के, जिसे मैं उनके साथ साइकिल पे जाता था और सुनता था। अब तो कथाएं बंद हो गई, जीवन में सत्य ही नहीं रहा तो नारायण की कथा कहाँ ढूंढेंगे हम लोग। ये एक ऐसी कथा नानी बाई का मायरा चल रहा, लेकिन आपको सुना ही नहीं देगा। लेकिन मैंने आपको बताऊं, 21 वर्ष बाद मैंने एक बार दो जगह इस कथा को फिर से किया। जब से मेरे जीवन में सत्य का प्राकट्य हुआ, जब से मुझे नारायण की अनुभूति हुई, जब से मैं ज्ञान में आया, मैंने कथा भी कही है।
0: ये आपने एक बहुत अच्छा बात कहा कि जीवन में सत्य ही नहीं रहा तो फिर नारायण का मोल भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं इस बात से और भी ज्यादा हैरान हुआ कि जिनसे आप अभिभूत हुए हैं, जिनसे आपने प्रेरणा ली, उनके नाम के पीछे बेकारी लगाते थे वो, क्योंकि वो बेकार थे,
1: कोई जॉब नहीं था सर। और बाद में वो इतने उत्कृष्ट कवि हुए कि देश के धनाढ्य लोगों में उनका नाम आया। लेकिन वो बॉम्बे नहीं गए भाई जी, लिरिक्स लिखने के लिए उन्हें बहुत आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं मेरे गांव की चौपाल, चूल्हा, चौकी, ये शब्द बोला करते थे वो। और उसी के साथ मेरे फादर पंडित जमुना लाल जी व्यास जी के साथ तो मैंने म्यूजिक सीखा। मेरे एक अग्रज बड़े भाई रहे पंडित मनोहर व्यास, उनको सरस्वती की उपाधि मिली, उन्होंने कुछ हिंदी अकादमी के एक काव्य ग्रंथ में उनकी रचना छपी, तो वो मेरे दूसरे प्रेरणा स्रोत। और भाई
0: तो
1: जी,
0: ये जो इंटरव्यू है भाई जी, ये आज का एपिसोड जो यशस्वी भारत का, ये ऐसे बातचीत से नहीं चल सकता
1: जी।
0: कुछ सुना दीजिए, जो कि आपके बचपन से है,
1: बिल्कुल सुनिए,
0: बिगनिंग के टाइम से।
1: बिल्कुल बात, मेरा सबसे पहले मैंने क्षणिका लिखी भाई जी, जब मैं कॉलेज में आया था तो मेरी माँ अल्पना मांडती थी गाँव में पीली, और उसका तो वो अल्पना मांडी, तो मैंने एक क्षणिका जीवन में सबसे पहले लिखी। और मैं निवेदन कर दूं,
0: पहले तो आप बता दीजिए कि क्षणिका होती क्या था, कि हमारे
1: क्षणिका होती है,
0: नॉलेज भी मिले।
1: क्षणिका न तो मुक्तक होता है, न कोई कविता का कंटेंट, मतलब बड़ी कविता होती, न शायरी होती है। क्षणिका के मतलब कुछ क्षण में हम एक ऐसी बढ़िया बात कह दें जो हमारे अंतस को तृप्त कर जाए। छोटी कविता को अपन क्षणिका कहते हैं, उसमें एक पैराग्राफ भी नहीं होता, एक बंध भी नहीं होता। सुनिएगा, देहरी पर मंडी अल्पना मेरे जीवन के चित्र खींच जाती है और अफसोस।

0: से कि मैं उसे अब तक भी नहीं समझ पाता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, है एक मनस्थिति, शाश्वत परिस्थिति। इसे हंस हंस कर जीऊं या रो रो कर, इसका जो शीर्षक है वो प्रश्न यही है। और यही कविता मैंने कॉलेज के वक्त में हरिवंश राय बच्चन जी को लिखी डरते डरते, और आप आश्चर्य करेंगे कि इतने बड़े फुल परिशिष्ट पर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपको गहन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि आप में कविता का बीज है। वो आज मेरे लिए पद्मश्री और पद्म भूषण की उपाधि से भी, और मैंने उनकी वैल्यूज को जीवन में इतना धारण किया कि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो एक शुरुआत मैंने इससे की है कि कविता का बीजारोपण तो मुझ में हुआ है, आप आगे जैसा मुझे जिस तरह से संकेतित करे मैं प्रस्तुत हूँ अपने अभी।
1: तो आपका जो ये क्षणिका था, इस क्षणिका से हमें एक चीज तो ये समझ में आता है कि जीवन में हर क्षण की बहुत वैल्यू है।
0: गजब की बात।
1: एक क्षण में आप बहुत बड़ी बात कह जा सकते हैं, एक क्षण में सामने वाले को आप कोई जीवन का एक मोल समझा सकते हैं, एक क्षण में व्यक्ति क्या से क्या नहीं अनुभव कर सकता है। जैसे एक क्षणिका के द्वारा आपने ये कहने की कोशिश की कि जो अल्पना मांडी है आपके माँ ने, उसकी खूबसूरती या उसको समझ पाना आपकी मनस्थिति से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: कई बार सामने वाले के लाइफ को समझ पाना हमारी मनस्थिति से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम सामने वाले को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो नहीं समझा पा रहा है। नहीं, हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम समझने की स्थिति में नहीं है। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, मैं समझता हूँ।
0: शाश्वत परिस्थिति सर, अब दो विकल्प है, या तो मैं उसको हंस के जीऊं या रोकर। तो लिव इन प्रेजेंट, न तो मैं पास्ट को महत्व देता हूँ न फ्यूचर को। सर इस समय मैं पूरा जीने का प्रयास हर क्षण करता हूँ, इसलिए मेरा एक डायलॉग है, देश में बहुत कवि बोलते हैं कि जीने के साथ एक क्षण में वो मिल जाता जो मूर्खों के साथ उम्र गुजारने पे नहीं मिल। ये मेरा कैप्सूल भगवान रेडियो में भी बजता है और हिंदी काव्य मंचों पर मैं भी बोलता हूँ, और कुछ महान कवि भी कुछ मेरा नाम ले नहीं ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लोग पहचानने लगे कि मेरे डायलॉग्स किस तरह के आते।
1: तो राजेंद्र जी, अब आपके जीवन में थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो वो टाइम हो गया जब आपको प्रेरणा मिली
0: जी।
1: लेकिन आपके जीवन से हमें ये भी जानने को मिलता है कि आपने संगीत और तबला वाद्य यंत्र का बहुत अच्छा अध्ययन भी किया। तो आपके पिता संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे, क्या कभी उन्होंने आपको उस तरफ खींचने की कोशिश की, या कभी आपके बीच में और उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ कि आपने बोला नहीं नहीं मुझे केवल साहित्य और काव्य से ही जुड़ना है? वो दौर कैसा था?
0: वो दौर बड़ा प्यारा था। मैं रियली फोक म्यूजिक में और भजनों में और इसमें था, मेरे पिता के साथ कथा में मैं भी भजन गाता था। जब मैं कॉलेज में आया तो एक अंतर राज्य स्तरीय सुगम संगीत लाइट म्यूजिक का कॉम्पिटिशन हुआ। मैं गाँव से आया और आप आश्चर्य करेंगे, मैंने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। मैंने संगीत में, उस सुगम संगीत में जैसे ही मैं फर्स्ट आया, हमारे यहाँ के जो जज थे वे एक संगीत कला केंद्र के प्राचार्य थे, उनका नाम था स्वर्गीय लक्ष्मण दास जी वैष्णव। उन्होंने तुरंत शाम को मुझे पकड़ के कहा कि आज से तुम पढ़ाई भी करोगे कॉलेज की और संगीत में आप संगीत की शिक्षा भी विधिवत लोगे। ये उस समय का दौर है सब, जब मैंने तबला भी सीखा, वोकल भी सीखा और संगीत में बहुत अच्छी एक तरह से एक शिक्षण की शैली मैंने अटेम्प्ट करी। बरसों तक मैं म्यूजिक में रहा। उसके बाद मुझे कविता सुनने के साथ आया, तब मैं तानपुरा लेके भीमसेन जोशी और पंडित ओकारनाथ ठाकुर, इन महान कवियों के साथ, अमीर खान साहब के साथ मैंने तानपुरा बजाया। सर वहां मेरा लाइफ था स्वरो व ब्रह्म न इति संशय। बाद में मेरा विचार हट गया कि शब्दों व ब्रह्म न इति संशय थी, उसके बाद में कविता में आया, इसलिए मेरे कंपोजिशन भी भगवान मुझे बनाता है, मेरा म्यूजिक भी गीतों का मेरा होता है, धुने भी और लिरिक्स भी मेरे होते हैं।
1: तो जो गीत आपने गाया था सुगम संगीत में, जिसकी वजह से आपको पुरस्कार मिला, जिसकी वजह से आपके जीवन का एक नया द्वार खुला, क्या वो उस गुनगुनाने चाहेंगे आप?
0: मैं उसकी दो चार पंक्तियां, देखिए वो गीत ही नहीं मिलेगा आपको, मुझे किसी ने कहा कि अब उसको नेट पे डाल। देखिए, घूंघट घूंघट नैना नाचे पनघट पनघट छैया रे, घूंघट घूंघट नैना नाचे पनघट पनघट छैया रे, रोम रोम में प्रभु ये नाचे कैसी तेरी मैया रे। तो ये जो घूंघट घूंघट नैना नाचे का गीत बहुत समय हुआ।

0: और मैं फिर क्लासिकल म्यूजिक में आ गया सर। विधिवत मैंने संगीत की शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद मैं शब्द में आ गया। और पोइट्री की बात तो अब आप शुरू करेंगे तो मैं बीच बीच में।
1: सर, आपने जो अभी ये गाया, इसमें भी अगर हम देखें धुन जो है वो रूह तक पहुंचती है।
0: ये धुन भी मेरी बनाई हुई है सर।
1: वाओ,
0: धुन भी मेरी।
1: क्या बात है।
0: उस समय धुन बनाने लग गया था मैं। ये है सर मेरे ख्याल से 71 का काम है। 71
1: तो आप सोचिए जो धुन है वो रूह में गूंजता है, लेकिन जो शब्द है
0: बहुत है।
1: वो उस गूंज से भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, क्योंकि धुन हो सकता है व्यक्ति भूल भी जाए लेकिन शब्द उसे याद रह जाता है।
0: बिल्कुल रहता है जहन में।
1: ये शब्द जो है कितने ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है साथियों, अगर आप सुन रहे हैं कि घूंघट घूंघट नैना नाचे, मतलब हर एक का आंख जो है, हर एक के नैन जो वो तरस रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु जो है वो
0: छुपा हुआ रहता है।
1: छुपा हुआ है क्योंकि जैसे आपने पहले क्षणिका में कहा कि मनस्थिति पे निर्भर करता है, तो शायद मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है कि मैं उन्हें समझ पाऊं या देख पाऊं। तो जैसे आपने बताया कि आपने काव्य पाठ करना शुरू किया, आपको शब्दों ने खींचना शुरू किया
0: जी,
1: सुर का साथ आपने नहीं छोड़ा लेकिन शब्दों को आपने ज्यादा अपना क्लोज फ्रेंड बनाया, अपना दोस्त बनाया। तो उस समय आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या
0: मुझे,
1: उस समय
0: मुझे
1: की कुछ बातें?
0: अच्छा, मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे कठिनाई महसूस नहीं होती सर, आज भी नहीं होती। मुझे लगता कि ये पत्थर मुझे ठोकर के लिए नहीं, इस पर चढ़ करके अगली मंजिल पर जाने की वैल्यू देता है। मुझे मैटर भी कुछ न कुछ सिखा देता। मेरी चेतना को मैंने पदार्थ के साथ दोस्त माना, प्रॉब्लम्स को मैंने अपने अनुकूल नहीं, मैं उसके अनुकूल बन के आगे बढ़ा। एक मन की स्थिति बताता हूँ आपको। जब मेरा मन ऐसा बेचैनी में हो जाता था तो मैं अकेला एकांत में, मेरे गांव में तालाब है, वहां मैं पेन और कॉपी लेके चला जाता था। वहां मैंने बहुत पहले सबसे पहला गीत लिखा, मन सुंदर हो गीत भी सुंदर हो जाता है। मेरे तालाब में कमल खिले रहते थे सर, तो कमल मुझे लगता था कि मैं मछलियां भी देख रहा हूँ, कमल भी खिले हुए हैं। और मैं उसमें बड़ी तैराकी में अपने गांव में मेरा रिकॉर्ड हुआ करता था। ऊंचाई से कूदने पर राजस्थान में उसको घंटा लगाना, चमकी लगाना, गोते लगाना, तो वहां मैं पहले नहा लेता फिर गीत लिखता, तो वो देखेगा।

0: मन केवल गीत लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्योरिटी आपके पीछे नहीं है, आपका जो संप्रेषण है, आपका जो ट्रांसमिशन है वो ठीक नहीं होगा। पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, देन ट्रांसमिशन में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप मेरे उस फीलिंग को समझ रहे होंगे कि मैं स्पॉन्टेनियस और फ्लो में बैठा हूँ, मैं कोई सोच के नहीं आया, मैं कोई डिबेट रट के नहीं आया हूँ। आपके सहज प्रश्न आ रहे हैं और मेरा अनाथ चक्र जगा हुआ है। मैं रसोवे सह का एक तरह से मानस पुत्र हूँ, परमात्मा ने दुख बनाया ही नहीं, वो रसोवे सह है। कोई पिता अपने बेटे को दुख देगा? दुख मनुष्य का इजहाद है सर, हमने बनाया, प्रॉब्लम्स हमने पैदा करी
1: जी।
0: हम आनंदित पैदा हुए और सुख ढूंढने के चक्कर में हमने आनंद को खो दिया है, क्योंकि सुख का जो रिफ्लेक्शन है वो दुख है, आनंद का कोई।
1: बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत सुंदर बताया कि जहाँ सुख का अभाव है उसे ही दुख कहा जाता है, जहाँ रोशनी का अभाव है उसे ही अंधकार माना जाता है। लेकिन अगेन राजेंद्र जी, मुझे आपको फिर से उसी जगह पे लेके जाने का मन कर रहा है, जब आप वो छलांग लगाते थे, जब आप वो डुबकी लगाते थे, तो जब फिजिकली हम, आपने क्या कहा, चपकी,
0: हाँ चमकी, उसको जैसे पनडुब्बी चलती है ना, ऐसे हाँ, पानी में अंदर तो जाके
1: तीन शब्द बोले आपने, कौन कौन से?
0: एक गंठा, एक गंठा जो बुर्ज से नीचे लगाया जाता, उसका पानी बहुत हाइट तक जाता, और जिसका पानी सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा वो फर्स्ट आएगा।
1: ओके, तो गंठा, चमकी और डुबकी।

0: जो है वो डुबकी होती वही नीचे सीधा नीचे जाना, वो चमकी में ऐसा लंबा जाना पड़ता 20 फीट 30 फीट, तो कौन कितना दूरी तक निकल सकता पानी में अंदर नाक पकड़ के, वो उस तट पे फंस जाता। बड़े तो प्यारे अनुभव है सर।
1: श्रोता साथियों अगर आप सुन रहे हैं तो आप जरूर रेडियो मधुबन पे कॉल करके बताइएगा कि आपके अनुभव क्या है, क्या आपने कभी गंठा लगाया है या कभी चमकी लगाई है या कभी डुबकी लगाई है,
0: और अगर लगाई कमल लेने गए या कभी कमल लेने गए उसमें वो जूझला होता है, ऐसे कटीले हरे वनस्पति होती है सर, उनको चीरते हुए फिर साहसी लोग कमल लेके आते हैं और उससे हमारे शिवालय पर पूजा होती
1: है। ये जो है ये मेरा सवाल था कि जब आप वो गंठा लगाना चाहते हैं या आप चमकी लगाना चाहते हैं तो फिजिकली आप चैलेंज है ना, शरीर को एक चैलेंज महसूस हो रहा है, एक चुनौती मिल रही है कि क्या तुम कर सकते हो, तो अंदर में एक रूह में एक गुदगुदी सी होती है जो संभाल पाना उस समय में जरूरी है, लेकिन एक बार आप चमकी लगा लेते हैं या घंटा लगा लेते हैं उसके बाद आपको लगता है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं,
0: बहुत रिलैक्स, इससे बड़ा सुख नहीं।
1: तो क्या ऐसा ही घंटा या चमकी लगाने वाला गुदगुदी आपको कभी महसूस होता है जब आप लिखने बैठते हैं?
0: बिल्कुल महसूस होता है, मैंने गीतों में इन चीजों को, मेरी अनुभूतियों को मैंने अपने शब्दों में ढाला है, और लोग मुझे भाई जी पूछते हैं कि ब्यासी आप इतना बढ़िया कैसे लिख ले, एक बड़ा प्रश्न है लोग मुझे, ऑडियंस पूछती है मंच से उतरने के बाद आप इतना बढ़िया कैसे लिखते हैं, तो उनके जवाब में भी मैंने एक गीत लिखा जिसकी दो लाइन इस मौके पर मैं कहूंगा। मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात, मैं

0: इतनी औकात मैं कुछ भी नहीं हूं सर, मैं तो बांस की पोंगरी हो गया, वही उतरता है मुझ में जो कुछ कह जाता है, और मैं खुद फिदा हूं कि मुझसे ऐसा क्या कौन बोल जाता है जब मैं योग में और गहन मेरी नुमा श्याम में अमृत वेले में उतरता हूं, तो मैं भगवान से पूछता हूं, क्या प्रभु आपने मेरे शरीर को चुना है कि ऐसी संस्कृत निष्ठ एक भारतीय संस्कृति को फिर से स्वर्णिम भारत लाने में वैल्यू बेस्ड पोइट्री का माध्यम आपने शायद मुझे ही चुना है, तो मैं अपने आप पर फक्र अनुभव करता हूं।
1: तो दोस्तों, जो भी आप सुन रहे हैं, राजेंद्र गोपाल व्यास जी ने जो कहा नुमा श्याम या अमृत वेला, अर्थात वो बहुत भोर में उठकर के जब परमात्मा को याद करते हैं उसे अमृत वेला कहते हैं, और जब नुमा श्याम में वो ईश्वर को याद कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, तो उसे वो नुमा श्याम कहते हैं। बट राजेंद्र जी, जो आपने बात कही अपने दो लाइनों के माध्यम से कि आप में वो क्या औकात या हैसियत है कि आप कुछ लिखें, ये तो परमात्मा का सौगात है जो आपने लिखा है, लेकिन सौगात भी तो सबको नहीं दिया जाता, सौगात भी तो पात्र को देख करके दिया जाता है। तो आप में ऐसी कौन सी पात्रता नजर आती है आपको जो परमात्मा ने आपको चुना?
0: मुझे लगा कि मेरा बचपन, मेरी परवरिश संस्कारों के आधार पे हुई सर। बड़ों से कैसे बात की जाए, छोटों के, आप आश्चर्य करेंगे, 10th क्लास तक तो मैं ये नहीं समझा कि इस लड़की में और मुझ में कोई भेद है। हमारी गाँव की प्योरिटी बता रहा हूँ सर, हमारे माता पिता एक दूसरी बच्ची और बच्चे के घर पे हम रात रात भर स्टडी करते थे परीक्षाओं के दिनों में। कहीं सर किसी तरह के अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में कहीं विकार नाम की चीज सर होती ही नहीं थी। तो ये जो मेरी परवरिश का जो एनवायरमेंट मुझे मिला, और मैं हमीरगढ़ स्कूल में 10वीं तक पढ़ा, तो वहां मुझे ऐसे शिक्षक मिले सर जिन्होंने एकेडमिक, फिजिकल, मैं गेम्स में भी फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा, बहुत अच्छा तैराक रहा, बहुत अच्छा हारमोनियम में 6th क्लास में प्ले करना सीख गया था सर। उसके बाद मैंने तबला, फ्लूट, बहुत सारी चीजें सीखी। तो ये मेरे, इसके पीछे मेरा पारिवारिक वातावरण, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे टीचर्स जो मेरे आइकॉन है, आज कुछ टीचर्स अभी भी है सर, वो अभी भी साइकिल पे चलते हैं। एक काशीलाल जी शर्मा है जिन्होंने विदेशों की यात्राएं करी सर, आप शायद आपने सर्च किया होगा, उन्होंने कम से कम 20 कंट्रीज में यात्रा की, वो आज भी साइकिल पे चलते हैं, न डायबिटीज है, न एक टेबलेट नहीं लेते सर, जिन्होंने मुझे 10वीं में पढ़ाया।
1: तो कहीं ना कहीं ये बात पक्की हो जाती है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने जीवन शैली अपनाई, वो आज की डेट में भी उतनी ही खरी है। अगर हम उसे धारण करते हैं, हम उस जीवन शैली को अपनाते हैं, तो हम निरोगी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और पर्यावरण

0: के लिए भी बहुत सुखदायी है। लेकिन जहां बात आती संस्कारों की, आपने कहा कि ये आपके संस्कार थे जिसने आपको वो सही पात्र बनाया कि आप ये शब्दों के तोहफे को यूज कर सके। आप एक शिक्षक भी रहे हैं और CCRT की तरफ से आपको राष्ट्रीय शिक्षक का भी सम्मान मिला है। तो जब आप शिक्षण में गए और जब आपने देखा कि भाई आप जब पढ़ाने गए और जब आप खुद पढ़ रहे थे उस टाइम में काफी फर्क था,
1: बहुत अच्छा,
0: तो उस फर्क को आपने कैसे फिनिश किया?
1: मैं बता दूं, चूंकि मैं एक कलात्मक अभिरुचि का बच्चा रहा सर, तो मैं कभी एकेडमिक साइड में फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, हमेशा मैं सेकंड पास हुआ। मुझे एक ये बराबर पीड़ा होती थी कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आता हूं। तब मैंने संकल्प किया कि भले ही मैं पढ़ने में फर्स्ट नहीं आया पर मैं पढ़ाने में फर्स्ट आऊंगा। इसलिए मैंने 80 में राज्य स्तरीय शिक्षण प्रतियोगिता में ज्योग्राफी में मैंने गोल्ड मेडल लिया सर। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, तो वो मैंने अपनी कमी को वहां पूरा किया कि मैं पढ़ाने में फर्स्ट आया। अगर पढ़ने में फर्स्ट नहीं आया तो मेरे कितने विद्यार्थी सर, आज कोई IPS है, कोई कलेक्टर है, मुझे ये कहने नहीं, कोई सामान्य साइकिल की दुकान पर भी बैठा है ना सर, तो वो अपने कर्म को उसी तरह कर रहा है जो गीता कहती है कि कर्म को ईमानदारी से करना ही योग है। कुशलता से आप किसी काम को कर लेते हैं आप योगी हैं। तो मेरा ये वैक्यूम और पीड़ा भी दूर हुई। और इस शिक्षण प्रतियोगिता में मैं आपको और बता दूं कि मैं जब क्लास में पढ़ता था तो बच्चों को यह कहता था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आप और हम मिले, हो सकता है मैं आपको नहीं पहचानूं पर मेरे बच्चों तुम आकर के मुझे टच करना, मैं निश्चित रूप से धन्य होऊंगा कि आज मेरे पढ़े हुए बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे न जाने कहां कहां देश और विदेश में अपना नाम कर। आज वर्ल्ड में हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में जॉब कर रहे हैं। अगर वे मधुबन रेडियो के माध्यम से मुझे सुनेंगे ना सर, उनका फ्लैशबैक लौट आएगा, शायद मैं उनका बचपन लौटा दूं और मैं भी अब ये महसूस करूंगा कि मैं उन बच्चों के साथ एक बार फिर से अपनी युवावस्था में आ गया, ऐसी अनुभूति।
0: जी जी जी, एकदम सही कहा आपने कि कई लोग रेडियो मधुबन सुन रहे हैं। जो हमारे आबू निवासी हैं वो तो रेडियो मधुबन रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन विश्व भर में लोग जो हैं रेडियो मधुबन को इंटरनेट के माध्यम से भी सुनते हैं और सुन सकते हैं। तो साथियों, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि भाई कहीं पर भी रहो आप इंटरनेट के द्वारा रेडियो मधुबन से जरूर जुड़ो, क्योंकि रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे तो आप मुस्कुराते रहेंगे। ये हमारा दावा नहीं, ये हमारा वादा है। और वादा जो है दावे से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि दावे में कहीं ना कहीं अभिमान दिख सकता है लेकिन वादे में अपनापन लगता है। वादे में वो आत्मीयता है कि आप वादा हर किसी से नहीं करते, आप वादा उनसे ही करते हैं जिनके लिए आप केयर करते हैं। तो आप सभी से हमारा ये वादा है कि सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। बातचीत कर रहे हैं साथियों हम राष्ट्रकवि श्री राजेंद्र गोपाल व्यास जी से। राजेंद्र जी, जब आप शिक्षण में थे आपने देखा होगा कि समाज कैसा बदला है। जब आपने शिक्षा ग्रहण की उस समय और जब आपने शिक्षा देना शुरू किया उस समय, समाज में आपने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। और आज का जो समाज है, आज की जो शिक्षण प्रणाली है, वो तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है।
1: सही है सर।
0: ऐसे समय में कौन सी वो बातें हैं जो बदली नहीं है?
1: बहुत अच्छी बात आपको कहूं, मुझे जो ये नेशनल अवार्ड मिला भाई जी, ये मानव संसाधन मंत्रालय के संस्कृति विभाग का प्रोजेक्ट था। ये बहुत पहले, मतलब मेरे ख्याल से 71 में ये प्रोजेक्ट आया था। उसका नाम था विद्यालयों में भारतीय संस्कृति प्रसार प्रायोजना। ये इंडिया के 44 शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ, उसमें राजस्थान से हम दो जने थे सर, एक बीकानेर से थे और एक मैं था। यहां मैंने 12 वर्ष तक एक प्रोजेक्ट लिया, 30 महीने की ट्रेनिंग उदयपुर में हुई, फिर दिल्ली में मुझे वो एक रिफ्रेशर्स कोर्स के लिए चयन हुआ। और इंडिया में 5 किट मिले थे हमें, उसमें राजस्थान के बच्चे को किट मिला सर, लाखों रुपए की स्कल्पचर का, उस समय टेप रिकॉर्डर पहली बार देखा, स्लाइड्स, प्रोजेक्टर, इतना बड़ा एसेट्स लेकर के मैं दिल्ली से आया सर। मैं गांव का आदमी कभी, और आपको मैं इस अवार्ड की खूबी और बता दूं कि भारत सरकार ने मुझे फर्स्ट क्लास के टिकट का वो मुझे लेटर मिला, लेकिन मैं थर्ड क्लास डिब्बे में ही गया भाई जी। आप आश्चर्य, आप पूछ रहे हैं कि आपकी परवरिश की वैल्यू बेस्ड क्या। मैंने जाके जब अपना टिकट वहां क्लेरिकल स्टाफ को दिया तो उन्होंने कहा भाई जी आपको तो फर्स्ट क्लास का मिला। मैंने कहा मुझे

0: दो दिन के लिए लौटने और आने का, उसके बाद तो मैं थर्ड क्लास में ही यात्रा करूंगा, तो भला मैं अपना संस्कार क्यों बदलूं। तो उन्होंने तो ह्यूमर किया कि आप अपना टिकट किसी का भी फर्स्ट क्लास का ले आओ, मैं आपको उसका फेयर दे दूंगा। मैंने कहा अगर ये मुझे करना होता तो शायद आज मैं इस अवार्ड के लिए यहाँ उपस्थित नहीं होता। और मैंने बड़ी बारीकी से उन्हें कहा आप हमारे संस्कार नहीं बिगाड़े, आप ऐसी राय हमें नहीं सिखाए कि हम इसको बदल देने से मुझे दो पैसा ज्यादा मिल जाएगा। मैंने सर आज भी केनरा बैंक में और रेलवे में मुझे फर्स्ट क्लास के कंसेशन का वो अवार्ड का मुझे लाभ मिलता, आज तक मैंने नहीं लिया। मुझे सबसे पहले टेलीफोन ऑफर हुआ, मैंने वो भी नहीं लिया, न ऑन और ब्लैक में मैंने उसको बेचा। सर ये मेरी शुरू से ही धारणा रही। और जो बजट मुझे मिला, एक लाइन बताऊं, बजट मिला सर मुझे 7,000 रूपये नए शिविर लगाने का कि गांव में जाके शिविर लगाओ। 7,000 रूपये में से मैंने 5,000 में 4 दिन का शिविर 40 टीचर्स के साथ किया, कुछ डोनेशन लिया। और मैं पहला व्यक्ति गर्व से कह रहा हूं, मैं मोदी जी अगर सुने इस राष्ट्र में, कि उसमें से 2,000 रूपये भारत सरकार को, ये पहला शख्स है वर्ल्ड में जिसने वापस लौटाया सर, कि मैंने कहीं इस सफेद शर्ट पर डॉट नहीं लगने दिया। ये मेरे माता और पिता और मेरे भाई और भाभी और मेरी मौसी की देन है, मेरे गुरुओं की देन है। और निवेदन कर दूं, भीलवाड़ा में एक देवरिया बालाजी नाम का स्थान है सर, वहां एक हमारी माँ है जिसके साथ मैं 40 साल से रह रहा हूं, माँ अनसुया नाम है, जो अन्न और जल नहीं लेती, केवल पवन आहारी है। और इतनी एनर्जेटिक है वो कि 20 आदमियों का भोजन प्रसाद बना दे, अपने गुरु का फलार भी वही बनाती है। उसके साथ मेरी परवरिश हुई है। और एक थी मेरी घर में वीडो मौसी, जो मेरी पहली गुरु है सर, मुझे अम्मा सरस्वती लगती है। 13 साल की उम्र में वो विधवा हो गई, उसने अपना घर गांव छोड़ के मेरी मदर के पास आ गई और हम दोनों भाइयों और एक बहन की परवरिश उस माँ ने करी, जिसका प्रोडक्ट आपके सामने। उसका नाम था दुर्गा भाई, उसका नाम था दुर्गा भाई, मेरी माँ का नाम कमला भाई, दोनों सगी बहने। और आप आश्चर्य करेंगे, 13 साल की उम्र में वो 70 साल में मरी। और जिस दिन उसकी डेथ हुई, मुझे मेडल लेने जाना था सर, मैंने मेडल को ठुकराया। मेरे पिता ने कहा नहीं इसका कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। मेरी मौसी ने कहा नहीं तू जा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा सर। मैं उसी दिन रुका, उसी दिन डेथ हुई, लेकिन डेथ से पहले उसने कहा ये मेडल तेरे धरा हुआ तू लेते आएगा। और दूसरे साल ये अवार्ड में लेके आया। ये है मेरे बच्चों का, मेरे शिक्षण का प्रभाव। तो आज उन बच्चों को तो मैं सर, मैंने कभी सर्कमस्टांसेज खराब है ये मैंने नहीं पढ़ा। जॉन डीवी एक डायलॉग कहते हैं, स्कूल इज एन ए स्पेशल एनवायरमेंट वेयर सर्टेन क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज आर प्रोवाइडेड टू द सिक्योरिंग चाइल्ड। मैं सिक्योरिंग चाइल्ड रहा सर, मैंने क्लासरूम क्लाइमेट बनाई। मैं ज्योग्राफी का गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं बाहर की क्लाइमेट नहीं बना सकता, लेकिन मैं क्लास में क्लाइमेट बना करके मौसम और जलवायु बदलने की ताकत रखता हूं, क्योंकि मैं मास्टर हूं। मुझे गुरुओं ने तैयार किया, इसलिए बच्चे मुझ पर फिदा हैं सर, और मैं बच्चों पर फिदा हूं।
1: जो चीज मैं कहना चाह रहा था कि आपने संस्कारों की बात कही, और इसमें आपने अपने अनसुईया माता जी को और दुर्गा जी को और कमला जी को भी याद किया, तो जो व्यक्ति इतने अच्छे संस्कारों से घिरा हुआ है या कहीं संस्कारी लोगों से घिरा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं फिक्स होता है सफलता, वो सफल होगा ही क्योंकि आशीर्वाद है इन लोगों का। लेकिन ये जो आपने बात कही कि मैं मास्टर हूँ, हम शिक्षक को हिंदी में या ठेठ हिंदी में मास्टर जी ऐसे भी कहते थे, तो मास्टर शब्द का मतलब ही होता है जो परिपक्व है, जिसकी मास्टरी है किसी चीज में। तो जैसे एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर वो मास्टरी होती है, वो खूबी होती है कि वो परिस्थितियों पे बात को नहीं टालता, वो अपने क्या करना चाहिए, व्हाट इज दैट दैट आई नीड टू डू, उस पे फोकस करता है, मुझे क्या करना है इस पे फोकस करता है, ना कि भाई बाहर की परिस्थिति ठीक नहीं है इसलिए मैं कुछ ना करूं। तो ये जो आपने संस्कार पक्का किया और पकड़ के रखा और जो अपने स्टूडेंट्स में दिया, आई थिंक दैट इज वेरी कमेंडेबल,
0: बहुत अच्छा।
1: आज की जो जनरेशन जो शिक्षा लेती है, आज जो आप देखते हैं शिक्षा प्रणाली, जहां पर कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा कि भाषा पे लोग शायद इतना गौर नहीं करते। जिस तरीके से एक समय था जब भाषा मुख से गलत निकल जाए तो लोग सॉरी बोलते थे, जो जनजीवन था जिसपे मीडिया का प्रभाव था, वहां आप देखते थे एक बहुत परिष्कृत, बहुत एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आप सिनेमा देखिए, चाहे आप टेलीविजन देखिए या आप रेडियो के दूसरे भी जो चैनल्स हैं सुनिए या सोशल मीडिया, हर जगह पे आप देखेंगे भाषा का कहीं ना कहीं स्वरूप थोड़ा सा बदला है। क्या आप उस स्वरूप को विकृत मानते हैं या वो उस स्वरूप को आप क्या, आपकी नजर में वो कैसा समय है, क्या है अभी वो?
0: देखिए, हमारी हिंदी भाषा को अगर हल्का सा किसी से हल्का सा नुकसान हुआ तो इंग्लिश से हुआ। हम लोग, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि जब मैं इन्विजिलेशन करता था ना सर, तो लास्ट में जो 5 मिनट्स रहते थे उसको अगर मैं हिंदी में बोलूं 5 मिनट और शेष रहे तो बच्चे अलर्ट नहीं होते, वो लिखते ही जाते। लेकिन उसी को मैं इंग्लिश में बोलता था, प्लीज लिसन, प्लीज 5 मिनट्स मोर, चेक योर आंसर्स एंड स्टिच योर कॉपीज, तो वो समझते कि ये कोई बहुत बड़े है और इमीडिएट वो अपना कॉपी को स्टिच करते। अगर मैं कहूं अब कृपया आप अपनी कॉपियां, तो वो लिखना चालू। इंग्लिश ने जरूर हिंदी भाषा पर, इसलिए एक बढ़िया बात मैं कहता हूं कि भाषा मनुष्य के परिष्कार का स्वरूप है, है? मैं कोई चीज, और शादी रेडियो मधुबन तो सामुदायिक सर्विसेज का है, यहाँ तो बड़ी बड़ी कठिन भाषा यहाँ चलती नहीं सर, क्योंकि दूर अंचल के लोग भी हमें सुनते हैं रेडियो मधुबन के, और ब्यूरोक्रेट्स और कॉरपोरेट की दुनिया के लोग भी सुनते हैं। तो आपके प्रश्न का आंसर मैं ये दूंगा कि मुझे भाषा को लेकर कभी तनाव नहीं हुआ, इसलिए बहुत बार मेरा एक डायलॉग है कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते पर इन बीजों को बचा सकते हैं जिससे नए उद्यान लगाए जाए। ये मेरे शब्द ही तो बीज हैं, और ये नई पीढ़ी के बच्चों को मैं प्यार करता हूं कि हम लोग तो रिटायर हो जाएंगे। तो आई एम रनिंग इन 73। 2 साल पहले के इंटरव्यू पूछा व्यासी आपकी एज क्या है, तो 71 को हिंदी में ईगोतर कहते हैं और बेहतर को बेहतर कहते। तो मैंने कहा जब से मैं मेरे ईगो से तरा, जब से मैं ईगो से तेरा, मेरी जिंदगी बेहतर
1: हो गया
0: और नाउ आई एम रनिंग इन 73। तो जो भी व्यक्ति अपने ईगो से तर जाएगा, मैं सोचता हूँ स्वामी वो बेहतर हो जाए।
1: राजेंद्र जी, आपने जो ये बात कही कि आपके पास बीज है और बीजों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, भले आप उद्यान का संरक्षण नहीं कर सकते लेकिन बीजों को तो बचा सकते, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं जरूर करूँ। भले मैं सुनता हूँ रेडियो या मैं सुनता हूँ या देखता हूँ टेलीविजन या मैं सोशल मीडिया पे हूँ, साथियों ये समझने की बात है कि मैं किस चीज को लाइक कर रहा हूँ, मैं किस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, क्या वो मेरे भाषा पे एक असर छोड़ता है, और अगर असर छोड़ता है तो कैसा असर छोड़ता है, क्या वो पॉजिटिव असर है, क्या वो नेगेटिव असर है, क्या उस चीज को सुनते हुए मेरी भाषा उत्कृष्ट हो रही है या मेरी भाषा का प्राण दुर्बल होता जा रहा है। ये चयन करना मेरे और आपके हाथ में है, क्योंकि आज सबके पास फोन है, फोन के जरिए आप बहुत कुछ देखते हैं, चाहे YouTube है चाहे सोशल मीडिया है। क्या आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके वोकैबुलरी को, आपके शब्दकोश को तैयार करता है, तो इसलिए जरा गौर कीजिएगा
0: जी,
1: बस यूं ही मत देखते रहिएगा।
0: अब आप इस सारे प्रश्न का कंटेंट का आप मेरा आंसर देखिए, इसमें मेरी भाषा और वातावरण का बैलेंस देखिएगा, आज क्या है और मेरी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। चहुं दिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है, चहुं दिश फैली पवन विशैली,

0: कवि वर
1: देखिए ऐसे एटमॉस्फेयर में भी हम कवि लोग क्या कर रहे हैं।
0: फिर भी नहीं निराश ये कविवर चलते फिरते तीर्थ है।
1: मेरी वैल्यूज देखिएगा, ये चलते हुए तीर्थ हैं, कवि होना साधारण बात नहीं है। नीरज जी ने भी कहा है कि मनुष्य होना ही गौरव की बात है, तो कवि होना, और मैं तो उससे अभी आगे कहूंगा, अब तो हम कवि नहीं ऋषि हो गए।

0: इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिवालय में नहीं गया हूँ, जब मैं भक्ति मार्ग में था तो मैं मंदिरों में पूजा करता था। आरा और प्योरिटी, ये जो जननी है, सुख और शांति जो बेटे और बेटी है, मैं कोशिश करता हूँ सर कि चैरिटी बिकम्स होम। अगर मैं सबसे पहले मेरे में इस ज्ञान दूसरों के लिए होता भी नहीं भाई जी, ज्ञान स्वयं के लिए होता। तो इसमें आंसर दिया मैंने कि मेरी भाषा भी इसमें शब्द देखे, इसमें मेरा स्वर देखेगा। हम निराश नहीं हैं क्योंकि हम सतयुग के लिए नए स्वर्णिम भारत को बनाने में आज अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत पहले भी विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, रहेगा
1: जी। आपने कम शब्दों में लेकिन बहुत बड़ी बड़ी आशाएं, अपेक्षाएं और उत्तरों को अपने समेट लिया, जो कि शायद साधारण व्यक्ति को समझाने में घंटा लग जाए। एक चीज मुझे यहाँ पर आपको पूछना था, शायद ये सही मौका है। जब हम टीवी देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, स्पेशली मैं हमारे सभी साथियों का ध्यान न्यूज चैनलों पर ले जाना चाहूंगा, वहां मैंने देखा है भाषा का बहुत बड़ा एक पतन होते हुए देखा है, चाहे वो होस्ट हो, एंकर हो, या वो संवाददाता हो, या फिर वो पैनल पे बुलाए हुए अतिथि हो, वो किस प्रकार से एक दूसरे पे शब्दों का आरोप या एक दूसरे के प्रति बहुत ही कम वजनी शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, कई बार ऐसे अस्वाभाविक रीति वो बात कर जाते हैं कि लगता है कि क्या ये हमारे सही नेता हैं, या क्या ये हमारे देश के वो प्रतिनिधि है जिनको हमने चुना है, कई बार ऐसा डाउट आता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आप ऐसे में क्या आप फॉलो करते हैं डिबेट शोज को, क्या आप इनको देखते हैं, या देखते हुए कैसे खुद को बचाते हैं, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे साथियों को जो सुन रहे हैं?
0: पहली बात तो मैं इस तरह की डिबेट, और आप आश्चर्य करेंगे कि मैं लाफ्टर में मेरे बहुत इन्विटेशन आए पर मैं सर नहीं गया, क्योंकि हंसी देखिए पहले क्या होता था, आदमी सर इतना आनंदित होता था कि उसको रुलाने के लिए हमें कविताएं बनानी पड़ती थी, और आज आदमी इतना दुखी है कि उसको हंसाने के लिए और यहां तक के मैं तो कवियों से भी शिष्ट निवेदन करूंगा कि देश के नामी कवि अपने अर्धांगिनी पर युगल पर ऐसी ऐसी कविताएं ला रहे हैं सर जो शक्ति के लिए शोभनीय नहीं। मैं तो निवेदन करूंगा कि क्या आपके मनोरंजन के लिए मेरे देश की अन्नपूर्णाएं, जिसको हमने वंदे मातरम कहा है, जो सात पीढ़ी आपकी और सात पीढ़ी उस परिवार का अन्नपूर्णा पालन पोषण करती है, उस पर हम फोहड़ हास्य लेकर के आपको हंसा करके भाषा और देश और संस्कार को कहां ले जाएंगे। मैंने बहुत शिष्टता से ये इशारे में बात कर दी, क्योंकि मैं हास्य मेरे जीवन, मेरी एक लाइन है, आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो। ये पंक्तियां सर देश में बहुत वजनदार जा रही है, ये जीवन शैली, हमारी प्रोफेशन, हमारा दाम्पत्य जीवन, ये भी तो एक कविता है। हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो, मतलब मेरी नाव पानी में रहे यहां तक तो ठीक है, पर मेरी नाव में पानी नहीं आना चाहिए। आज तक आपने कोई फूल ऐसा देखा है क्या जिसमें से कांटा निकला हो? कांटों में फूल निकल सकता, लेकिन आज तक किसी कांटे में? और फिर हम जैसे कवि तो एक संस्कार युक्त हैं सर, मक्खन में बाल भी होगा तो जल्दी नजर आता है। ये मुंगेर आश्रम के स्वामी निरंजनानंद जी ने मुंगेर रिखिया, मुंगेर का नाम वर्ल्ड का पहला योगा सेंटर है या आश्रम है, जिनके वियना में डॉक्टर हुआ करते थे शिवानंद जी, जिनका ऋषिकेश में आज वो सत्यानंद जी, फिर निरंजनानंद जी ने मुझे भिलवाड़े में सुन के एक बात पूछी कि व्यास तुम इतने प्यारे गीतकार हो, तुम्हारा कोई ग्रंथ छपा है क्या? मैंने कहा सर इसमें व्याकरण है, मैं अभी छिपा हुआ हूँ, आप चाहे तो मुझे छपा करके उद्गार। तब ये मेरा ग्रंथ जो मेरी कविता है, ये 15 अगस्त 2003 में ये ग्रंथ क्राउन प्रेस कलकत्ता से छपा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 400 रूपये के आप बुके बांटते हो जो 3 मिनट बाद मर जाएंगे, इससे अच्छा एक बुक बांटो मेरे देश के श्रोताओं, जिंदगी भर उस परिवार में सुगंध बनी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बुके नहीं बांटे जाने चाहिए, पर बुक बांटी जानी चाहिए।
1: तो अच्छा, आप तो शब्दों के जादूगर, आपने शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी बहुत कम शब्दों में, और साथियों आपने भी समझ लिया होगा क्योंकि आप हमारे बहुत प्यारे श्रोता हैं जिन्होंने यशस्वी भारत को

0: रेडियो मधुबन के और भी अनेक बहुत सुंदर मूल्यनिष्ठ कार्यक्रमों को सुनते हुए अपनी रुचि को बहुत ही बेहतरीन बनाया है, आपने चूज किया है, ये आपका निर्णय रहा है कि मैं ऐसे मूल्य युक्त कार्यक्रमों से जुड़ूंगा या जुड़ूंगी। और रही बात हमारे सामने जो पेश किया जा रहा है, चाहे कई बार हम कहें कि सत्य है इसलिए कठोर है, या कई बार हम ऐसी बातें भी सुनते हैं कि भाई सच है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है सुनने में, बट ये सच नहीं है।
1: नहीं,
0: सच का जो नेचर है वो सशक्त करने वाला होता है। तो इसलिए सत्य के बारे में राजेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सत्य को हमेशा ऐसे कड़वे रूप में पेश करना पड़ेगा या इतने क्या है सत्य?
1: सर, इसको मैं, हमारे यहाँ क्या होता है भाई जी, किसी सिद्धांत को समझाने के लिए इलस्ट्रेशन देना पड़ता है। अगर आप सिद्धांत समझा रहे हैं तो आपको दृष्टांत देना पड़ेगा। इसलिए मैं बताता हूँ सत्य को कैसे देना चाहिए। इसका मेरा एक डायलॉग है कि अमृत धारा अगर बतासे में रख के दी जाएगी तो सत्य भी चला जाएगा और वो नाराज भी नहीं होगा। मतलब आप अमृत धारा को सीधा नहीं पी सकते, अगर मिठास में बतासे में दे दें तो जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मेरे एक छोटे से, मैं कविता के रूप में प्रस्तुत नहीं हो रहा हूँ, यहाँ एक बातचीत है, लेकिन मेरी एक पंक्तियां सुनिएगा कि बतासे को टॉफी समझते थे वहां से उठे। मैंने 10वीं क्लास में टॉफी खाई सर, गांव में गुड़ खाते थे, गुड़ के बाद बतासा आया तो मुझे लगा कि हमारा प्रमोशन हुआ। टॉफियां तो हुआ ही नहीं करती थी सर, पर जिंदगी में मिठास बहुत था। बतासे को टॉफी समझते थे वहां से उठे हैं, आज संपन्नता में भी लोग रूठे हैं। एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम, दड़ी कहते हैं सर, कपड़े की गेंद बनाई जाती, मेवाड़ का शब्द है। एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम और नदी से बहते थे, गांव में छोटे मोटे झगड़े बड़े प्यार से सहते थे, अब कुंडियां बन गए हैं, मुंडिया मोबाइल पे झुकी है, लगता है जिंदगी कहीं रुकी, लगता है जिंदगी कहीं रुकी है। ये पूरी
0: साथियों, क्या आपकी मुंडिया भी झुकी हुई है मोबाइल पे? ये हमारे राजेंद्र जी का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं खुद को कई बार पाता हूँ कि मैं सच में मोबाइल में काफी व्यस्त हूँ। हालांकि कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे हम कहें कि भाई मेरा कारोबार इससे जुड़ा हुआ है या इससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है, अभी क्या करें, इसमें करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें वाली बात नहीं है। बात ये है कितना करें
1: जी,
0: एक लिमिट होना बहुत जरूरी है, एक निर्देशन, एक लगाम होनी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो राजेंद्र जी ने बात कही उसको बहुत गौर से सोचिएगा साथियों, कि क्या जीवन की संपन्नता, क्या हमारे मन का सुख, हमारे गैजेट्स या हमारे जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं उनसे परिभाषित होगा, क्या मेरे एंटरटेनमेंट का परिभाषा मैं निश्चित करूंगा कि ये मेरा एंटरटेनमेंट है, मुझे इसमें खुशी मिलती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल आज हम यशस्वी भारत के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कौन से कंटेंट को आपको लेना है, कितना लेना है, कब तक लेना है, क्योंकि जो भी चीज मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो मेरा चरित्र का निर्माण करने लगती है। मुझे पता भी नहीं चलता कब वो मेरा बन जाता है और कब मैं उस कलर में रंग जाता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है राजेंद्र जी, जैसे आज मैं आपके इस चर्चा से कई बातें लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन कई बातें ऐसे भी मेरे साथ जा रही हैं जिनका मुझे ध्यान नहीं है, जो मेरे अवचेतन मन ने पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं निकल आएगा। तो ऐसे कई बार होता है जब हम टेलीविजन देखते हैं या रेडियो इंटरव्यू सुनते हैं या कोई भी हम ऐसा कार्यक्रम देख रहे हैं जहाँ झगड़ा है, जहाँ पर विवाद है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति नफरत है या राजनीतिक हीनता कहेंगे, जिसकी वजह से हमें भी नहीं पता चलता कब हम हमारे मन में, हमारे अवचेतन मन में ऐसी बातें लेकर के चले जाते हैं जो कि ना केवल हमारे विचारधारा को दूषित करती है लेकिन हमारे जीवन को भी प्रदूषित कर देती है। तो इसीलिए साथियों इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। जाते जाते राजेंद्र जी मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि आप खुद को भारत के उस चौपाल, चूल्हे और चौकट से जोड़ते हैं जो कि भीलवाड़ा से आता है, हमीरगढ़ से आता है। राजस्थान सदा से ही वो धरनी मानी गई है जहाँ पर लोगों में वीर रस की प्रबलता रही है, लोग देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम राजस्थान की मिट्टी से उसको अक्सर सहज रीति जोड़ लेते हैं। पहले तो आपसे कुछ सुनना चाहेंगे हम इस विषय में, और दूसरा

0: कि भारत आपके हिसाब से यशस्वी क्यों है, क्या है कारण भारत को हम यशस्वी भारत कहें?
1: दोनों प्रश्नों को मैं थोड़ा सा प्रोज में कहके पोइट्री पे आ जाऊंगा, क्योंकि जो पोइट्री से कहा जा सकता है वो तो, हालांकि गद्य भी एक पोइट्री, बल्कि मैं तो ये कहता हूं सर पोइट्री लिखना सरल है, प्रोज लिखना बहुत मुश्किल है। मैं निवेदन करूं, मेरी किताब है मैं मुझे मिल गया, उसमें एक हाड़ी रानी करके कविता राजस्थान की, और सब जानते उस गाथा को कि चुंडावत शादी करके आता और दूसरे दिन उसको युद्ध में जाना पड़ता है, तो चला गया तो वापस आया कि कोई निशानी दो। और यहां देखेगा इस कल्चर का, इस सरजमी की मिट्टी का, सलुम्बर है उदयपुर के पास में, हाड़ी ने अपना मस्तक काट के दे दिया कि अगर मेरा इसमें स्मरण रहा तो ये युद्ध हार जाएगा, और वो अपने गले में उस मस्तक को बांध के युद्ध जीत के आता है। ये वो देश है। इसकी दो लाइन मैं सुनाता हूं।

0: ये वैल्यू है साहब इस देश और राजस्थान की। वृंदावनों में होटलों में क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं कहना, लेकिन राजस्थान की सरजमी पर हाड़ी रानी अपने उस मधु यामिनी के दिन उस पलंग पर वृंदावन की तरह प्योर बन के रह गई और इतिहास में आज भी वो हमारी प्रेरणा स्रोत है। इस तरह के गीत भी मैंने लिखे हैं। गीत बहुत लंबा है पर चूंकि एक बानगी के तौर पर ही, और एक यहाँ मेरे को संस्मरण आ रहा, हमीरगढ़ में मेरी परवरिश, मेरे भाई साहब टीचर थे, मुझे इतना अच्छा रखा भाई जी। मेरी बहन, उसका नाम प्रेम देवी, वो वहीं रहती थी जब तक जॉब नहीं हुआ। तो जब मेरे भाई साहब मुझे, मैं कॉलेज में जाता तो मुझे कहते कितना पैसा चाहिए पॉकेट अलाउंस, तो मैं कहता 20 रुपए। तब मेरी भाभी जिसका नाम नर्मदा देवी है सर, वो कहती थी मेरे देवर को 40 रुपए दो। मेरी बहन कहती 10 रुपए मेरी तरफ से। जिन्होंने ऐसी शख्सियत को पाला कि कट लगाती है आज तो कोई भाभी अपने देवर को पॉकेट अलाउंस तो क्या सर, अगर वो वहां पल रहा तो फूल का भी वो पूरा नहीं खाता, भूखा रहता है हमारा देवर। तो मैं ऐसी नर्मदा देवी भाभी और बहन प्रेम का देवी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे पैदा किया।
1: साथियों, जो कहानी आपने सुनी, जो कुछ संस्मरण आपने सुने राजेंद्र जी के मुख से, वो आपको भी अपने उन प्रियजनों की याद दिलाते होंगे जो कि हमेशा आपकी भलाई के लिए, आपके सुख के लिए बेताबी से, बेचैनी से कार्यरत रहते थे। ये कोई माँ थी, कोई बहन थी, कोई भाभी थी, कोई मौसी थी, कोई नानी थी, कोई दादी थी, कोई मामी थी, लेकिन इन माताओं ने, जैसे कि इन्होंने पहले भी कहा कि ये वंदे मातरम की धरनी है और इसलिए भारत माता जो है या भारत भूमि जो है वो यशस्वी है, क्योंकि यहाँ माताओं का वह सम्मान, माताओं के प्रति वो प्रेम, वो निष्ठा, वो अगाध सम्मान जो है वो भारत को यशस्वी बनाता है। राजेंद्र गोपाल व्यास जी, आपसे बात करते करते समय का पता नहीं चलेगा क्योंकि आप बातों के बीच में धीरे धीरे वो बताशे लाते हैं अपने काव्य के, अपने क्षणिकाओं के और अपने संस्मरण के, लेकिन घड़ी जो है वो क्षणिका रखी हुई है और उसने कहा कि नहीं अभी इसको फिनिश करना है। मे भी हम फिर से आपसे दोबारा मिलेंगे,
0: मुझे और दीजिएगा आधा मिनट जी। मुझे इस बनाने में एक अंतिम बात करूं, मेरे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु है स्वर्गीय बंसी लाल जी, सिंहपुर वाले कहते हैं बंसी लाल जी साहब।

0: एक किरण तुम मुझे दो सूरज लौटाऊंगा, एक कदम तुम चलो। सर विज्ञान के पास एक्सरे है, एक रे, एक किरण पर उसने चमत्कार लाइट ने कर रखा। तो मेरे पास तो साइलेंस का सूरज है सर, मैं तो आदित्य हूँ, इतना प्रकाशित हो रहा हूँ। ये आपके दिल, आपके मोहब्बत के क्षण, आपने मुझे सुना,
1: बहुत बढ़िया। जो आपने एक किरण, ये जो एक किरण की आपने बात कही, अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको एक एक शब्द में उनका जवाब देना है, ठीक है? सो सबसे पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: अपने को मिटा देना दूसरे के लिए, दूसरे के भलाई के लिए स्वयं को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देना सेवा।
1: शक्ति क्या है?
0: शक्ति होती है सर, शक्ति एक वरदान है, अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपको ब्लैक। शक्ति एफर्ट्स नहीं है सर, एफर्ट्स नहीं, आप पात्रता बढ़ाइए आपको शक्ति मिल जाएगी। शक्ति गिफ्ट,
1: शक्ति वरदान,
0: शक्ति गिफ्ट है सर।
1: ठीक, तो तीसरा सवाल, भाषा क्या है?
0: भाषा है मूक भावों को, हृदय की लैंग्वेज को मन के पथियारे से गुजारते हुए जिह्वा के माध्यम से बाहर लाते, यानी शून्य के सागर से शब्द का सेतु बनेगा तो जीव आनंद की यात्रा करेगा, बस उसकी।
1: तो आपने मेरे चौथे सवाल का जवाब दे दिया
0: जी,
1: आपने मेरे चौथे सवाल का जवाब दे दिया, भाषा सागर है, मैं पूछने वाला शब्द क्या है, तो आपने कह दिया सेतु है,
0: पुल है जिसके जरिए मैं यात्रा करके दूसरे तक।
1: कविता क्या है?
0: कविता करना मरकर जीने की कला है, या यूं कहिए जख्म खाके नमक की खान से गुजर। सर बिना दर्द के तो कविता होगी नहीं, और यह कविता में सिजेरियन नहीं होता सर, नॉर्मल डिलीवरी होती है, इतने दर्द को हमें सहन करना पड़ता है कि, और यही एक ऐसी विधा सर जो भगवान से गिफ्ट मिलती है। आप म्यूजिक सीख सकते हैं, थिएटर सीख सकते हैं, स्कल्पचर सीख सकते हैं, ड्राइंग सीख सकते हैं, दुनिया की हर कला, स्थापत्य सीख। कविता आज तक सुना क्या आपने कि किसी ने सिखाई हो? गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट।
1: अच्छा,
0: ये उतरती सर, और ये जन्मों के संस्कार होते हैं तब हम कविता के क्षेत्र में आते हैं। इसलिए तुलसी, सूर, मीरा, इन्होंने कबीर, इन्होंने कहीं कोई एजुकेशन, लेकिन आज इनकी एक पंक्ति पर पीएचडी होती है, इन्होंने कहीं नहीं सीखा सर, ये विरासत में पीड़ित है, और ये शाश्वत है सर। ये कभी आप देखिएगा, एक निवेदन है, साज टूटता है, वादक टूटता है, म्यूजिक कभी नहीं टूटता, पोइट्री कभी इस देश में, इसीलिए गीत गोविंद में आज भी गाया जा रहा है।
1: तो इसका मतलब कविता जो है वो एक कला है, एक नैसर्गिक कला है जिसको आप कहीं से सीख नहीं सकते,
0: लेकिन अडॉप्ट कर सकते हैं कि अगर आपका अंतःकरण स्वच्छ है तो कविता सर अंदर आ जाती है, और मन और जिह्वा के जरिए और बुद्धि के जरिए परिमार्जित होकर आ जाए। हम पहले कागज पे उतारते हैं, कहीं कोई करेक्शन होता है, बाकी सर कविता तो भगवती आह्लादनी शक्ति आ जाती है।
1: लास्ट क्वेश्चन, भारत क्या है?
0: भारत है एक आइकॉन है सर, इस धरती पर जैसे एक माला के मणियों में 108 में एक सबसे ऊपर एक गुरु होता है मन का, भारत,
1: तो भारत जो है वो देशों के माला में गुरु है,
0: सर्वोच्च है सर, सर्वोच्च है, आर्यावर्ते भरत खंडे, और क्या है ये, वो जमीन है जहाँ परमात्मा का अवतरण होता है, तो भारत तो।
1: और जाते जाते हम जानना चाहेंगे, राजेंद्र गोपाल व्यास कौन है?
0: सर ये आपने म्यूट लगा दिया। मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, पर मैं एक प्रचन्न बौद्ध जरूर हूँ सर, पनडुब्बी की तरह चल रहा हूँ, जिस दिन निकलूंगा जहाजों से आगे निकलूंगा, क्योंकि इस देश का 5000 वर्ष बाद आया हुआ ये रोल मॉडल है। मुझे मेरा पिछला भी पता है, मुझे वर्तमान पता है, और मेरी सीट कहाँ निर्धारित होगी ये, लेकिन ये पेपर अभी आउट करने का नहीं है, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र गोपाल व्यास जी। यशस्वी भारत कार्यक्रम में साथियों आप सुन रहे थे अभी तक राष्ट्र कवि श्री राजेंद्र गोपाल व्यास जी, जिन्होंने अपने जीवन के पिछले संस्मरणों को अपने कुछ कृतियों के द्वारा, अपने कुछ क्षणिकाओं, कुछ लफ्जों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा हमें सजाते हुए सुनाया, इतने अलंकारित रूप से हमें सजाया आज के इस एपिसोड को कि उनका हम जितना भी धन्यवाद करें कम है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि सत्य को बताशे की तरह स्वीट करके, मीठा करके पेश करना, या सत्यता में सभ्यता का होना बहुत आवश्यक है,
0: इस चीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।

साथियों, इस मैसेज को जरूर याद रखिएगा कि आप भले सच बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सभ्यता उसमें से नहीं जानी चाहिए, मिठास उसमें से नहीं कम होना चाहिए। ये आज के हमारे एपिसोड का एक गुड़ मंत्र है जो आप अपने साथ लेके जाएं। और दोबारा वापस आइएगा यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में एक और नए खास मेहमान के साथ। मैं आरजे शांतनु आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को नए नजरिए से जब हमने देखा तो अगर पिछली कड़ी को आप याद हो देखें तो कहीं न कहीं हमें समझ में आया था कि आज जो एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं हर रिश्ते में, हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ है जो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसमें या तो हमारा कोई पास्ट हर्ट होता है या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन है जो हमारा बैरियर क्रिएट कर रही है, या फिर फ्यूचर का कोई थ्रेट, आने वाले वक्त का कोई थ्रेट होता है जो हमें बैरियर क्रिएट कर देता है और हम उस बैरियर को नहीं तोड़ पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तोड़ना जरूरी है क्योंकि वो बैरियर टूटेगा, वो दीवार टूटेगी, तभी हम उस रिश्ते की खूबसूरती को, उसे पूरी तरह से हम एंजॉय कर पाएंगे। कैसे वो करना है, कैसे इन रिश्तों को सुंदर और सुदृढ़ बनाना है जिसके लिए हम हैं यहाँ पर, जो हमारे जीवन का मकसद भी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। वन, बिकॉज जब हमने अपने पर्पस ऑफ लाइफ की बात की थी तो कहीं ना कहीं वो इतनी क्लैरिटी से आया था कि अगर हमारे सामने वो पर्पस ऑफ लाइफ है, और जो कि निकला था कि रिश्तों को जीना चाहते हैं, इंटरेक्शन जो हम हैं उन पूरी वैल्यूज को हम अपने अनुभव करना चाहते हैं रिश्तों में, तो जहां हम रिश्तों को जीना चाहते हैं ये हमारा पर्पस है, तो वो रिश्ते फिर बैरियर्स में क्यों रहे, वो बंधनों में क्यों बंधे रहे, वो दीवारों के पीछे क्यों रहे, तो कैसे तोड़े उन दीवारों को।
1: एग्जैक्टली, देखो कितना कनेक्टिविटी बनती गई कि पर्पस ऑफ लाइफ था रिश्तों में खुशी को एक्सप्रेस करना, लेकिन जब संबंधों में आए तो एक्सप्रेस करने की बजाय मांगने लग गए, मांगने लग गए, नहीं मिला, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन जीने का क्या लक्ष्य है। दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन वाज कमिंग अप अगेन एंड अगेन। वेरी ट्रू। सो वी आर रेडी टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स, वी आर गोइंग टू वर्क, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर
0: द अदर पर्सन टू वर्क।
1: फंडामेंटल इज ये कि हर एक सेकेंड के लिए रुक कर अपने आप से पूछे कि सामने चाहे कोई भी है, अब उस कोई में किसी के भी डाल दो, उस फ्रेम ऑफ पिक्चर में मदर इन लॉ है, बॉस है, एनीबडी, समटाइम्स कुड जस्ट बी अ नेबर, यू नो, कोई भी हो सकता है। एम आई रेडी टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप एंड देन वील सी हाउ वी स्टार्ट डूइंग इट। संबंधों में जो सबसे पहली बात, क्योंकि कुछ एक बातों को हम देखते कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत बड़ी नहीं, इनको हम अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो एनर्जी फ्लो है ये बहुत स्मूथ चलेगा। सबसे बड़ी पहली इम्पोर्टेंट बात हमें अपने आप से पूछना होगा कि ये संबंध है कहां पर, वेयर आर दीज रिलेशनशिप्स
0: इन द सेंस हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में।
1: सो व्हेन आई थिंक ऑफ अ रिलेशनशिप विद यू, आई लुक एट यू, राइट? व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद कनुप्रिया? सो आई स्टार्ट लुकिंग एट कनुप्रिया, दैट मीन्स माय रिलेशनशिप विद यू इज हियर, outside here. But spirituality हमें ये सिखाते कि relationship जो हम, क्योंकि हम relationships को बाहर देखते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन relationships बाहर होने से पहले पहले वो relationship अंदर है। I first create a relationship.
0: I first create a relationship
1: here in my consciousness. क्यों मैं अपना relationship पहले अपने consciousness में create करती हूँ? क्योंकि मैंने आपको वहां create किया हुआ है, और क्योंकि मैंने आपको वहां create किया हुआ है, सबसे पहले तो मेरा रिश्ता आपके साथ वहीं अपनी conscious

0: फिटनेस में जुड़ना शुरू हो जाता है। अभी आप हो भी नहीं सामने, लेकिन मेरा अंदर आपके साथ एक रिश्ता चल रहा है। अब मैंने आपको जो क्रिएट किया हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन माई परसेप्शन अबाउट यू, व्हाटएवर परसेप्शन आई हैव अबाउट यू। अब किसी भी एक को ले लें, टेक एनी वन पर्सन एंड लेट्स लुक एट हाउ दिस हैपन्स। क्योंकि अगर ये हमें क्लैरिटी से समझ में आ गया कि ये अंदर कैसे काम करता है, तो बहुत सारे इश्यूज हील हो जाएंगे, है ना। तो किसी एक को भी ले लें और उसको अंदर यहां देखें कि हमने उसको अपनी कॉन्शियसनेस पे किस आधार से क्रिएट किया हुआ है। एंड ट्राई एंड टेक समवन यू आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल विथ, क्योंकि आर एम इज कि हम अपने रिलेशनशिप को हील करें। तो उसको हमने यहां अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट किया है बेस्ड ऑन माय परसेप्शन। मेरा परसेप्शन किस चीज पर बेस्ड है? माय बिलीव्स अबाउट यू, एंड माय बिलीव्स अबाउट यू आर बेस्ड ऑन माय पास्ट
1: एक्सपीरियंस, यस,
0: माय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द फीलिंग्स दैट गॉट क्रिएटेड ड्यूरिंग दोज एक्सपीरियंसेस। तो पास्ट
1: सपोज हम एक मदर इन लॉ को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, मतलब लाइक अब उनके साथ मेरा व्यवहार में मैं हूं, तो आपने कहा कि उनकी मेरा परसेप्शन उनके लिए, मैं मैरिड हूं, ये नहीं कि मेरे अभी मैरिज होने हैं, आई एम मैरिड एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, सो आई नाउ लुक
0: आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, दैट्स द, देखो कितना इजी है, वी नो इट ऑल द टाइम, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर हियर, दैट्स ऑल, माय रिलेशनशिप इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हियर, आई नो एंड आई एम राइट, आई नो। तो यहां पर अपनी कॉन्शियसनेस में उसको हम क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड माय फीलिंग्स।
1: ओह माय गॉड, हमारा पूरा बेस जो है वो यहाँ हर बार जो है कहीं ना कहीं
0: हिल जाता है।
1: हाँ, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम्स इतने स्ट्रांगली इनग्रेन्ड होते हैं और वही हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ नजर आ जाते हैं। ओके,
0: है ना। तो मैंने आपको यहाँ क्रिएट कर दिया, अब जिस कॉन्शियसनेस में मैं आपको यहाँ क्रिएट करूंगी उसी तरह की एनर्जी मैं आपके ऊपर थ्रो करूंगी, एंड वट एवर एनर्जी आई थ्रो ऑन टू यू द सेम एनर्जी I will get back. So I am already experiencing the relationship even without interacting with you.
1: अच्छा, और मैं बेसिकली तो बड़ी बेचारी होती हूँ।
0: हाँ,
1: क्योंकि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, पर मैंने सिर्फ आपकी परसेप्शन,
0: यस, मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है वो परसेप्शन,
1: वो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे,
0: एब्सोल्युटली, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, कि हाँ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी थे उसके आधार पर मैंने वो कॉन्शियसनेस में आपकी एक इमेज क्रिएट की है, डिपेंडिंग ऑन उसकी क्वालिटी उस तरह का रिश्ता मेरा आपके साथ मेरी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी जुड़ गया है, एंड जिस तरह की अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी उस पर थ्रो की, नेगेटिव एनर्जी इज गोइंग टू कम इन रिटर्न। जहां मुझे ये प्रोसेस समझ में आ जाता है, आई अंडरस्टैंड अ वेरी फंडामेंटल थिंग, और वो ये कि मेरे रिलेशनशिप का, किसी के साथ भी मेरे रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है, दैट इज द विजन दैट आई हैव क्रिएटेड अबाउट देम,
1: इमेज आई हैव क्रिएटेड, यस, यू नो,
0: इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू बिहेव और स्पीक टू मी नाउ।
1: ओके, सपोज दे आर बिहेविंग, शी हैज बीन बिहेविंग बैडली टू मी, मतलब मेरे पूरा मेरा जो उनके वो उनको मैं बर्दाश्त नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं एक इमेज क्रिएट करूँ कि वो बहुत अच्छी है, या
0: वो एक इमेज क्रिएट करूं इज नॉट अ फॉल्स इमेज। पहली बात तो एक तो ये है कि जो सामने वाला है उसके अंदर विशेषताएं भी हैं, कमजोरियां भी हैं। हम अपनी पिक्चर किस कलर से बनाते हैं?
1: सारी कमजोरियों से, और वो भी वो जो मेरे साथ डीलिंग में आ रही है कमजोरियां।
0: फाइन, लेकिन मेरे साथ डीलिंग में दोनों चीजें आने वाली है ना, विशेषताएं भी आएंगी, कमजोरी भी आएंगी। मैं एक कमजोरी का कलर लेती हूँ और उससे पिक्चर पेंट करना शुरू करती हूँ। लेट्स टेक, आई जस्ट टेक योर वन वीकनेस, मैं आपकी एक वीकनेस ले लूं कोई भी और उसके साथ आपकी पिक्चर पेंट करना शुरू कर दूं। अब मेरा रिलेशनशिप कौन सी
1: है? वो ऐसे ऐसे एक के बाद एक जुड़ती जाती है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली।
0: नाउ सी हाउ इट विल हैपन। सो आई हैव टू बिगिन ओनली विद योर वन वीकनेस। अगर मैंने कोई आपकी एक कमी पकड़ ली, यहां पिक्चर ड्रॉ करना शुरू किया, दैट विल बी माई रिलेशनशिप। मैं नेगेटिविटी की एनर्जी फेंकूंगी, आपसे नेगेटिविटी की एनर्जी फिर आएगी, मैं नेक्स्ट वीकनेस को पकड़ूंगी, थर्ड वीकनेस। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ क्रिएट हो रही हैं? व्हाट इफ आई वुड हैव स्टार्टेड द पिक्चर विद वन स्पेशलिटी, आपकी एक विशेषता, आपकी एक क्वालिटी, क्योंकि दोनों है ना।
1: लेकिन आप मेरे साथ तो बुरा बुरा कर रहे हैं।

0: will not be able to do it. मैं उसी past में चले जाऊंगी शायद. क्यों ना हम एक try करके देखें कि जब भी हरेक से मिले तो एक thought के साथ, because we are working on our painting, तो क्यों ना उस color के साथ अपना next stroke paint करें कि ये भी एक पवित्र आत्मा है. तो धीरे धीरे जो हमारी पेंटिंग है हमारे कॉन्शियसनेस में वो चेंज होती जाएगी. इट्स अबाउट चेंजिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी. आई मेट समवन के जिनकी सिस्टर ने उनके साथ उनके ही बिजनेस में बहुत ऊपर नीचे कर दिया था. एंड जस्ट टू यू नो टेक ओवर द होल बिजनेस उन्होंने शी हैड गॉन टू ऑल काइंड ऑफ एक्सटेंट. जो एक ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशनशिप में या किसी भी दो लोगों के रिलेशनशिप में वॉज नॉट वेरी हेल्दी, वो एक पास्ट की बात थी. अब वो बहुत समय से पकड़ी हुई बात थी. एंड देन सडनली वन डे द सिस्टर कम्स एंड सेज आई एम सॉरी, लेकिन आई वॉन्ट के जो हमारे बीच पहले था कैन इट बी द सेम अगेन. अब इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. क्योंकि पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था बिफोर दैट बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस में ये ऊपर नीचे होने के, क्योंकि आजकल आप देखो भाई बहन के बीच में प्रॉपर्टी के ऊपर या ये ऐसी ऐसी यू नो राइट्स के ऊपर छोटी छोटी बातों पे ये बहुत जो सुंदर रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे बिखर रहे हैं. एंड फिर हम एक दूसरे के प्रति क्या इमेज बनाते जाते हैं अंदर, वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे. और फिर जब भी हम मिलेंगे तो कौन सी एनर्जी फ्लो होगी? इट कैन नॉट बी द राइट काइंड ऑफ एनर्जी. सो लेट मी चेक व्हाट दैट वन पिक्चर, जो भी एक व्यक्ति जिनके साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कि मैंने उनको अपनी कॉन्शियसनेस में कैसा क्रिएट किया हुआ है. बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट देयर, रिलेशनशिप इज
1: विदिन मी. यस,
0: इस हियर. और जिन भी लोगों के साथ हमारा थोड़ा सा अनबन हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो साइलेंस में बैठकर, मेडिटेशन में बैठकर अपनी पेंटिंग को चेंज करने की कोशिश करें. उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करें.
1: लेकिन बात ये होती है कि जब ऐसे प्रोग्राम में बैठ के हम बात कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, जितने दर्शक हमारे साथ हैं, या जब बात हो रही होती है, एक थर्ड पर्सन की तरह हम सोच पा रहे होते हैं, हमें ठीक लग रहा होता है. लेकिन जैसे ही शाम को मेरा हस्बैंड फिर आएगा, मैं उसकी वो इमेज क्रिएट करनी है तो भूल ही जाऊंगी. वो जो एक कंटिन्यूस मेरा प्रोसेस उसके साथ चल रहा है, या बच्चा घर आएगा, या मदर इन लॉ से फिर इंटरेक्ट करूंगी, ये चीजें मैं भूल जाऊंगी, याद ही नहीं रहेंगी. वो फिर बाद में तब याद आती हैं जब तक मैं प्रॉब्लम कर चुकी होती हूँ, मैं वो कर चुकी होती हूँ. एंड देन इट सडनली स्ट्राइक्स मी कि ये मैंने क्या किया.
0: एब्सोल्युटली. इसीलिए हमने कहा अवेयरनेस. एक अवेयरनेस से इस जीवन की यात्रा में चलना है. अभी जो आपने कहा, सो व्हाट इज हैपनिंग, पूरा वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया और प्रोसेस खत्म होने के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने रॉन्ग बटन प्रेस कर दिए थे.
1: वो भी अब इसलिए रियलाइज हो रहा है क्योंकि प्रोग्राम देखा था. कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम अच्छा लगा था, या मैं अपनी भी बात करूं, मुझे बात की थी, मुझे बात समझ में आई थी, लॉजिकल लगी थी, और फिर जब मैंने, और मुझे लगा था मेरे जीवन से जुड़ी हुई बात है, और इसीलिए जब वो सिचुएशन से मैं गुजर गई, हो गया वो, तब मुझे याद आया कि ओहो वहां पे जो बात हुई थी वो ऐसी थी.
0: राइट, बट दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, एटलीस्ट हम एक जर्नी पर शुरू हो चुके. अगेन वी आर सेइंग डोंट एक्सपेक्ट मैजिक फ्रॉम योर सेल्फ. आप ये नहीं सोचे कि हाँ आज सुन लिया कल से पूरा चेंज 360 डिग्रीज, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. क्योंकि हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, देखो आज दिन तक हमने बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक्स या मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मोस्टली वहां जहां परिवर्तन की बात होती है वो बाहर की बातें होती हैं, कि रिश्तों को अच्छा बनाना है, स्माइल व्हेन यू मीट, ग्रीट लाइक दिस, टॉक लाइक दिस, तो इन बातों पर ज्यादा फोकस होता है. लेकिन हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आकर रूट पर टच करते हैं, कहते हैं ये बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पररी होता है. अब हो सकता है मैं बाहर से आपको स्माइल तो दे दूं, बहुत अच्छी तरह से बात तो करूं,
1: अंदर से अगर कड़वाहट है वो नहीं जा सकती.
0: तो वो जो बातें होती है ना सिंपल सिंपल, वो करना बहुत इजी होता है और कहते हैं हाँ ये बहुत इजी है. लेकिन जब ज्ञान की बातें यहां सुनते हैं तो लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है. वो डिफिकल्ट नहीं है, वो रूट है, वो रूट है, उस पर थोड़ा सा एक बार उस जर्नी पर चल पड़ेंगे अपने ऊपर काम करने में, यू विल एंजॉय द जर्नी.
1: नो दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट, नो नो, लॉट ऑफ पीपल आउट अराउंड अस आर एंजॉयिंग.
0: सो मोस्टली द एंजॉयमेंट इज

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, इतिहास हमारा अपना ही जीवन है। मुड़े तो समय के पदचिन्ह बहुत दूर तक दिखाई देते हैं। जन समूहों का पूरा जीवन, उनके सुख दुख, उनके जीवन संघर्ष एक छाया गाथा बन जाती है, जो साझा करती है हमारे आज से गुजरे हुए कल की सांसें, जो बताती है कि अपने वक्त को उस समय के लोगों ने कैसे देखा और जैसे देखा वैसे ही रचा हमारे लिए। हमारी आजादी की महागाथा के जाने अनजाने पहलुओं को गुनगुनाता है वतन का राग। आज जो पृष्ठ खुला उस पर लिखा है एक नाम, राष्ट्रीय संत मौलवी अहमद शाह। समय 160 बरस पहले का, सन 1857। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ज्वाज्वल्यमान नक्षत्रों में से एक थे मौलवी अहमद शाह। वे बेहद कुशल संगठक, ओजस्वी वक्ता, क्रांतिकारी लेखक और छापामार युद्ध कला के कुशल योद्धा थे। दुश्मन की शक्ति का अंदाजा लगाकर युक्तिपूर्ण रणनीति तैयार करने वाले एक महान क्रांतिकारी, जो कहते थे कि अगर व्यवस्था, अनुशासन और शस्त्रों में अंग्रेजी सेना आपसे श्रेष्ठ है, तो खुले मैदान में लड़ाई न लड़कर छापे मारकर उनके आवागमन को रोकें, नदी के घाट दबाए रहें, उनकी गतिविधियों को तोड़ दें, उनकी रसद लूट लें, उनके थानों पर हमले करें और उनके शिविर के चारों ओर अखंड चक्कर लगाते रहें, ध्यान रहे कि अंग्रेजों को विश्राम न मिले। यही कारण है कि अंग्रेज उनसे इतना थर्राते थे कि उनकी सूचना देने वाले को 50,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। मौलवी अहमद शाह अयोध्या के तालुकेदार थे। नाना साहब का गुप्त संदेश मिलते ही उन्होंने पूरे अवध में जन जागरण शुरू कर दिया। लखनऊ में अनेक सभाएं की, आगरा में मजबूत संगठन बनाया। जो भी उनसे मिलता स्वातंत्र्य समर में शामिल हो जाता। उनकी इन गतिविधियों के कारण ही उनकी तालुकेदारी छीनकर अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। उन्हें प्राण दंड का आदेश कर दिया गया। लेकिन 31 मई को लखनऊ में सैनिक छावनी के भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता की पताका फहरा दी। इसके बाद सीतापुर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर से भी अंग्रेजी शासन समाप्त कर दिया। अहमद शाह फैजाबाद में बंदी थे, इसलिए वहां की जनता बहुत आक्रोशित थी। 5 जून को फैजाबाद में तैनात 15वीं पलटन के जवानों और नागरिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सूबेदार दिलीप सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों को मारकर मौलवी अहमद शाह को कारागार से छुड़ा लिया। इसी के साथ 10 जून तक लगभग पूरा अवध स्वतंत्रता की खुली हवा का आनंद लेने लगा। लखनऊ में भी अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो गई थी।

लखनऊ में अंग्रेजी सत्ता की समाप्ति के बावजूद वहां के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने 1000 गोरे और 800 भारतीय सिपाहियों और कुछ तोपों के साथ लखनऊ की रेजिडेंसी में मोर्चा जमा लिया था। इस तरह पूरे अवध में अंग्रेज सत्ता उस रेजिडेंसी तक ही सिमट कर रह गई थी। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। मौलवी अहमद शाह बेगम हजरत महल की सहायता के लिए अब लखनऊ आ गए। उनके झकझोर देने वाले भाषणों और आग उगलते लेखों का ही परिणाम था कि अकेले लखनऊ में 20,000 से अधिक लोगों ने स्वातंत्र्य समर में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। रेसिडेंसी में मोर्चा जमाए अंग्रेजों के साथ स्वातंत्र्य सैनिकों का युद्ध चरम पर था। हेनरी लॉरेंस की मौत हो चुकी थी। इसी बीच जनरल हैवलॉक ने कानपुर से लखनऊ जाने के लिए गंगा को पार किया और नाना साहब ने कानपुर पर धावा बोल दिया। हैवलॉक को लौटना पड़ा। 20 सितंबर को हैवलॉक ने फिर से लखनऊ पर चढ़ाई की। 1000 ब्रिटिश सैनिक और जनरल नील मारे गए, लेकिन 25 सितंबर को हैवलॉक रेजिडेंसी तक पहुंचने में सफल रहा। स्वातंत्र सैनिकों ने अब हैवलॉक को चारों ओर से घेर लिया। लगातार संघर्ष चलता रहा। 23 नवंबर को कॉलिन कैंपबेल, आउटरम और हडसन की संयुक्त सेनाओं ने भीषण संघर्ष करके रेसिडेंसी में घिरे अंग्रेजों को छुड़ा लिया, लेकिन इस युद्ध में हैवलॉक मारा गया। लखनऊ के आलमबाग में अब अंग्रेजों की सेना जम गई। जबरदस्त हमले की तैयारी शुरू हो गई। इन हालात में स्वातंत्र्य सैनिक निराश होने लगे, लेकिन मौलवी अहमद शाह लगातार लोगों में आशा का संचार करते रहे। अब युद्ध का मोर्चा उन्होंने खुद संभालने का निर्णय लिया। 22 दिसंबर को उन्होंने आलमबाग में जमी अंग्रेज सेना पर हमला कर दिया। इस युद्ध में वे घायल हो गए, इसलिए पीछे हटना पड़ा, लेकिन तब बेगम हजरत महल ने रणक्षेत्र में तलवार उठा ली। तुरंत ही अंग्रेजों ने सहायता के लिए नई सेना बुलाई और बेगम को भी पीछे हटना पड़ा। अंततः 14 मार्च सन 1858 को जनरल कॉलिन ने 30,000 सैनिकों के साथ गोमती पार कर लखनऊ पर आक्रमण कर दिया। इस बार उसकी जीत हुई, लेकिन बेगम हजरत महल और मौलवी अहमद शाह को पकड़ पाना आसान नहीं था। दोनों ही अंग्रेजों का घेरा तोड़कर बच निकले। मौलवी अहमद शाह परिस्थितियों को भांप कर युक्तिपूर्वक युद्ध करने में माहिर थे। अब नई रणनीति, नई योजना उनके मन में थी। इस पराजय ने उन्हें और भी दृढ़ कर दिया था।

मौलवी साहब ने अब अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने लखनऊ से 45 किलोमीटर दूर बारी में पड़ाव डाल दिया। उधर बेगम 6000 सैनिकों के साथ बोतौली में आ गईं। अंग्रेज सेनापति होप ग्रांट उनके पीछे लगा हुआ था। इस समय अंग्रेजों की सेना लगभग 1,00,000 सैनिकों की हो गई थी, लेकिन नरपति सिंह ने होप ग्रांट को मार दिया। अंग्रेजों का घेरा कस रहा था। मौलवी साहब बरेली की ओर चल पड़े, जो कि रुहेलखंड की राजधानी थी। अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक सन 1801 में अवध के नवाब से इसे छीन लिया था। पूरे रुहेलखंड में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए खान बहादुर खान ने गुप्त संगठन तैयार किया और 31 मई 1857 को बरेली और पूरे रुहेलखंड को स्वतंत्र करा लिया था। सेनानायक बख्त खां को एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली भेजकर खान बहादुर ने रुहेलखंड में बादशाह के नाम पर प्रशासन चलाना शुरू कर दिया था। 4 मई सन 1858 को मौलवी साहब, बेगम हजरत महल, नाना साहब पेशवा और फिरोज शाह बरेली पहुंचे। खान बहादुर खान से मुलाकात हुई, आगे की रणनीति तय हुई। उधर कैंपबेल पीछे दौड़ा चला आ रहा था।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: तो जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: डाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन को एक नए नजरिए से देखा, बहुत सारी बातें फिर सामने आई हैं कि किस तरह के मेरे थॉट्स होते हैं, और जब थॉट्स को मैं सही रास्ते पर लेकर आती हूं तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ना सिर्फ मन के इमोशंस के बल्कि शरीर के भी, जो ओपन हो जाते हैं। आगे कुछ और बातें हैं जो इस कड़ी में जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बात हमने कर ली आज माइंड की भी, बात हमने करी बॉडी की, और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पर इस श्रृंखला में पहली बार हमने बात की थी कि किस तरह से जो माइंड का पूरा प्रभाव है, थॉट्स का प्रभाव मेरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर कैसे पड़ रहा था, ब्लॉकेजेस को ओपन करने की भी बात की। बहुत बार ये कहा जाता है कि माइंड बॉडी का जो बैलेंस है उसमें स्लीप या जो हमारी नींद है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, और आज इसी प्लेटफॉर्म पर या कई बार प्रोग्राम्स में बात ये होती है कि हम या हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले सबसे ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है। तो क्या नींद का जो है वो बहुत असर है हमारे जीवन में?
1: बिल्कुल, बहुत ही डीप असर है, क्योंकि एक तो हम ये समझे कि नींद की जरूरत क्यों है। इस सारा दिन जो भी हम कार्य करते हैं, भले आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। एक केमिकल डेवलप होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है सारे दिन में, फिर अब उसे कम करने की आवश्यकता है। अगर वो कम नहीं हुआ तो आपको थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, टॉलरेंस कम हो जाएगा। तो स्लीप एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है कि जिससे लैक्टिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाता है।
0: तो ये प्रोड्यूस क्यों होता है
1: लैक्टिक एसिड? तो इसलिए प्रोड्यूस, सारा दिन जब हम कार्य करते हैं तब कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्ट्रेस भी होती है, और कोई चीज है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो रही है, जब इन सभी परिस्थितियों में ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसे जो जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिलता है, और जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें ऑक्सीजन की कमी आती है। अगर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो लैक्टिक एसिड निर्माण नहीं होता है, एनर्जी निर्माण होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा तो वो सिम्टम्स निर्माण होंगे, और उसे कम करने की जरूरत है। दूसरी बात कि भी सारे दिन में ऐसी कई चीजें होती है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जिसको रिजॉल्व करने की भी जरूरत है, और हम जागृत रूप से उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जब आप सोते हैं तब स्वप्न आते हैं, बल्कि कई लोग स्वीकार न भी करें परंतु स्वप्न आते हैं जरूर, वह स्वप्न में भी आपकी जो दिन की बातें वो रिजॉल्व होती है,

0: और आप फिर फ्रेशनेस का सवेरे अनुभव करते हो।
1: अच्छा, तो कई बार तो वो स्वप्न जो है वो ऐसा नहीं फील हमें करवाते, कई बार तो सपने याद नहीं रहते और कई बार सपने जो है वो बड़ा हमें डरा देते हैं, थका देते हैं ज्यादा, तो फिर हम तो फ्रेश नहीं
0: महसूस करते। कुछ नहीं, कुछ सिर्फ एंजाइटी जो ड्रीम्स है ना, जिसमें डरावनापन है, वो सही है कि वो आपको थका भी सकते हैं, परंतु और जो अधिकतर स्वप्न है उसमें आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं और स्वप्न में आप चीज जैसी है वैसी नहीं देखते हैं कि मैं आपके साथ नाराज हूं, तो वो बात स्वप्न में नहीं आएगी और कोई सिंबल्स के रूप में आएगी और हो सकता है कि वो नाराजगी वह रिजॉल्व हो जाए।
1: अच्छा, वही
0: स्वप्न में भी रिजॉल्व हो जाए, कहीं सिंबल्स भी आएंगे, सिर्फ नाराजगी नहीं, मेरी कई इच्छाएं भी है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा हूं, तो भी मेरे अंदर वो सप्रेशन है, अंदर में फीलिंग है, लेकिन स्वप्न में कुछ आएगा,
1: तो
0: ऐसे सिंबल्स आएंगे या मैं उड़ रहा हूं ऐसी कोई बात आएगी और उससे जो इंटरनल सबकॉन्शियसली वो जो डिजायर है वो डिजायर रिजॉल्व हो जाएगा।
1: अच्छा, उसके कारण जो ब्लॉकेज हो रहा होगा। तो सचिवानी, अगर स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है, यू नो, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो उसको कम करना जरूरी है, दूसरा इतनी सारी चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, हम रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं आजकल? वी जस्ट डोंट वांट टू स्लीप। आई मेट अ चाइल्ड, वो 13-14 साल की, एंड शी सेज कि मैं सोना ही नहीं चाहती, सोना मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है।
2: सो यू हैव गिवन द आंसर, कि उनको लगता है कि सोना वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि वो इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सो कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बट ये भी तो लैक ऑफ नॉलेज है, ये भी तो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि मैं जिसने वो अचीव करना है, इवन इफ इट्स एन अचीवमेंट, अगर मैं हेल्दी नहीं, मेंटली भी फिजिकली भी, आई विल नेवर बी एबल टू अचीव। हम सिर्फ उस टाइम को देख रहे हैं कि ना सोकर हम इतना समय बचा लेंगे, लॉन्ग टर्म उसका जो डैमेज हो रहा है, वी आर नॉट लुकिंग एट इट। दिस इज टोटली इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। एक्चुअली ये सारी चीजें जो आज हम कर रहे हैं, इग्नोरेंट है हम टोटली अपनी ही वेलबींग के बारे में।
1: वेरी ट्रू। इनफैक्ट नींद आती ही नहीं है।
0: मूल कारण को एक तो समझे, मूल कारण तो है हमारी चिंताएं, एंग्जाइटी, अंदर का टेंशन। नींद क्या है? वास्तव में नेचुरल प्रोसेस है, जो हाइपोथैलेमस की बात कही थी ना, हाइपोथैलेमस बस वही स्विचिस है, स्लीप सेंटर जिसको कहते हैं। अगर वो स्लीप सेंटर एक्टिवेट हो जाए तो आपको इमीडिएटली नींद आने लगेगी, परंतु सारे दिन के टेंशन, एंग्जाइटी और चीजों को लेकर के आप वो स्लीप सेंटर्स को एक्टिवेट ही नहीं होना देते हैं, क्योंकि डिटैच नहीं होते। जब डिटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लीप सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं।
1: वो कोई फिर बटन है उसका?
0: हाँ, बटन है वास्तव में, और वो नेचुरल है, वैसा कोई नहीं है कि उस इलेक्ट्रोड, सचमुच इलेक्ट्रोड प्रेस करो, उसको स्टिमुलेट करो तो नींद आने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं कर सकते, नेचुरल प्रोसेस में होना चाहिए।
2: हम सब ने जीवन में कोई ना कोई एक रात ऐसी एक्सपीरियंस की होगी जब नींद नहीं आ रही थी। नॉट नेसेसरी कि पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मेरा रोज का टाइम 10 है, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, नींद नहीं आ रही थी, एंड वो कोई ना कोई ऐसा दिन था व्हेन देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन इन माय माइंड, कुछ हुआ है, कोई बात हुई है एंड वो चल रहा है मेरे माइंड में। इसका मतलब कि अगर मन में थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, आप लेटे भी हुए हैं, आपका माइंड ऑफ नहीं हो रहा, मतलब मन की जो सोचने की गति है वो धीरे नहीं हो रही है। बेसिकली यही है कि मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, वो स्टॉप पे आ ही नहीं रही, न्यूट्रल में जा ही नहीं रही है। अब क्या हुआ, ये हमें कभी कभी हुआ करता था, जिस दिन कोई चिंता थी, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी। अब चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो कई दिन ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि नींद नहीं आ रही है। रीजन, सारा दिन थॉट्स बहुत फास्ट चल रहे थे, शाम को घर आए, क्या किया, टीवी देखा, कोई फिक्शन नॉवल पढ़ा, न्यूज देखी, कोई सीरियल देखा, कभी तो हॉरर शो है, कभी वायलेंट है, थॉट्स को स्लो डाउन करने के बजाय और फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट फिर अपने पर्टिकुलर टाइम पर जाकर लेट गए और सोचा लेटे तो नींद आ जाएगी, कैसे आएगी, माइंड को स्लो डाउन ही नहीं कर पा रहे। देन वी से कि आई वांट टू स्लीप बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप बिकॉज आई डोंट नो द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन माई माइंड। जितना हम इस पर ध्यान दिन में रखते हैं, फिर रात को वो बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम अपने माइंड के थॉट्स पर सारा दिन ध्यान रखें, ये स्ट्रेस, ये जो हम

0: क्रिएट कर रहे हैं इसको स्लो डाउन करते जाएं, बीच बीच में पॉज करें, वो जो हर एक घंटे के बाद एक मिनट करें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आप रात को सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करें, बहुत सारे भाई बहने हैं सेंटर पर आते हैं, कहेंगे नींद नहीं आती, हमें बिल्कुल नींद नहीं आती। अब आप उनको सबके साथ मेडिटेशन के लिए बिठाइए या अकेले भी मेडिटेशन के लिए बिठाइए, जैसे ही मेडिटेशन कमेंट्री शुरू होगी
1: आपको नींद आती,
0: आपको नींद आती।
1: आई नो, आई जस्ट हैपेंड विद मी आल्सो, यू नो,
0: व्हिच इज अ साइन कि ये काफी समय से अच्छी तरह से सो नहीं रहे हैं। अब बहुत कहेंगे कि घर पे नहीं नींद आती, सेंटर पर आकर तो नींद आ जाती है, क्योंकि जैसे ही किसी ने आपको वो मेडिटेशन कमेंट्री दी, वातावरण क्रिएट किया, सूदिंग म्यूजिक था, आपके माइंड स्लो डाउन होने लगा, क्योंकि मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। जैसे ही माइंड स्लो डाउन होने लगा, आई वेंट ऑफ टू स्लीप। सो दिस इज द थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड कि माइंड फास्ट है तो नहीं आती, जैसे ही मैंने उसको स्लो डाउन किया, आई विल बी एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप।
2: और भी कुछ कारण समझने चाहिए। एक तो कारण है, कई बार दिन में हम काफी सो लेते हैं। अगर दिन में आपने दो घंटा नींद कर ली है तो फिर पॉसिबल है कि रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। और एक कारण है कि इवनिंग में आपने चाय कॉफी ले ली, दे आर स्टिम्युलेंट्स, तो भी फिर रात्रि को आपको जो है जल्दी से नींद नहीं आएगी। और एक कारण जो मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, जो कहते हैं हम दो मास से सो नहीं रहे, चार मास से सो नहीं रहे, क्या होता है, एक बार तो जो शिवानी बेन ने बताया ऐसी परिस्थिति होती, कोई कारण हुआ, आपको एक दो घंटा नींद नहीं आ रही थी और ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट डे वो विचार चलना शुरू हो जाती है, कल नींद नहीं आई थी, शायद आज भी नहीं आई थी, तो
1: एक वो स्ट्रेस क्रिएट होना हो रहा है, अब नींद नहीं आएगी, पूरा टाइम ऐसे ऐसे करूंगा,
2: आज नहीं आएगी, सब नेक्स्ट डे नहीं आई तो फाइनल हो गया। थर्ड डे भी भले बहुत कोशिश, लेकिन पहले से कि अभी नींद नहीं आने वाली है, तो ऐसे करके वो एक प्रकार के संस्कार बन जाते हैं नहीं सोने के। तो ये कुछ एक कारण है।
1: रफी पटेल, तो अगर मैं नहीं सो रही हूँ, नहीं सो पा रहे हैं, मतलब जो भी वजह चल रही है, जैसा कि कहा सर शिवानी ने कि माइंड इतना फास्ट चल रहा है, लॉन्ग टर्म में ये मेरी बॉडी को या मेरे मन को ही कितना इफेक्ट करेगा?
2: एक तो जो हमने ऑलरेडी समझा है कि लैक्टिक एसिड लेवल कम नहीं होगा, और लैक्टिक एसिड लेवल है वो न्यूरोटिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। आपको इंजेक्शन दिया जाएगा लैक्टिक एसिड का, तो न्यूरोटिक सिम्टम्स होंगे, अनकंफर्टेबल होगा, नर्वस हो जाएंगे, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड बढ़ने से जब नींद से डिप्राइव हुए तो इस प्रकार के न्यूरोटिक सिम्टम्स हो जाएंगे। और साथ साथ में नींद क्यों जरूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फिर से रिस्टोर करना है, जो नहीं कैटाबॉलिक सारे प्रोसेसेस चले सारा दिन, अब उसको रिस्टोर करना है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस चलने चाहिए, वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होंगे क्योंकि नींद नहीं आई, तो कैटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा और सभी बॉडी ऑर्गन्स को उससे भी डैमेज होगा।
1: अच्छा, जो उनकी एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूस रहेगी,
2: आपकी नहीं एकाग्रता पर इफेक्ट होगी, जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है वो रिकॉल करने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, टॉलरेंस कम होगा।
0: अगर हम कोई एक दो दिन नहीं सोए ठीक से, या कई बार यू नो आप आईटी प्रोफेशन में हैं तो आप पूरी रात काम कर रहे हैं, दो रातें, दो तीन दिन अगर हम नहीं सोते हैं, हमारे व्यवहार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, हम रिएक्ट जल्दी करते हैं, जो कि हम पहले नहीं करते थे। टिल फोर डेज बैक मैं इतनी छोटी बात पर नहीं रिएक्ट करती, तो हमें कहते हैं आप थके हुए हैं, आप रेस्ट कर लें ताकि फिर योर यू नो योर पर्सनालिटी और नेचर विल कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर मैं बहुत दिनों से ठीक से नहीं सो रहा, एंड ठीक से सो रहा नहीं डजेंट मीन कि मैं जागृत अवस्था में हूं, इट ऑल्सो कैन मीन कि शरीर सो रहा है लेकिन मैं नहीं सो रहा अंदर, द माइंड इज स्टिल वर्किंग। तब हम हर रोज अगर थके हुए मन के साथ उठेंगे, फिर उससे काम करवाएंगे, फिर ठीक से नहीं सोएंगे, फिर काम करवाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये माइंड कैसा हो जाएगा, हाउ विल इट बिकम। अगर दो दिन लैक ऑफ स्लीप से हमारा व्यवहार इरिटेटेड हो सकता है, तो अ लॉन्ग टाइम ऑफ नॉट हैविंग स्लेप्ट प्रॉपरली हमारे व्यवहार पर क्या इफेक्ट लाएगा। आज मेजोरिटी हम इसलिए भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, बिकॉज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, इवन दो वी स्लीपिंग फॉर 6 to 8 hours, बट इंटरनली वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, तो वो हमारा व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर चिड़चिड़ा, फिर गुस्सा, फिर और सारे। अगर जैसे ही माइंड को रेस्ट देना शुरू करते हैं दिन में भी और उसकी वजह से रात में भी, थॉट में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा।
1: तो लेकिन दिन में
2: डीप स्लीप, मतलब ये जो बात है ना कि हम नहीं सोए, जो शिवानी बेन बता रहे हैं, वो
0: एक

0: हाँ, वो
1: या
0: जो
1: तो डीप
0: चार्जिंग पीरियड वाला
1: डेल्टा स्लीप कहते हैं इसको, स्लीप के कई साइकिल्स होते हैं। एक REM स्लीप कि जिसमें वो बीटा पैटर्न फास्ट चलती है, फिर से कुछ समय के बाद हम डेल्टा स्लीप में जाते हैं। रियल स्लीप इज दैट डेल्टा स्लीप।
0: तो उसका कोई टाइम फिक्स्ड है?
1: टाइम तो एक्चुअली तो ये साइकिल में होता है, परंतु अगर हम अच्छे से तैयारी करके सोए, सही रूप से सोए, तो डेल्टा स्लीप अच्छी हो सकती है।
0: ये एक और जो आजकल का लाइफस्टाइल का पैटर्न है कि रात को नहीं भी सोए, टाइम जो है सोने का जो टाइम है, मैक्सिमम लोग रात को नहीं जल्दी सो पाते हैं एंड देन लेट उठते हैं। खासकर अगर बच्चों को देखते हैं तो स्कूल जाना है वीकडेज पे, तो चाहे जितने भी बजे सोए सुबह उठ के जाना ही है, लेकिन उसके बाद वीकेंड आया तो कोई 11 बजे, कई 2 बजे, तो ये जो पूरा उठने का जो टाइम है ये क्या ठीक है?
1: ये वास्तव में सही नहीं है। बाय चांस कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेटली सही टाइम पर सोओ और सही टाइम पर उठो। फिर भी इत्तफाक कभी मास में एक दो बार ऐसा हो गया तो भी सवेरे तो उसी टाइम पर उठ जाओ, क्योंकि बॉडी को आदत हो गई है। आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम को अगर रोज, जैसे हम लोग 4 बजे उठते हैं तो हमें 4 बजे की वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है, वो ऑटोमेटिकली उठ सकते हैं। चलो कोई 6 बजे भी उठता है तो उसी समय पर उठ जाओ। फिर ऐसा नहीं कि भी आज रात को देरी हुई थी तो सवेरे में 9 बजे तक सो रहा हूं, आपको लगेगा कि मैंने नींद ज्यादा की, परंतु उल्टा आप थके हुए उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे। एक बार अगर 6 बजे उठ गए, हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन फिर आपने स्नान आदि कर लिया, तैयार हो गए, तो फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे। फिर ठीक है कि 4-5 घंटे के बाद आप समझते हैं कि आज ठीक से नींद नहीं मिली, तो तब फिर बस 20 मिनट की नींद करो, तब लंबी नींद नहीं करो।
0: तो कोई ऐसा टाइम है जो बेस्ट टाइम कहा जाए, जो आज एटलीस्ट हम ज्ञान तो प्राप्त करें?
1: दिन में आप कहते हैं?
0: नहीं, शाम को भी, रात को भी।
1: हाँ हाँ,
0: कोई ऐसा बेस्ट टाइम है जो जिसे बेस्ट माना जाए?
1: हाँ, सचमुच बेस्ट है कि जो नहीं, बड़े भी कहते थे, पहले के समय में भी कहा गया था कि भी 10 के बाद, हमारे दादी प्रकाशमणि जी थे, हमेशा कहते थे, कितने भी लोग है कहते 10 माना बस, फिर 10 बज गए अभी रेस्ट करनी है। तो 10 से 2 का समय है वो बेस्ट समय है, कि जब एक तो गहरी नींद भी आती है, वह सात्विक समय भी है कि जब जो रिस्टोरेशन मेटाबॉलिज्म का होना चाहिए वो सही मात्रा में हो जाता है, तो उस समय अगर आप नींद कर लेते हैं तो 5 घंटे की नींद में भी आप फ्रेश होकर के उठेंगे।
0: इस देयर वे कोई एक तरीका है कि हम जब भी सोएं डीप स्लीप को
1: बिल्कुल
0: अनुभव करें?
1: हाँ, उसकी कुछ बातें। एक तो कि अभी दिस इज अ बैलेंस, कोई कहेगा मैंने कहा 10 बजे सोना है, और जब इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है कि जब नींद आए तब ही सो, आपको नींद नहीं आ रही, आप थके हुए नहीं है तो नहीं सो। लक्ष्य तो ये रखना चाहिए कि हम मॉडरेटली, मतलब अच्छी तरह से थक जाए, बिल्कुल थकावट नहीं है तो भी नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा थक गए तब भी आपको नींद नहीं आएगी। तो ये कहेंगे कि संतुलित मात्रा में, मॉडरेटली हमें थकना है, ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाएं सवेरे से, ताकि उस समय तक आप मॉडरेटली टायर्ड है। और जो खाना है वह एटलीस्ट 2 घंटा पहले खा ले। आज अधिकतर जो नींद नहीं आने का यह भी कारण है कि आपने पेट भर के सारा दिन नहीं खाया, डिनर पेट भर के किया और बस 10:30 बजे डिनर किया, अभी 10:45 को आप सो रहे हैं, तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो हैवीनेस है अंदर में। 2 घंटे पहले खा ले, भले सोने से पहले आप आधा कप गर्म दूध पी लो तो वो अच्छा है, क्योंकि एसिडिटी को भी कम करेगा, दूध से भी थोड़ी सी नींद आने लगती है, जिसमें ट्रिप्टोफैन है, जैसे चावल है इसमें ट्रिप्टोफैन है, तो डिनर में अगर थोड़ी सी मात्रा में वो ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो भी अच्छी गहरी नींद आने में वो मदद मिलती है। और बेड में लेटे लेटे नहीं पढ़ो, ये नहीं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं जब नींद आएगी सो जाऊंगा, वो भी गलत है। आप अच्छे से टेबल पर पढ़ो, जब आपको लगे भी नींद आ रही है ठीक से, उस समय वातावरण को भी एक अच्छा बना लो। एक तो कईयों के लिए जिनको नींद नहीं आती उनके लिए एक एडवाइस अच्छी है कि भी एक स्थान जो आपका निश्चित है वहीं सोने की कोशिश करो, कई लोग और कहीं नहीं सो पाते हैं, और आसपास का वातावरण ठीक हो, कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है तो दिक्कत होगी। सोने से पहले थोड़ा समय मेडिटेशन करो, हाथ पैर अगर गर्म पानी से धो लो, क्योंकि गर्म पानी जब हाथ पैर पर डालते हो तब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है,

0: को भी आराम की जरूरत है। ऐसे अच्छे शांति के विचार करके बस यही सोचो कि मुझे रेस्ट की जरूरत है। कई लोग जो सो नहीं पाते उनको यह लगता है कि भी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। नहीं, आपको नींद की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंसोमनिया के पेशेंट है सबको मैं ये बात बताता हूं कि भी बार बार देखो, अच्छे से इस बात को समझ लो कि आपको नींद की जरूरत नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। बस आप आराम से लेटे रहो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। स्लीप सेंटर अगर एक्टिवेट हो गए, नींद आ जाएगी।
1: शिवानी, जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने कि शरीर को आराम की जरूरत है, आत्मा को आराम की जरूरत है, तो इस दौरान आत्मा का आराम क्या हुआ? आत्मा का
2: I just like to add little bit more to that that we do is, रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ लो। जनरली हमारी जो इन्फॉर्मेशन फीड होती है रात को सोने से पहले भी आजकल थोड़ी सी नेगेटिव है, जो हमने कई बार शेयर किया, सुबह उठते ही इन्फॉर्मेशन, रात को सोने से पहले। तो हम लोग जनरली रात को सोने से पहले मुरली पढ़ लेते हैं, चाहे एक पेज, एक पैराग्राफ, व्हाटएवर, ताकि जो लास्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अंदर जा रहा है, इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी प्योर, ताकि वो थॉट्स भी उस क्वालिटी की चलेंगी। फिर अपना चार्ट लिख लो छोटा सा, आज सारा दिन में ये सिचुएशन आई, डोंट थिंक अबाउट द सिचुएशन, मेरा क्या रिस्पॉन्स था, क्या हो सकता है, ताकि जो मैंने ब्लॉकेजेस भी, अनरिजोल्व इश्यूज भी थे माइंड में, वो रिजोल्व हो जाएंगे। और एक और चीज जो बहुत अच्छी और बहुत हेल्प करती है, परमात्मा को एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर टू बाबा, एंड राइटिंग अबाउट, डोंट हैव टू राइट वेरी लॉन्ग स्टोरीज, जस्ट 5 मिनट्स राइटिंग अबाउट वट एवर टूडे, थॉट्स, फीलिंग्स जो आई, सिचुएशन आई, कहां मुझे और क्या, जो भी वो क्लॉटिंग है सारी अंदर, जस्ट राइट इट आउट। उससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं, एंड एज इफ पूरे जो दिन का था वो पैक ऑफ कर दिया। कई बार हम बिना पैकअप किए सो जाते हैं, तो इसलिए वो इश्यूज भी माइंड में चलते रहते हैं। थोड़ा सा ये पैकअप करें और मेडिटेशन करें, बहुत अच्छी नींद आती है फिर रात को।
1: डॉक्टर साहब, उल्टा चलते हैं। अभी तक नींद नहीं आ रही थी, तो हमने देखा कि क्या कर रहा है, अब अच्छी नींद है, तो क्या परिवर्तन महसूस करूंगी? आई कैन फील गुड राइट नाउ, तो लेकिन क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा?
0: बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे, इवन जो डिफिकल्ट है आपके सामने टास्क है उसको भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि आत्मा को भी रेस्ट मिली, ब्रेन को भी अच्छे से रेस्ट मिल गई। तो जो आत्मा को ब्रेन का उपयोग करना है वो सही कर पाएगा, और क्रिएटिविटी जो आपकी है, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, टॉलरेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। आज कहीं जो आज ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सर दर्द है, माइग्रेन, इन सब में भी आपको अच्छी रेस्ट मिल जाए, पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पर भी होगी।
1: और ये जो अमृत वेला पे उठते हैं, जो कहा जाता है कि अमृत वेला पे उठ के मेडिटेशन जो है, उसका भी कोई रेलेवेंस है?
0: नहीं, उसका देखो साइंटिफिक रीजन है। वास्तव में मैं आपको पहले साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, स्पिरिचुअल भी बताता हूँ। फिजियोलॉजिकल रीजन तो यह है कि कोर्टिसोल नाम का हार्मोन, पहले भी हमने चर्चा की है कि जिसकी हार्ट पर बहुत बुरी असर होती है, ब्रेन पर बुरी असर होती है, वह सवेरे 3-4 बजे मैक्सिमम पीक पर होता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है, और दिन में 3-4 बजे वो ऑलमोस्ट 30% हो जाता है। जो लेवल रात को सवेरे, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock है, डे टाइम में 4 o'clock, इट इज ऑलमोस्ट 30%। तो वो जो अर्ली मॉर्निंग में हाई लेवल है उसको कम करना जरूरी है। आपने कभी सुना है कि लोगों को हार्ट अटैक आया? कब आया? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में आप देखना, 3 बजे 4 बजे मैक्सिमम हार्ट अटैक्स आते हैं। रीजन इज ए कोर्टिसोल लेवल मैक्सिमम होता है उस समय। तो अगर तब उठ करके अच्छे से ध्यान का अभ्यास करो तो कोर्टिसोल लेवल को आप कम कर देंगे, और वो कम हुआ तो जो उसके हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी आप बच जाएंगे।
1: मतलब अगर तो सुबह सुबह ही अगर हमने उसको कम,
0: तो ये साइंटिफिक रीजन,
2: उस टाइम ज्यादा है ना, उसी टाइम ज्यादा है, तो अगर हम सो रहे हैं, इट्स लाइक हमारे अंदर वो डैमेज हो रहा है कि वो हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है और उसका जो इफेक्ट है ऑर्गन्स पे वो हो रहा है। लेकिन हम उस टाइम उठकर अगर अवेयरनेस के साथ वो थॉट्स क्रिएट करें जिससे वो हार्मोन कम हो जाए, तो डैमेज नहीं होगा ना।
0: मेडिटेशन से वो इफेक्ट होगी, और उसमें देखो अब स्पिरिचुअल रीजन भी, कि सवेरे जल्दी क्यों उठना है, क्योंकि वह समय है। आज लोग 2 बजे तक भी जाग रहे हैं,

0: अब देखना ढाई तीन के बाद तो सब सो जाते हैं, तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहा है आसपास का वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और तब फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत इजी है ना, तब वो कनेक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं ना 3G, तो मैं कहता हूं 30G हो जाएगा कि उस समय कि आपका कनेक्शन परमात्मा से बहुत ही जल्दी लगेगा। और एक किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि अमृत वेले उठ के क्यों योग करना है, तब कहते भगवान के पास फ्री डाउनलोडिंग होता है, जो भी आपको लेना है तो आप फ्री ले सकते हैं।
1: अगर नेट पर भी कोई हैवी फाइल डाउनलोड करनी होती है तब कब करते हैं जब बाकी सब लोगों का कंप्यूटर ऑफ है, क्योंकि सारी वो बैंडविड्थ आपको मिली हुई है। इसी तरह जब मेजोरिटी सो रहे हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी डोमेंट है, आपका जो प्रोसेस है क्योंकि हम सब नए नए कर रहे हैं ना, तो जब कोई ट्रैफिक नहीं हो रोड पे तब ड्राइविंग करना, द जर्नी इज वेरी स्मूथ। जैसे जैसे 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, एवरीवन इज वेकिंग अप, द एनर्जी इन द एटमोस्फियर बढ़ती जा रही है। अब उतने ट्रैफिक के बीच में आपको अपना चैनल क्रिएट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है।
0: पर जल्दी सोना पड़ेगा, ये बात ठीक है, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, परंतु वो कर लो तो फिर मॉर्निंग में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं स्टूडेंट को भी एडवाइस देता हूँ।
2: आपने हाँ, ये मैं स्टूडेंट पे आने वाली थी कि स्टूडेंट्स जो है एग्जाम्स के दौरान, और जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक बार अगर वो रिदम टूटा, एक बार जब वो यू नो जो पूरा टाइम सेट किया हुआ था वो टूटता है, तो उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर एग्जाम्स के दौरान वो लेट नाइट पढ़ रहे हैं, फिर वो चाहते हैं कि नहीं नॉर्मल जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे करें, तो वो वापस ला पाना मुश्किल होता है, तब क्या करें?
0: एक बार बस वो साइकिल को ठीक करना है। अगर अपने साइकिल को ठीक किया, अगर 4 बजे उठ गए, पढ़ाई की अच्छे से, अपना दिन का रूटीन किया, दिन में भले माइक्रो स्लीप ले ली, और अगर 4 बजे से आप जागे हुए तो देखना 9:30-10 बजे तो गहरी नींद आने लगेगी और साइकिल आपका ठीक हो गया। भले 1-2 दिन लगेंगे, परंतु मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को भी मैं एडवाइस देता हूँ कि भले दिक्कत भी लगे, कहीं ये कहते कि हम सवेरे उठ नहीं पाते, रात को कहो 3 बजे तक जाग लेंगे, भले 10 बजे भी सो गए हम 4 बजे नहीं उठ सकते, तो अगर एक बार 4 बजे उठ जाए, खड़े हो जाए, भले वॉकिंग करे, चाय पीने की आदत है चाय पी लो, या तो स्नान कर लो सबसे अच्छा है कि भाई मेरा डे स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करके आप पढ़ना शुरू करो, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई आपकी 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकती है।
2: लेकिन उस दौरान कई बार नींद आ रही होती है,
0: स्नान कर लिया फिर नींद नहीं आएगी, ऐसे ही आप उठे मुंह धुलाई किए बैठ गए तो शायद नींद आ सकती है।
1: एफर्ट कम रिजल्ट ज्यादा,
2: जो जिसको हम कर रहे थे।
0: ऐसा को स्नान नहीं करना है, ब्रश कर लो अच्छे से, हाथ पे ठीक से धुलाई कर लो, फिर फ्रेश होकर के बैठो तो नींद नहीं आएगी।
2: सुश्री शिवानी डॉक्टर पटेल, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें नींद को हमने सबसे, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हमने समझा है, जो ज्ञान की प्राप्ति है कि इट्स सो इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ रिजुविनेशन के लिए बॉडी और माइंड के, बल्कि मेरे पूरे जीवन के लिए, तो वो सही टाइम पे और ये सारे एस्पेक्ट्स के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो ना सिर्फ नींद ठीक से आएगी बल्कि उसके साथ की जुड़ी जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये सारी बातें समझ में आई हैं, अब प्रयास करेंगे, अनुभव हमारा होगा। आज अवेकनिंग में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

हाथों से ही मैं डोली में तुझे बिठाऊं। उस दिन मुझको छोड़ के तू ऐसी दुनिया में जाए, हर एक लड़की जहाँ से वापस लौट के फिर ना आए। रोता रहे।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकताहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: बीइंग डिवाइन में एक बहुत सुंदर आपने बात कही थी अबाउट दिया, और मैं बचपन से सुनता रहा था कि दिया बुझ गया अब शगुन, दिया बुझ गया अब शगुन, जल्दी जल्दी उसमें ये करो, पता नहीं क्या बुरा होगा। आज जो आप दिए की बात किए, जो रोशनी है, जो ज्ञान है, जो अपनी अपना सोल है, उसके अंदर की शक्ति और उसका पावर जब बुझता है भले कुछ क्षणों के लिए, तो कितना अपशगुन होता है। दैट वाज वंडरफुल।
3: राइट। अब जैसे हमने पिछली बार देखा कि आत्मा के कितने सारे तरह के संस्कार हैं, जब हमें ये समझ में आता है तो हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों के बिहेवियर को समझना और लोगों के साथ चलना बहुत ईजी हो जाता है। लुक एट एवरी सोल विद दीज फोर फोल्डर्स, पास्ट बर्थ संस्कार, फैमिली से मिला संस्कार, एनवायरमेंट से मिला संस्कार और विल पावर से क्रिएट संस्कार। फोर फोल्डर्स हर आत्मा के ऊपर है। अब ये आत्मा चाहे हमारा बच्चा है, पड़ोसी है, काम करने वाला कोलीग है, ये कोई भी हो सकता है। दैट सोल इज अ बंडल ऑफ ऑल दीज संस्कार।
2: तो कोई अगर जो कुछ किसी का हमको बुरा लगे तो क्या बोले कि भाई इसके पुराने संस्कार है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी दुआ दें, अपने आप को क्या समझाएं ताकि हम रिएक्ट ना करें और उसका बुरा ना लगे? क्योंकि कई लोगों के संस्कार है, टॉलरेट करना उनको थोड़ा मुश्किल होता है।
3: कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हमें वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे अपने कॉम्प्रोमाइज कर जाना पड़ता है अगर हम उनके साथ चल रहे हैं। वो हमें नहीं करना है। संस्कारों के साथ एडजस्ट करना, इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग कि उनका संस्कार मेरे मन की स्थिति पर प्रभाव नहीं डालेगा। सपोज यहां ये सूरज है, इसकी लाइट है, धूप भी है, आवाज भी है, हवा भी है, ये चीजें हैं। आई मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद देम, दे आर नॉट द बेस्ट व्हाट आई वांटेड।
2: मैं चाहूं तो सब बंद कर दूं, ये सब,
3: अब ये सबको बंद
2: कर, अगर
3: मेरे पास पावर हो।
2: हाँ, ये लेकिन मुझे इनमें जीना है, इसी में शूटिंग करनी है, इसी माहौल में रहना है।
3: परफेक्ट। वाई? बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, लेकिन मुझे जीना इसी के अंदर है। अब लेकिन जीने का तरीका एक है, इसके बारे में कंप्लेंट करते रहे, एक है

0: गोल चुन लिया कि मुझे 15-20 किलो वजन घटाना है। इजी नहीं है, बड़ा गोल है, लेकिन अगर ये गोल को नहीं उठाते, ये गोल नहीं लेते अपने जीवन में, तो जीवन तो बहुत ही मुश्किल है, राइट? सपोज वी आर 90 kgs एंड वी डोंट टेक अप दिस गोल टू लूज वेट, तो आगे तो वजन बढ़ता ही जाएगा।
1: वजन बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, दवाइयां बढ़ेंगी,
0: हाँ, तो
1: डॉक्टर के पास आना जाना ज्यादा बढ़ेगा,
0: जीवन जीना भारी लगेगा, एवरीथिंग विल बी भारी ओनली। तो ये दो रास्ते हैं, आज हम इस यहाँ खड़े हैं, दो रास्ते हैं। एक, अगर हम ये गोल नहीं लेते कि मुझे 20 किलो वजन घटाना है, तो लाइफ की क्वालिटी क्या होने वाली है, तो वो ये होने वाली है। दूसरा, हमने गोल उठाया कि मुझे उतना वेट घटाना है, जैसे वो गोल सामने आता है, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि 20 किलो, उसके लिए ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वॉक भी करना पड़ेगा,
1: मीठा छोड़ना पड़ेगा,
0: मीठा भी छोड़ना पड़ेगा, हाँ ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी नॉट ईजी एट ऑल। लेकिन जब गोल सामने रखा, तो साथ में क्या रखा कि ये करने से मेरे जीवन की क्वालिटी कैसी होगी। इनिशियली थोड़ा सा मन कहेगा वेरी डिफिकल्ट, साथ में मन को क्या कहना है, आई हैव टू डू इट फॉर माय लाइफ क्वालिटी विल चेंज, बीमारियां ठीक, फीलिंग लाइट, फीलिंग हेल्दी, फीलिंग गुड। तो हम गोल की तरफ चलेंगे। शुरू में लगेगा 20 kg लूज करना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जैसे ही वो सारे तरीके जो हमें किसी ने बताए कि ये ये ये ये ये नहीं करना, ये करना, अगर हमने उसको एक्यूरेटली फॉलो किया, डिसिप्लिन से किया, तो वेट कम होगा या नहीं होगा।
1: तो एक प्रॉब्लम और भी आती है इस रास्ते में कि बड़ी बिगिनिंग में बहुत शौक से 2-4 कम कर लिया, लेकिन फिर जल्दी से हार मान ली, फिर 4 का 8 बढ़ा लिया, फिर वापस।
0: एज लॉन्ग एज हमने रास्ता सही चूज किया है कि मुझे वजन घटाना है, करेंगे फिर कुछ गलती हो जाएगी, फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर हम घटाएंगे, नेवर माइंड। लेकिन अगर इस रास्ते चले गए कि मुझे कुछ करना ही नहीं है उसके लिए, जैसा है ठीक है, अभी क्या फर्क पड़ता है, बढ़ गया वेट, आजकल तो बहुत लोग ओबीज हैं, कुछ भी लॉजिक देखे, तो वो रास्ता तो एक अलग ही रास्ता है। तो ये रास्ते पे चले, थोड़ा हर्डल लगेगा, लेकिन जब हमारा वेट कम होना शुरू होगा, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होगा कि हाँ ये मैंने किया, इसका मुझे रिजल्ट मिला, ये मुझे रिजल्ट मिलता है। ये करते करते धीरे धीरे वो जो एक्सेस वेट, एक्सेस बैगेज हम हटाना चाहते हैं, वो हटना शुरू होगा। क्या एक दिन ऐसा आएगा नहीं जहां जो गोल पर हम पहुंचना चाहते थे वो पहुंच जाएंगे?
1: जरूर
0: आएगा। सेम इसमें भी आएगा। गोल से डरना नहीं, गोल देखकर खुश होना, दैट आई हैव चोजन द राइट गोल फॉर माय लाइफ। नहीं तो जीवन कौन से रास्ते जा रही थी?
1: जब एक्टर बनने का गोल मैंने सिलेक्ट किया,
0: तो वो कोई इजी था?
1: सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन एनी बिजनेस।
0: जब आपने वो गोल लिया, क्या आपको मालूम था ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, हमने सिर्फ गोल उठाया विद डिटर्मिनेशन। हमें ये भी नहीं पता था चैलेंजेस कितने आएंगे, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आएंगे, हमें सिर्फ ये पता था।
1: मोटिवेशन 100%
0: तो मोटिवेशन ना, तो गोल उठाया और डिटर्मिनेशन, दृढ़ता कि आने दो जो जो बातें आती है,
1: चाहे कुछ भी हो जाए करूंगा।
0: ये एक लाइन ने सक्सेस दिला दी। अब ये एक लाइन को यहाँ भी यूज कर लेते हैं।
1: सही बात है।
0: चाहे कुछ भी
1: not,
0: हो जाए।
1: नॉट बीइंग अ सेंट सन, नॉट बीइंग अ मतलब फ्रॉम फैमिली, फिर भी मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा,
0: राइट?
1: हालांकि
0: तो ये मैं करूंगा।
1: बिजनेस फैमिली से आने के बाद दूसरे फैमिली में इजियर हो जाता है। जिनके यहाँ यही
0: इट्स नॉट नेसेसरी।
1: क्यों?
0: इट्स एब्सोल्युटली नॉट।
1: जो बचपन से गुरुकुल में पढ़े, जो बचपन से ये करे, उसको शास्त्र पढ़ना, ये सब ज्ञान जल्दी आ जाता है ना।
0: शास्त्र पढ़ना और सोल कॉन्शियस स्थिति को अचीव करना, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स।
1: आई एग्री है, ये बात तो है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा
0: है, आत्मा की अपनी जर्नी होगी। बहुत सारे करेंगे, कुछ नहीं भी कर पाएंगे, इट डजंट डिपेंड ऑन हम कहाँ थे। हाँ, संघ का रंग हमें मिलेगा, वो हमारा बेनिफिट है,

0: कि हम उस एनवायरमेंट में थे, हमें संघ का रंग मिला, लेकिन आत्मा की अपनी इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन, विल पावर से बहुत कुछ होने वाला है। तो अपने आप को कहीं भी थोड़ा भी ढीला नहीं छोड़ना बाय सेइंग मेरे पास तो वो वाला फैक्टर नहीं है।
1: हाँ, जैसे मैंने एक्टर बनने के लिए मैंने तो नहीं बोला था आई डोंट नो एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री,
0: फिर भी हमने कर लिया
1: अनजान नगरी।
0: यस, तो यहाँ भी हम कर लेंगे। तो सोल कॉन्शियसनेस का जो गोल है वो हम ये नहीं कहेंगे कि आज हम जीरो सोल कॉन्शियस है कल हम 100 हो जाएंगे। नो,
1: स्टेप बाय स्टेप,
0: इट्स वेरी स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप। आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। फोन की बैटरी फर्स्ट से एंड पर थोड़ी पहुंचती है कभी, इट हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। बीच में अगर पावर चली गई सप्लाई से वहीं रुक जाएगी, अगर बीच में यूज कर लिया उसको गलत तरीके से वो कम हो जाएगी, फिर वो ऑन हो जाएगा, फिर वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप चार्ज होगा। तो अब जैसे आपने कहा, किसी ने कुछ कहा, मुझे हर्ट हुआ, फर्स्ट कॉन्शियसनेस मैं आत्मा, ये आत्मा, फिर मन कहेगा लेकिन मैं बड़ा, ये नहीं, कौन बड़ा, शरीर बड़ा, आत्मा और आत्मा। फिर मन कहेगा मैंने इतना कमाया, कोई बात नहीं, इस समय रिश्ता किसकी बात हो रही है, आत्मा और आत्मा। ईगो को क्या करना पड़ता है, ईगो बहुत बोलेगा बीच में, लेकिन वही तो सोल कॉन्शियस तीर्थ की तरफ जाने का पुरुषार्थ है, ईगो को चुप कराना और सही आंसर देना। अब एक बार आपने कहा मैं आत्मा, ये आत्मा, फिर दूसरी पॉइंट ऑफ नॉलेज, ये आत्मा अनेक जन्मों के संस्कार
1: लेकर आई है
0: और इस जन्म के पेरेंटल इन्फ्लुएंस के संस्कार,
1: ये सेकंड फोल्डर,
0: सेकंड फोल्डर, इस जन्म के संघ के रंग के संस्कार लेकर आई है, अब ये आत्मा, आई हैव टू लुक एट दैट सोल, ये आत्मा जो मेरे साथ बिहेव कर रही है वो मैं कौन हूं कैसा हूं उस वजह से नहीं है, वो इस वजह से है कि वो क्या है और कैसे है। पीपल डू नॉट प्ले दोज सॉन्ग्स ऑन द सीडी बिकॉज ऑफ आर सॉन्ग्स, दे प्ले दोज सॉन्ग्स ऑन दैट सीडी बिकॉज दे आर देयर सॉन्ग्स, उनके पास वो ही गाना है। ये इतना इम्पोर्टेंट है डिटैचमेंट, क्योंकि ये हमारे दर्द को क्या करता है, हमारा दर्द इस वजह से नहीं होता कि वो ऐसे क्यों हैं, हमारा दर्द इस वजह से होता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
1: अगर मुझे मालूम है कि मैं ऐसा नहीं हूं तो फिर क्यों बुरा लगता है,
0: मैं कैसा नहीं हूं।
1: समझो किसी ने मुझे चोर बोला और मैं चोर नहीं हूं, झूठा बोला झूठा नहीं हूं,
0: हाँ,
1: तो फिर बुरा क्यों लगता है।
0: क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग है कि पब्लिक ओपिनियन मैटर्स, लोग जो कहेंगे वो हम हैं, लोग हमें कहें अच्छा तो हम अच्छा।
1: मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकता, आई नो वॉट आई एम,
0: आज से सोच सकते हैं।
1: तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, यू गॉट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू,
0: राइट, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरे ने कुछ कहा, हमने जल्दी से चेक किया कि ये है मेरे अंदर या नहीं है, अगर है वो बात जो वो कह रहे हैं ले लो उस फीडबैक को, और अगर नहीं है तो अगले क्षण छोड़ दो। इस समय में सब लोग अलग अलग संस्कार, अलग अलग रंग के लेंस के थ्रू बोलने वाले हैं, इट इज नॉट नेसेसरली द ट्रूथ,
1: बिकॉज उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग के हिसाब से बात की ना, अपने संस्कारों के हिसाब से कोई भी बात करता है, अगर कोई मुझसे लड़ने भी आता है, झगड़ता है, जो बुरा भला बोलता है, वो तो खुद ऐसा है इसलिए तो बोल रहा है ना,
0: बस सिंपल,
1: और वो बोलेगा ही,
0: सिंपल,
1: मुझे नहीं तो किसी को, सब कोई बोलेगा, क्योंकि वो है ही ऐसा,
0: सिंपल। अब मुझे क्या करना है, वो उस रिकॉर्डिंग से गाना बजाएगा, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा गाना बजाना है।
1: लेकिन सिस्टर ऐसा ही एक आदमी बजाया, दो तीन चार सौ, जिंदगी भर, आज से पता नहीं कितने साल जीना है, ऐसे कितनी आत्माएं मिलेंगी जो अपना अपना रिकॉर्ड बजाएंगे, मैं किस किस को ठीक करने जाऊं और किस किस से उलझूं, किस किस को झगड़ा करूं, किस किस को बोलूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, तुमने गलत बोला सही बोला, ध्यान छूटनी चाहिए ना,
0: तो क्या करना चाहिए उसके,
1: वही नहीं आ रहा है मुझे।
0: हम किस, आपने तो अभी सारा आंसर दिया, मैं किस किस को चेंज करूं, फर्स्ट नहीं कर सकते, मैं किस किस को बोलूं,
1: ये बात करने में होता है,
0: हाँ?
1: लेकिन आगे भी होना चाहिए,
0: आगे भी होगा ही, और सपोज उस क्षण

0: भी हुआ, थोड़ा बुरा भी लगा, उसके बाद बैठकर हो जाएगा, क्योंकि आंसर सब पता है ना हमें. नाउ वी आर लुकिंग एट टू सोल्स, वाई टू, हियर यू आर आसपास दस, ठीक है, दस सोल्स की अलग अलग रिकॉर्डिंग. आत्मा का ज्ञान इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, पहले तो हम उनको आत्मा ही नहीं देखते थे, हम कहते भाई होकर ऐसा बोल दिया, ऐसा बोलेंगे, भाई होकर, मेरा भाई होकर, बचपन से उसके लिए इतना किया, मेरा भाई होकर ऐसा बोल दिया. मेरा भाई रोल है, आत्मा चार फोल्डर हैं, उनके थ्रू ही गाना सुनाएंगे, इजियर टू एक्सेप्ट. लेकिन उन्होंने जो गाना सुनाया, उस गाने का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देना कि हमारे यहां एक गलत गाना बज जाए. दिस इज दैट प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लेम.
1: आप कमजोर हो गए, आपने अपना रिमोट पकड़ा दिया, भाई जो करना है कर ले मेरे साथ.
0: रिमोट तो उनके पास है ही नहीं. हम गलत, वी थिंक इट इज हैपनिंग, बट वेन वी रिएक्ट ऑल्सो, हम अपने सीडी पे से कोई गलत गाना प्ले कर रहे हैं, वो सामने वाला नहीं प्ले कर रहा. सपोज आज आपका भाई है, बहन है, वी हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम कि मेरा भाई है, ये ऐसा करेगा, ये ऐसे करेगा. वो वट एवर कारणवश, पास्ट संस्कार, प्रेजेंट एनवायरमेंट, प्रेजेंट संघ का रंग, वट एवर, कुछ अलग बिहेव किया, ठीक से बात नहीं की, जोर से चिल्ला दिया, कोई एलिगेशन लगा दी, कुछ भी कर दिया. इमीजिएटली, अगर इमीजिएटली नहीं भी होता, दो मिनट हर्ट भी होता है कि मेरा भाई होकर ऐसा कह दिया, अब जल्दी से आंसर की तरफ जाना है. मतलब लॉ क्या होने लगी है, वो दिए कि
1: हिलने
0: लगी है, तो इमीजिएटली बचाना है ना. तो बचाने के लिए क्या आंसर देना है? आत्मा, संस्कार. वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा, वो अपनी सीडी पे का गाना प्ले कर रहा है. इम्पोर्टेंट पॉज, मैं भी आत्मा, मेरे लिए कौन सा गाना इस समय सही है? हम क्या सोचते हैं, उनको कौन सा गाना सुनाऊं मैं? उसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा कैसे उसके साथ बात करूं? उनको नहीं गाना सुनाना है. जो हम गाना यहां प्ले करते हैं वो हम सुनते हैं सबसे पहले, हम पर असर होगा ना. आर एवरी थॉट अफेक्ट्स
1: एवरी सेल.
0: तो मैं कौन सा गाना प्ले करूं? दिस इज सो इम्पोर्टेंट.
1: सब सुनते हैं, जानते हैं, फिर भी
0: अब करेंगे.
1: कितनी बार सुनाएगी? रोज तो चाहे डेड बॉडी पे डालो या दुल्हन को सजाओ, वो तो अपना ही खुशबू देती है, ये है वो है, सुनते हैं.
0: जब हम दूसरी चीज सुन रहे हैं कि हाँ गुलाब का फूल तो अपनी खुशबू देती है, दैट्स ओके. उसको अपने जीवन के साथ कैसे रिलेट करना है? उन्होंने एलिगेशन लगाया, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, बोल दिया किसी ने, ठीक है. मेरा संस्कार क्या है जो मेरे लिए सही है? एक, जैसे आपने कहा, मुझे मालूम है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे मालूम है कि ये जो कह रहा है ये सत्य नहीं है, किसी कारणवश ऐसा कह रहा है. मेरे लिए इस टाइम क्या जरूरी है? साइलेंस, नॉट टू गेट प्रोवोक्ड, एंड देन आई प्ले माई रोल. आई एम द एक्टर, नो, आई प्ले माई रोल टू माई बेस्ट कैपेसिटी. सामने वाले एक्टर से प्रभावित नहीं हो रहे. टू माई बेस्ट कैपेसिटी मतलब ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, लव. दिस इज माई रोल, दिस इज हाउ आई विल परफॉर्म माई रोल. इतना पॉज. अब ये हो जाएगा अगर हम रोज सुबह मेडिटेशन करके बैटरी को चार्ज करेंगे, एंड रोज सुबह ज्ञान भी भरेंगे. जब रोज रोज ये ज्ञान डलता है ना, मैं आत्मा, ये ज्ञान वो घृत है, मैं आत्मा, मेरे संस्कार, वो आत्मा, उसके संस्कार, मैं आत्मा, मैं आत्मा, ये रोज रोज करने से यहाँ ग्रूव बन जाएगा. ये बनना ही है ग्रूव. फिर एक बार करेंगे रिजल्ट मिलेगी, दो बार करेंगे रिजल्ट मिलेगी, करना इजियर हो जाएगा, क्योंकि वो वाला तरीका करने का ग्रूव बन जाएगा. डू नॉट क्रिएट द थॉट दैट ये होता नहीं है.
1: ओके,
0: डू नॉट एवर क्रिएट दिस थॉट के ये प्रैक्टिकल में होता नहीं है.
1: जो जो चाहते हैं और जहां डिटर्मिनेशन है, 100% मोटिवेशन है, वहां तो कर ही लेते हैं.
0: सिर्फ ये होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएटली सारा रिजल्ट मिल जाए. अभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने डिसाइड किया कि एक्टर

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

मैं हूं मंदार, एसीपी थाने मुंबई से। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग करियर ऑप्शन में करियर इन मेडिकल फील्ड में बात करेंगे, और आशा करूंगा कि आप सभी को कुछ नई और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं करियर इन मेडिकल फील्ड में, और देखा जा रहा है कि मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी जो है कमाई है, और साथ ही साथ एक अच्छा सम्मान भी मिल जाता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो है एक जो क्या कहते हैं लोगों के बीच में एक अच्छी छवि बनी रहती है। मेडिकल कोर्सेज भारत में सबसे अधिक मांग वाले पाठ्यक्रमों में से आते हैं। हर साल लाखों छात्र भारत के पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल होते हैं, लेकिन ऐसे कई छात्र हैं जो हर साल नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते और फिर भी एमबीबीएस के अलावा मेडिकल कोर्स कर अपना करियर संवारते हैं। एम्स और जिपमर को नीट में शामिल कर दिया जाने के बाद से अब इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में प्रतिस्पर्धा का स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए जिम्मेवार नीट एग्जाम के बिना किए जा सकने वाले मेडिकल कोर्सेस के विकल्पों की तलाश करते रहते हैं, और यहां तक कि नीट की तैयारी करने वाले उम्मीदवार भी उन मेडिकल कोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं जिनका चुनाव करने के लिए नीट परीक्षा में सफल होने की अनिवार्यता नहीं होती है। तो यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज के बारे में बता दें, और मेडिकल फील्ड में काम करने के इच्छुक कई छात्र एमबीबीएस तथा बीडीएस जैसे प्रतिष्ठित कोर्सेज के अलावा 12वीं के बाद नीट के बिना उपलब्ध होने वाले मेडिकल कोर्सेज के विकल्पों के बारे में जानना चाहते हैं, और देश की एक ऐसी एकमात्र सबसे बड़ी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल पाए बिना किए जा सकने वाले कोर्सेज का विकल्प चुनने के लिए उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि नीट के बिना किया जा सकने वाले मेडिकल कोर्सेज कौन से हैं। नीट के बिना मेडिकल कोर्सेज और इसके लिए पात्रता और तैयारी की पूरी जानकारी के लिए इस जगह पर हम लोग बात करेंगे, और चिकित्सा जगत से संबंधित बहुत सारे ऐसे विकल्पों के बारे में बात करेंगे, और

आशा करूंगा कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और एक ऐसे विकल्प उपलब्ध है जहां मेडिकल कोर्स करने के इच्छुक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और बेहतर नीट रिजल्ट लाए बिना भी शानदार वेतन वाली जॉब कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो चिकित्सा के क्षेत्र में करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नीट 2024 परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होना चाहते हैं वो भी इनका चुनाव कर सकते हैं। नीट के बिना किए जाने वाले मेडिकल कोर्सेज का अध्ययन भी आकर्षक करियर अवसर प्रदान कर सकता है। तो आइए इस विषय को लेकर हम लोग बड़ी रुचि से आपको हर चीज बताने की मैं कोशिश करूंगा। आप सुनाए हैं रिमोट 107.8 एफएम पर। जी हां, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए बात करते हैं करियर इन मेडिकल फील्ड के बारे में। नीट के बिना मेडिकल कोर्सेज को किया जा सकता है, उसमें हम लोग बात कर रहे थे। कई बार नीट परीक्षा में जो एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह क्लियर करना पड़ता है, उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं

फिर अगर नहीं होता है तो फिर मन खट्टा हो जाता है। तो ऐसे में उस एंट्रेंस एग्जाम के बिना या नीट के बिना भी अलग अलग मेडिकल कोर्सेस हैं जिसको जानकर आपको खुशी भी होगी और इन्हें करकर आप मेडिकल फील्ड में अच्छा खासा जो है वेतन भी पा सकते हैं या खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए इस विषय को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आज हम लोग मेडिकल कोर्सेस जो है उसमें आता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जी हां, पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिशन, फिजिशियन असिस्टेंट आदि जैसे कोर्सेज शामिल हैं। ऐसे उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, हालांकि इस क्षेत्र में कुछ खास लाभ भी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में जहां पर आपको नीट वाला एग्जाम नहीं देना होगा। तो इस पर आप ध्यान से सुनिए। 12वीं के बाद जो है लोकप्रिय कोर्सेस हैं, 10वीं के बाद भी लोकप्रिय कोर्सेस हैं। नीट के बिना मेडिकल कोर्स के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकल कोर्सेस विदाउट नीट। तो नीट एग्जाम के बिना 12वीं कक्षा के बाद चिकित्सा पाठ्यक्रम का विकल्प चुनने के लिए चिकित्सक उम्मीदवारों को कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने इस योग्य हो सके, इसमें शामिल हो सके। सबसे पहले तो न्यूनतम वंचित प्रतिवर्ष के साथ कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। बौद्ध की रासायनिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान, गणित, पीसीबी, पीसीएम की पढ़ाई की हो, बेहतर करने का उत्साह और कुछ विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा भी हो सकती है, जैसे कि बीएमएस के लिए नीट में कितने मार्क्स चाहिए। महाराष्ट्र में टॉप बीएमएस कॉलेजेस, नीट आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उम्मीदवारों को पाठ्यक्रमों के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है, जिनके लिए वे नीट में प्राप्त किए बिना ही उम्मीदवारों को 12वीं के बाद विशेष पाठ्यक्रमों को करना जरूरी है। जैसे कि अब शुरू करते हैं उसमें से, जैसे आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं नर्सिंग करके। नर्सिंग एक जो है अच्छा कोर्स है, पाठ्यक्रम है, जिसमें उम्मीदवार को चिकित्सा के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए तैयार होना होता है और न केवल मानवता का इलाज करने के लिए बल्कि जरूरतमंदों के प्रति उम्मीदवारों में स्नेह, देखभाल और धैर्य के गुण भी बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम विकसित करता है। और ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। नर्सिंग पाठ्यक्रम से डिग्री होने के बाद उम्मीदवार स्टाफ नर्स, रजिस्टर नर्स, नर्स शिक्षक, मेडिकल कोडर आदि के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। नर्सिंग के लिए वैसे तो नीट अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब कई राज्यों में नीट स्कोर के माध्यम से बीएससी नर्सिंग एडमिशन होने लगे हैं। ये भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के उन शीर्ष पाठ्यक्रम विकल्पों में से एक है जिसको बिना नीट के भी किया जा सकता है। और फार्मेसी, जिसके बारे में हमने विस्तार से बात किया था, फार्मेसी दवा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों जैसे कि ड्रग सेफ्टी, खोज, मेडिकल केमिस्ट्री, औद्योगिक फार्मेसी तथा कई अन्य अध्ययन के कोर्सेस हैं। जो फार्मेसी, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं वे 12वीं के बाद बीफार्म का विकल्प चुन सकते हैं और इसके लिए उम्मीदवार को नीट में उपलब्ध होना या फिर नीट से पास होने की अनिवार्यता नहीं है। बीफार्म एक डिग्री कार्यक्रम है जहां छात्रों को फार्मेसी की मूल बातें सिखाई जाती हैं। बीफार्म करने के लिए छात्रों के लिए करियर के कई अवसर हैं, सरकारी से लेकर निजी क्षेत्र तक, या फिर खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। और उम्मीदवार केमिकल टेक्नीशियन, ड्रग इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट आदि बनने के विकल्प भी चुन सकते हैं। तो आई ये सारी चीजें हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो इन विकल्पों को चुन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हां, करियर इन मेडिकल फील्ड, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

फार्मेसी में भी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट भी आप बन सकते हैं। फिजियोथेरेपी उपचार के उस तरीके के अध्ययन से संबंधित है जिसमें भौतिक बलों जैसे कि उष्म, बिजली, यांत्रिक दबाव और यांत्रिक बलों के माध्यम से उपचार किया जाता है। फिजियोथेरेपी को नीट के बिना किए जा सकने वाला चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का संतोषजनक और लाभदायक करियर माना जाता है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एक डिग्री प्रोग्राम है जिसमें छात्र विकारों को शारीरिक गतिविधि के जरिए ठीक करना सीखते हैं। फिजियोथेरेपी या बीपीटी के स्नातक करने के बाद उम्मीदवार के पास कई करियर विकल्प होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य और फिटनेस क्लिनिक खोल सकते हैं, विशेष स्कूल, औद्योगिक या स्वास्थ्य के लिए उद्योग, फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में सेवा देना भी शुरू कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब पेशेंट ऑपरेशन के बाद रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी एक अच्छा विकल्प है और डॉक्टर खुद इसके लिए रिकमेंड करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है फिजियोथेरेपी एक अच्छा विकल्प है जहां पर आप अपने विशेष कार्य को कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ में एक और करियर ऑप्शन है जहां पर आप अपने आप को बेहतर मेडिकल फील्ड में सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पशु चिकित्सा विज्ञान। वेटनरी कोर्स 12वीं के बाद आप बिना नीट के भी कर सकते हैं। पशु चिकित्सक जो है ये एक ऐसा विज्ञान है जो जानवरों के रोगों के उपचार और डायग्नोस्टिक से संबंधित है, जिसे अंग्रेजी में वेटनेरियन कहते हैं। और पशु चिकित्सा के बारे में जानने या अध्ययन करने के इच्छुक उम्मीदवार कक्षा 12वीं के बाद बैचलर इन वेटनरी साइंस का विकल्प चुन सकते हैं। ये एक स्नातक की डिग्री प्रोग्राम है जो 5.5 सालों का होता है, जिसमें अंतिम 6 महीने जानवरों के उपचार से संबंधित चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनिवार्य इंटर्नशिप के होते हैं और जिसमें आम तौर पर पशु चिकित्सा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। BVSC ग्रेजुएट डॉक्टर बनते हैं और पशु सर्जरी के क्षेत्र में सेवाएं दे सकते हैं। और पशु चिकित्सा सर्जन, सहायक पशु चिकित्सक, वेटनरी फार्माकोलॉजिस्ट, वेटनरी न्यूरोलॉजिस्ट आदि के रूप में काम कर सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। इसके बाद एक और विकल्प भी है जो आपको बेहद खुशी प्रदान करेगा, वो है मनोविज्ञान। जी हां, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अनुसार मनोविज्ञान मानव मन और व्यवहार का विज्ञान अध्ययन है। इस कोर्स में मानव विकास, खेल, स्वास्थ्य, दैनिक सामाजिक, व्यवहारिक और संज्ञात्मक प्रक्रिया जैसे कई उप क्षेत्र शामिल होते हैं। उम्मीदवार 12वीं के बाद बिना नीट के BA ऑनर्स साइकोलॉजी का विकल्प चुन सकते हैं। ये पूर्णकालीन 3 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम है और इसे करने के बाद उम्मीदवार को निजी और सरकारी क्षेत्र में आसानी से नौकरी मिल जाती है। उन्हें विश्वविद्यालयों, सरकारी एजेंसियों, क्लिनिकों, स्कूलों और अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। मनोविज्ञान स्नातक न केवल मनोवैज्ञानिक है बल्कि एक सलाहकार, सीमा बल अधिकारी, मध्यस्थ, न्यूरो साइंटिस्ट आदि के रूप में नौकरी पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया आज और विदेश में इसकी जो है बहुत जल्दी मांग है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे लोग जीवन शैली देख रहे हैं और जीवन शैली के साथ साथ जो मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है इसमें बड़ा काम करता है, क्योंकि लोगों का मन अशांत हो चुका है, डिप्रेशन, तनाव, ऐसी बहुत सारी चीजें आए दिन जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हमारा मन ही विशेष रूप से उसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक एक सहायक विकल्प बन जाता है लोगों की सेवा अर्थ। तो इस क्षेत्र में आप अच्छा जो है काम कर सकते हैं और बढ़िया कमा भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसके बाद और भी कुछ करियर ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हां, करियर इन मेडिकल फील्ड, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ करियर इन मेडिकल फील्ड की बातें हो रही हैं, और जैसे कि मैंने बातें की आपको, बिना नीट के आप जो हैं नर्सिंग में अपनी जो है अच्छी पकड़ बना सकते हैं, उसके बाद फार्म

नमस्कार, मैं हूँ बिंदु वार्ले। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, बात कर रहे थे हम लोग करियर इन मेडिकल फील्ड में, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर आप नीट के बिना कर सकते हैं। ऐसे कोर्सेज के बारे में मैंने बातें की, और नीट यूज के बिना मेडिकल डिग्री का करियर स्कोप कितना अच्छा है और कितने ज्यादा उसमें अलग अलग फील्ड है जिसके बारे में हम बात करें। इन व्यवसाय में कार्य और परिश्रम का दायरा अनुभव, विशेषता और योग्यता में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। ये पेशेवर डॉक्टरों के साथ या स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में भी

हम कर सकते हैं या अपनी आजाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी फ्रीलांसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। नीट के बिना 12वीं के बाद बेस्ट मेडिकल कोर्सेस आपको इसकी जानकारी मिल रही है। तो जैसे कि मैंने ऑक्यूप्रेशर की बात, अब यहां पर जो अल्टरनेटिव मेडिसिन फील्ड आती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें आप ऑक्यूप्रेशनल थेरेपिस्ट, जो सभी उम्र के लोगों को बेहतर शारीरिक या फिर मानसिक बीमारी या चोट से उबरने में मदद करने, बेहतर और अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। रोगी की बीमारी का कारण चोट, दुर्घटना, लंबे समय से चली आ रही बीमारी, लकवा, स्ट्रोक, ऑटिज्म, वृद्धावस्था या किसी अन्य चीज हो सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दैनिक सेटिंग में गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के स्कूलों में ग्राहकों के साथ काम कर सकते हैं। वे व्यायाम, कार्यात्मक परीक्षण, पर्यावरण पुनर्गठन आदि का उपयोग करते हैं। पुनर्वास उपकरणों के रूप में ये विशेष रूप से काम करता है। और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 4.5 वर्ष का डिप्लोमा और डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी 1 वर्ष का होता है। तो बैचलर डिग्री 4.5 वर्ष का होता है, तो आप इसमें से किसी भी एक को चुन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा विकल्प है। और जैव प्रौद्योगिकी विधि, यानी जीवन के समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्पादों और प्रक्रियाओं को विकसित आविष्कार करने के लिए जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान को विश्लेषित करते हैं। इस सूक्ष्म जीवों आदि अनुवंशिक हेराफेर का अध्ययन शामिल हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट कृषि, फार्मा, भोजन, जेनोमिक्स, केमिस्ट्री आदि क्षेत्र से जुड़े विस्तृत विषयों के शोध वातावरण में काम कर सकते हैं और इसके साथ में बायो मेडिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं आप। और ये बीएससी इन बायो टेक्नोलॉजी 3 वर्ष का होता है। और इसके साथ में बायो मेडिकल इंजीनियरिंग की बात अगर मैं करूं तो जहां जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी विदों ने प्रौद्योगिक के साथ प्राकृतिक विज्ञान की जुड़ाव वाले उत्पाद व्यापक दायरे में कार्य करते हैं, वहीं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बीमारियों के कारण आविष्कार, समाधान, चिकित्सा करने आदि के समझने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद ले दवाइयों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इस क्षेत्र में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक नया क्षेत्र है। बायोमेडिकल रिसर्च लैब के इंजीनियर मजबूत चिकित्सा प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान प्रणाली आदि के निर्माण में अपनी विशेषताओं का उपयोग करने के लिए डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के साथ जुड़ सकते हैं या उनकी सहायता भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग फील्ड है बायोमेडिकल, और ये पूरी तरह से मेडिकल डॉक्टरों के सहयोगी के लिए विशेष रूप से काम करता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 4 वर्ष का कोर्स होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा विकल्प है। तो आइए इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे विकल्पों के बारे में बात करूंगा मैं। आशा करते हैं आप सभी को पैरामेडिकल, मेडिकल की बातें, जो हम लोग जहां पर मेडिकल फील्ड में आप काम करना चाहते हैं तो बिना एंट्रेंस या बिना नीट के आप करने वाले कोर्सेज के बारे में, उन विकल्पों के बारे में बताया जा रहा है जहां पर आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो ये बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आइए यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद और विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए करियर इन मेडिकल फील्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, जहां पर नीट एग्जाम के बिना भी आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं, ऐसे विकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में हमने बातें की, अब बात करते हैं माइक्रो बायोलॉजिस्ट के बारे में, नॉन क्लिनिकल, और इसमें क्लिनिकल दोनों आता है। तो नॉन क्लिनिकल क्षेत्र में आप जा सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में। सूक्ष्म जीव विज्ञानी हमारे आसपास विभिन्न सामग्रियों जैसे कि मिट्टी, पानी, भोजन, मनुष्य और पौधे में मौजूद सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हम जो भोजन करते हैं और जिस वातावरण में हम रहते हैं वो सुरक्षित हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिसर्च लैब फूड इंडस्ट्री, डिस्टिलरी और एग्रीकल्चर आदि सहित वातावरण में काम कर सकते हैं और वे सरकारी नौकरियों के लिए भी जा सकते हैं और इस संबंध विभागों के लिए सुरक्षा अधिकारियों के रूप में काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जहां पर आप इन चीजों के लिए काम कर सकते हैं।

इसके साथ में कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट भी आता है और माइक्रोलॉजिस्ट जो है 3 वर्ष का बीएससी इन माइक्रोलॉजी जो है 3 वर्ष का ये विशेष कोर्स है जहां पर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ में कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट चिकित्सकों के दिल और रक्तवाहिका संबंधित बीमारियों के समय पर और सही निदान और उपचार में सहायक करते हैं। वे रोगियों पर परीक्षण, अल्ट्रासाउंड और अन्य हृदय प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं, उनकी फाइलों की समीक्षा करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट जो है हॉस्पिटल और क्लिनिकों में काम कर सकते हैं। जहां चिकित्सक मौजूद हैं वे परीक्षण प्रयोगशाला में भी कार्यरत हो सकते हैं। तो अब यहां पर बीएससी कार्डियो और या कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट का एक पोस्ट ये करियर है जो टोटल 4 वर्ष का कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं। इसके साथ एक और विकल्प आता है वो है परफ्यूशनिस्ट। परफ्यूशनिस्ट ये एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल पेशा है जो जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में मशीनों को कैसे संचालित किया जाए और सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान मरीज को जीवित रखा जाए। उदाहरण के लिए ओपन हार्ट या लॉन्ग सर्जरी के दौरान जबकि डॉक्टर किसी अंग पर काम करते हैं और परफ्यूशनिस्ट जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि शरीर में अंगों को जीवित रखने के लिए रक्त प्रवाहित होता रहे। और परफ्यूशनिस्ट विशेषज्ञ सर्जन और उन स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ बातचीत करते हैं ताकि उन्हें महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाओं में सीधे मदद मिल सके और हॉस्पिटल में दैनदिन केंद्रों में काम कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ परफ्यूशन टेक्नोलॉजिस्ट या बीएससी कार्डियो पल्मोनरी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 3 या 4 साल का ये कोर्स होता है जिसके जरिए आप मेडिकल फील्ड में अच्छा खासा कमा सकते हैं और अच्छा खासा मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं। इसके साथ आता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। अगर आपने नाम सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ये जो थेरेपिस्ट होते हैं ये उन मरीजों की देखरेख करते हैं जिन्हें सांस लेने की समस्या होती है या पल्मोनरी सिस्टम में संबंधित समस्याएं होती हैं। उनके मरीज विधिवत आयु समूहों से आते हैं और शिशुओं से लेकर वृद्ध लोग, वे इनको और ट्रोमा रोगियों को जीवन रक्षक देखभाल भी प्रदान करते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट गंभीर देखभाल वाले हॉस्पिटल और क्लिनिक में काम कर सकते हैं जैसे आपातकालीन देखभाल, आईसीयू, नवजात शिशु इकाई आदि। तो ये बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं जिस 4 साल का ये कोर्स है आप इसे भी कर सकते हैं। इसके साथ आता है पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिशनिस्ट। ये भी एक जो है कोर्स है जो बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स जो है डायटिशियन 3 वर्ष का ये कोर्स होता है या बीएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स ये 3 वर्ष का ये भी होता है और बीएससी इन ह्यूमन न्यूट्रिशन ये 3 वर्ष का कोर्स होता है। तो इसमें अलग अलग विकल्प हैं जिसको भी आप चुन सकते हैं, बिल्कुल चुने। और पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिशन मरीजों को उनकी स्थिति, एलर्जी आदि को समझने के बाद स्वास्थ्य और भोजन के विकल्प पर सलाह देते हैं जबकि आहार विशेषज्ञ भोजन चार्ट बनाने और रोगियों के खाने की आदतों का प्रबंधन करने के लिए विशेष ध्यान रखते हैं। पोषण विशेषज्ञ मुख्य रूप से स्वास्थ्य भोजन के माध्यम से एक स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने का संबंधित कार्य करते हैं। एडवांस डिग्री और विशेषज्ञ के साथ पोषण विशेषज्ञ आहार विशेषज्ञों की भूमिका भी निभा सकते हैं। पोषण विशेषज्ञ आजाद रूप से या हॉस्पिटल या क्लिनिक के साथ काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र जैसे खेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य प्रौद्योगिकी आदि में भी विशेषता प्राप्त कर सकते हैं और फिर संबंधित उद्योग में शामिल भी हो सकते हैं और अच्छा वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके साथ एक और पेशा आता है जहां पर मनोवैज्ञानिक साइटोजेनेटिक्स लोगों को चिकित्सा विधियां, मनोविश्लेषण और परीक्षण के माध्यम से जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को प्रभावित

ढंग से निपटाने में मदद करते हैं। दैनजिन विशेषज्ञ वाले मनोवैज्ञानिक भी रोगी के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयुक्त दवा का सुझाव दे सकते हैं और मनोवैज्ञानिक हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्कूल आदि में काम कर सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं। बैचलर इन साइकोलॉजी 3 वर्ष का ये कोर्स होता है। इसके साथ ही साइकोलॉजिस्ट गुणसूत्रों का अध्ययन, अनुवंशिक विचारों और रोगों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से काम करते हैं। ये रक्त, उच्च रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से अनुवंशिक रोगों का पता लगाने, विश्लेषण और व्याख्यान करने का काम करते हैं। ये माइक्रोस्कोपी, फोटोग्राफी, डीएनए तकनीक आदि का उपयोग करते हैं अनुवंशिक विसंगतियों का पता लगाने के लिए। और साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटलों, क्लिनिकों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। इनके कार्य में अजन्मे शिशुओं और अन्य रोगियों पर परीक्षण शामिल हैं। भारत में एक उभरता क्षेत्र है और साइटोजेनिस्ट में विशेषज्ञ मास्टर स्तर पर मिलती है डिग्री, और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक लोग डिग्री स्तर पर अनुवंशिक या जैव प्रौद्योगिकी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो बीएससी इन जेनेटिक्स 3 साल का होता है और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी ये भी 3 वर्ष का होता है। तो साइटोजेनेटिक्स ये जो है विशेष रूप से इस कोर्स को कर सकते हैं, जिससे आप मेडिकल फील्ड में एक अच्छा खासा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें जिसके बारे में हमने बताया। वैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, कभी मौका मिले तो हम विस्तार से आपको इस विषय को लेकर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, करियर इन मेडिकल फील्ड में हमने बातें की, और जो लोग बिना नीट के कौन कौन से मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं उस विषय पर हमने प्रकाश डाला। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लगा हो, तो जरूर मैसेज करके हमें बताइए 94 1415 1415 इस नंबर पर। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली बार, कुछ नए ट्रेड के बारे में बातें करेंगे। अगर आप किसी ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं, ताकि अगली बार आपके विषय को लेकर हम बात कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपना करियर अच्छा बनाएं और अपना और देश का नाम रोशन करें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रूपाली मिरजदार, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आप अपने घर में अगर सुविधाजनक चीजों के साथ रहते हैं और आप अपने घर में आराम से रहना चाहते हैं, तो आपको आराम देने वाला काम करता है आपका घर के अंदर का फर्नीचर, इंटीरियर डेकोरेशन। ये सारी चीजें आपको जो है सुख देता है घर में अच्छे से रहने का। तो वो इंटीरियर या फिर जो फर्नीचर है वो कहाँ मिलेगा, कैसे आप उसको बना सकते हैं, किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप रूपाली जी से जान सकते हैं। क्योंकि रूपाली जी का स्टील लाइफ मॉड्यूलर जो है एक फर्नीचर का जो है शॉप है, और वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उनका बिजनेस क्या है। तो आप सभी की तरफ से रूपाली जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी पुनेरी आवाज को और सब श्रोताओं को। फर्नीचर ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। जैसे सर बोल रहे थे कि खुश रहो, खुशियां बांटो, तो खुशियां शुरू होती है अपने घर से। जब घर का माहौल अच्छा है तभी हम आगे जाके बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं, अपना अपना काम कर सकते हैं। लोगों की टेंडेंसी ये रहती है कि ऑफिस में बहुत अच्छा चाहिए, सब एनवायरमेंट बहुत अच्छा चाहिए काम करने के लिए, या फिर गाड़ी हो उसमें भी वो बहुत लग्जरियस मॉडल देखते हैं। लेकिन जब घर की बात आती है ना, तब वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उनके एक माइंडसेट वैसा बन जाता है। तो हम वो सब जान के ट्राई करते हैं कि लोगों की खुशियां बढ़ाए, घर में उन्हें अच्छा सा माहौल दे दे, कंफर्टेबल लाइफ उन्हें प्रोवाइड करे। इसलिए हम घर का पूरा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साकन रोड चिमड़ी फाटा में अपना यूनिट है, जिसमें किचन ट्रॉलीज, बेड, वार्डरोब, लिविंग रूम फर्नीचर, जो भी आप विजुअलाइज करते हैं वो सब हम कस्टमाइज बना के देते हैं।
1: अच्छा, बना के देते पूरा कस्टमाइज करके?
2: यस।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताया रूपाली जी। और आप कस्टमाइज करके अगर बना के देते हैं, तो ये कस्टमाइज शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। मैं बता दूं कि जब आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपका घर अगर नया ले लिया आपने और वो खाली है, तो खाली घर में जो है कस्टमाइज फर्नीचर जो है बहुत अच्छी तरह से आप सेट कर सकते हो। खाली घर में जो है अपने तरीके से उन चीजों को बना सकते हैं, आपको किन किन चीजों की जरूरत है और उसके साथ में सुविधाजनक जो चीजें हैं एडिशनल आपको मिल जाएगा जब आप कस्टमाइज करेंगे। तो कस्टमाइज फर्नीचर इसीलिए लोगों को काफी जो है सुविधाजनक बना के मिल जाता है। और पहले क्या होता था, कस्टमाइज शब्द हम लोग यूज भी नहीं करते थे। और पहले घर है तो घर में एक बेड रख दिया, किचन का थोड़ा बहुत काम कर लिया, कबाट बना लिया, तो इससे हमारा काम चलता था। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग जो है अपग्रेड हो गए हैं, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं और कस्टमाइज फर्नीचर आपको जो है बहुत ज्यादा कंफर्ट देता है, आपके घर को लुक भी अच्छा देता है और आपको आरामदायक चीजों का आनंद भी देता है। तो रूपाली जी, कितने समय से आप ये बिजनेस कर रहे हैं?
2: इस बिजनेस में हम करीब करीब 20 साल से हैं।
1: अरे वाह।
2: मैं मेरे हस्बैंड है और अभी तो लड़का भी इन्वॉल्व हुआ है, तो वो भी देख रहा है। जैसे सर पिछले 10 सालों में इतना चेंज हुआ है फर्नीचर जो है उसमें। जैसे हम बचपन में देखते थे ट्रेडिशनली कारपेंटर घर आके बनाते थे, वो प्लाईवुड हमारे सामने होता था, उसका जो भी मटेरियल लैमिनेट है वो सब हमारे सामने बनता था। और जब आंखों के सामने बनता है तभी वो अच्छा बनता है, ऐसा एक मिथ था।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन अभी क्या है, घर में रुकने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है और वेरिएशन इतने आए हैं उसमें, मॉड्यूलर फर्नीचर है। जैसे हम 12,000 एरिया में अपनी कंपनी है, अलग अलग मशीन्स है, जैसे प्लाईवुड कटिंग करनी हो तो उसके लिए अलग मशीन है, पेस्टिंग करनी हो पेस्टिंग मशीन है, एज बाइंडिंग मशीन है। तो इससे मैनुअल से बेहतर मशीन में जो प्रोडक्ट बनता है तो उसकी क्वालिटी और उसका लाइफ बढ़ जाता है। तो घर के लिए कस्टमाइज मतलब यही है कि आप घर में ना रुके और आपके डिजाइन, आपके चॉइसेस जो भी है उस हिसाब से हम पूरा समझ के

0: फिर उसको बनाते हैं ताकि कम से कम जगह में आपका सामान अच्छी तरह से फिट हो सके। गेस्ट रूम है वहाँ पे बेड रख के फायदा नहीं है, तो जब भी गेस्ट आएंगे तभी आप वो यूज करेंगे, तो हम उसमें सोफा कम बेड सजेस्ट करते हैं। जैसे पूरा खाली घर अगर हम देखेंगे तो उसमें एक एक सजेशन देके अच्छे से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रूपाली जी, काफी अच्छी बात है आपने बता दिया, और मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में आपने बताया, कस्टमाइज फर्नीचर के बारे में आपने बताया। तो चलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, अपने घर को बहुत ज्यादा जो है कम टाइम में कम स्पेस में भी आप अच्छा फर्नीचर का उपयोग करना चाहते हैं, तो जरूर रूपाली जी से आप मिलिएगा।
0: थैंक यू रमेश जी। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे हम गाड़ियों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हमारे काम की जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वैसे ही घर में रहने के लिए भी आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। थोड़ा सा सर्च करके कहाँ अच्छा मिलता है फर्नीचर, ऐसे करके आप कांटेक्ट कीजिए।
1: जी जी रूपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए मित्रों, आज आपने रूपाली जी को सुना और मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में आपको पता चला, कस्टमाइज फर्नीचर के बारे में पता चला, तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए। इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, हम आ गणेशा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 FM पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अंतरिक्ष दिव्यता का आह्वान।

0: हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली, सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी, और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली, और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड, मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अच्छा बाबा बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ। गोपी, ओ गोपी,
1: क्या है?
0: घर चलो, भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
2: तुम बीच में मत बोलो, मेरी इंसलेट हुई है, इंसलेट अपमान अपमान।

तो बता वो चुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता।

0: देखो गोरा गोरा न देखो देखो ऐसे कि दिया डोले मोरा ये छब मत बारी ये मुख गोरा गोरा न देखो देखो ऐसे कि दिया डोले मोरा
1: भूले भूले मेरी जाने क्या
2: बिचारी तुम तो बसी हो गोरी।

0: ಉತ್ತರವೇ ಉತ್ತರವೇ ಈ ಕಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ
1: ಈ ಕೀಪ ಬಾಬಾ.

आओ हो नहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे उम्र के कच्चे बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना।

लूटा न करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो। वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक। फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी।

जान उठेगा मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊँगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क न जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल न पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।

समा क्या नशा नशा सा है बोल।